0: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर स्वर रंजनी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने विदुषी उमा गर्ग द्वारा गाया राग वैरागी सुना। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज

0: टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test on NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for investigation in the matter. The NEET UG 2026 examination was conducted by the National Testing Agency on 3rd of this month. In this case, Special Operations Group of the Rajasthan Police has so far detained 15 people. The Special Operations Group yesterday detained an alleged mastermind identified as Manish from Jaipur. Nashik Police have also detained a man in connection with the NEET paper leak case. CBI has now taken his custody. In Tamil Nadu, the TVK government is scheduled to prove its majority in the assembly today. Chief Minister C. Joseph Vijay has been holding meetings with leaders of supporting parties to consolidate support ahead of the floor test. Along with the backing from allies, the TVK government has secured the support from the breakaway faction of AIADMK and the lone MLA of AMMK, S. Kamaraj. The TVK now has support of around 150 MLAs in the assembly. Meanwhile, in a dramatic turn of events in the political situation in Tamil Nadu yesterday, the AIADMK split into two groups over extending support to the government. The faction, led by former Chief Minister and Party General Secretary Eddapadi K. Palaniswamy, has directed party MLAs not to support the TVK government. In West Bengal, following the change of government, the state police has adopted a stringent stance regarding law and order and past cases of political violence. In this regard, ADG Law and Order issued a detailed directive yesterday to all police commissioners, police superintendents and railway police authorities mandating a series of immediate actions. The directive orders a fresh

Mori Bapak.

0: आगे जीपीएस लगेगा तब पानी मिलेगा।
1: जाने कैसी कैसी कहानियाँ बनाती है, कैसी वाणी है तेरी।
0: याद रखियो, पानी वाणी और कहानी बचा कर रखने की चीज है अगली पीढ़ी के लिए।
1: बात तो तेरी काम की लगती है।
0: अच्छा तो फिर एंटर मार दे अपने दिमाग के कंप्यूटर में, फटाफट थोड़ा कंट्रोल कर, थोड़ा सा सेव कर, तभी तो मिलता रहेगा सबको वाटर।
2: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर।

0: और बोले, क्या बात है निराला जी, सचमुच आपका जवाब नहीं। मित्र वहाँ से चुपचाप चले आए और निराला जी फिर से अपने लेखन में मशगूल हो गए। निराला जी हमेशा लीक से हट कर लिखा करते थे। कई बार उन्होंने अपने लेखन में अनोखे प्रयोग भी किए। यही वजह थी कि साहित्य जगत के लोग अक्सर उन्हें विक्षिप्त कहा करते थे। कई बार तो उनके प्रतिद्वंदी उन्हें पागल साबित करने की कोशिश भी करते रहते थे। ऐसे ही एक बार एक घटना हुई। वह इलाहाबाद में अपने एक साथी श्री नारायण चतुर्वेदी जी के पास आकर ठहरे। नारायण जी उस समय सरस्वती पत्रिका का संपादन किया करते थे। उन्हीं दिनों निराला जी ने एक कहानी लिखी थी। वह कहानी उन्हें बेहद पसंद थी। इस कहानी में दो पात्रों के संवादों के लिए उन्होंने अंग्रेजी के महान लेखक शेक्सपियर और दूसरे पात्र के संवाद के लिए संस्कृत के महान रचनाकार कालिदास को चुना था। और साहित्य जगत में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी लेखक ने बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र के दो किरदारों को एक साथ रखा हो और फिर उनके संवाद साथ में रखे हों। यह कहानी श्री नारायण चतुर्वेदी जी ने पढ़ी, उन्हें बेहद अटपटी लगी और उसी समय उनके मन में एक शरारत सूझी। उन्होंने तुरंत मन में ठान ली कि अगर यह कहानी पत्रिका में प्रकाशित हो जाए फिर तो निराला जी की जो साहित्य जगत में धूम मची हुई है वह यहीं रुक जाएगी और वह सहजता से विक्षिप्त साबित हो जाएंगे। बस उनका यह सोचना था। उन्होंने उस कहानी को सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कर दिया और दिन रात परिणाम की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद उनके पास इतने ढेर सारे पत्रों का अंबार लग गया कि उन्हें समझ ही ना आया क्या करें। उस कहानी पर सबसे अधिक पाठकों के पत्र थे। अब नारायण जी बार बार उस कहानी को पढ़ते और मनी मन दुखित होते कि किस घड़ी में उन्होंने निराला जी की उस कहानी को सरस्वती पत्रिका में स्थान देने का निर्णय किया था। इस तरह से निराला जी साहित्य जगत में पहले से भी अधिक प्रसिद्ध हो गए।
1: आप सुन रहे थे चिंतन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन से प्रसंग।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। 6:45 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं रामचरितमानस का बाल कांड भाग 54।

भगवान शंकर के श्रीमुख से श्री रामचंद्र के ब्रह्म, चिन्मय तथा अविनाशी होने का ज्ञान पाकर पार्वती का संशय मिट गया था। फिर भी उन्होंने ये जानने की जिज्ञासा प्रकट की थी कि प्रभु ने मनुष्य का शरीर किस कारण धारण किया। भगवान शिव ने तब उन्हें वो सभी तथ्य बताए जो अवतार के हेतु कहे जा सकते हैं। इनमें से एक प्रभु द्वारा नारद मुनि के मोहभंग की कथा है। दूसरी कथा है आदि पुरुष मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा को मिले वरदान की। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव हुए। मनु के छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराणों में मिलती है। देवहूति मनु की कन्या थी, जिनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और जिन्होंने दीनों पर दया करने वाले समर्थ तथा कृपालु आदि देव भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़कम टीवीके सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया, जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना। अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच कराने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर

0: राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा है कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान दौरे पर रहेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अल्पकालीन अनुमानों और चौथी तिमाही के अनुमान जारी करने की तिथि संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि 7 जून को अवकाश होने पर अंतिम अनुमान पिछले कार्य वर्ष पर जारी किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बदलाव आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। वहीं जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिन तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Central Bureau of Investigation, CBI, has taken into its custody Shubham Khairnar in connection with alleged NEET paper leak. Shubham was detained from Nashik in Maharashtra yesterday by the Crime Branch Unit of Nashik Police on request of Rajasthan Police. The NEET UG 2026 exam for admission to undergraduate courses in medical colleges held on 3rd of this month was cancelled yesterday amid allegations of paper leak. The government asked the CBI to carry out a comprehensive inquiry into the irregularities. In a related development, a parent of a NEET UG 2026 candidate has filed a complaint with the Latur SP office alleging that a private coaching institute conducted a mock test before the exam in which 42 questions reportedly matched those asked in the actual NEET paper. SP Amol Tambe directed the sub-divisional police officer to conduct an immediate inquiry and initiate legal action against those found guilty. Earlier, Rajasthan Police Special Operations Group detained 15 people during investigations into the suspected network and money trail. The Special Operations Group yesterday detained an alleged mastermind, Manish, from Jaipur. In Tamil Nadu, the TVK government is scheduled to prove its majority in the assembly today. Chief Minister C. Joseph Vijay has been holding meetings with leaders of supporting parties to consolidate support ahead of the floor test. Along with the backing from allies, the TVK government has secured the support from the breakaway faction of AIADMK and the lone MLA of Amma Makkal Munnerettra Kazhagam, S. Kamaraj. The TVK now has

संगीतिका कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गार्गी भट्टाचार्य जी के स्वर में भजन। सरोद पर साथ निभा रहे थे दानिश असलम, बांसुरी पर विनय प्रसन्ना, तबले पर थे पशुपतिनाथ मिश्र और हारमोनियम पर थे नफीस खान। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 7:30 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

सुबह की ये हंसी वादियाँ कुछ खास है, हवाओं में आज मीठी सी बात है। दिल से दुआ है आपकी हर सुबह खुशनुमा हो, इस प्यारे से दिन की यही तो शुरुआत है। इसी के साथ आज मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी होस्ट और दोस्त रिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग।

0: बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
2: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
2: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
2: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
2: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: सुबह की खिलती गुलाब एक जादू जगाती है, सुबह का सूरज सुहाना लगता है, जब आप मुस्कुराते हैं दिल से तो हर दिन सुनहरा और प्यारा लगता है।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: हर सुबह हमें एक नया मौका देती है कल की गलतियों को सुधारने का, तो मुस्कुराइए और दिन की शुरुआत कीजिए बुलंद हौसलों के साथ।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ।
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: श्रोताओं, अगर लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा तो लक्ष्य को नहीं अपने प्रयासों को बदलिए। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो दिल से लड़ा नहीं।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8 बजने ही वाले हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
2: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडपाड़ी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
1: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में IAS अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगियों ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि CPIM के राज्य सचिव पी शुनगमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VP रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन S. नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय

0: जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसिलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लेटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का

0: मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति यूवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगोमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, 1 गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है नया भारत और बदलती सियासी समझ, संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देश बंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, अब QR कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला, मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता। राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय NR कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Akashwani presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Political activities in Tamil Nadu turn hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test today. All India NR Congress leader N. Rangasamy to take oath as Chief Minister of Puducherry today. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi governments implement measures for fuel consumption following Prime Minister Narendra Modi's austerity appeal. Centre increases import duty on gold and other precious metals. IMD predicts early arrival of monsoon this year. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Sunrisers Hyderabad by 82 runs in Ahmedabad. And now the news in detail. In Tamil Nadu, political activities have turned hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test in the assembly today. In a dramatic turn of events, the AIADMK has split into two groups over extending support to the TVK government. Lone AMMK MLA S. Kamaraj has decided to support the TVK government. We have more from our correspondent.
4: The TVK with allies like the Congress, VCK, CPI, CPIM and IUML had enjoyed a majority of 120 to form the government in Tamil Nadu. After the government was sworn in, now it has the support of 30 AIADMK MLAs from the breakaway faction and one AMMK MLA, having a total of 151 MLAs. TVK will now have to prove the strength of the government today. The AIADMK led by General Secretary E. Palaniswamy has already said that those who do not adhere to the rules of the whip will be expelled from the party. The party founded by MGR will be facing a major political crisis presently. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
3: Meanwhile, Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay has reshuffled IAS officers in the state government, including former Chief Secretary N. Muruganandam and Finance Secretary T. Uday Chandran. The appointment of astrologer Ricky Radhan Pandit as officer on special duty and political wing secretary in the Chief Minister's office has triggered criticism from alliance partners. Congress MPs Sasikant Senthil and Jyoti Mani questioned the appointment, while CPIM State Secretary P. Shanmugam said the move went against the government's responsibility to promote scientific thinking. VCK General Secretary D. Ravi Kumar described the appointment as unacceptable in a secular government and urged reconsideration. All India NR Congress leader N. Rangasamy will be sworn in as the Chief Minister of Puducherry today. At a ceremony to be held at the Lok Nivas, Lieutenant Governor K. Kailashanathan will administer the oath of office in secrecy to Mr. Rangasamy. More from our correspondent.
5: In stark contrast to the post-election political drama witnessed in neighboring states, Puducherry is poised to witness a swearing-in ceremony marked by political continuity, with N. Rengasamy all set to walk into the Chief Minister's office once again. This will be the fifth term for the 76-year-old political stalwart as Chief Minister. Ministers will be also swearing in along with the

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की क्यादत वाली नौ मुंतखबा टीवी के सरकार आज असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करेगी। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के रहनुमा एन रंगासामी आज पुदुचेरी के वजीर आला का हलफ लेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई किफायत शहरी की अपील के बाद ईंधन की खपत से मुतालिक इकदाम पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। मरकज ने सोने और दीगर कीमती धातों पर दरामदाती ड्यूटी में इजाफा कर दिया है। IMD ने इस साल मानसून जल्द शुरू हो जाने की पेशगोई की है। और IPL में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। तमिलनाडु में आज टीवी के हुकूमत असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करेगी। वजीर आला सी जोसेफ विजय इस आजमाइश से पहले हिमायत हासिल करने की गरज से अपनी हामी पार्टियों के रहनुमाओं के साथ मीटिंग्स करते रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: तमिलनाडु में हुकूमत तश्कील देने के लिए कांग्रेस, VCK, CPI, CPIM और IUML जैसी इत्यादि पार्टियों के साथ TVK के पास 120 अरकान की अक्सरियत है। सरकार की हलफबरदारी के बाद अब TVK को AIADMK के 29 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल है जो इस पार्टी से अलग हुए हैं। TVK को अम्मा मक्कल मुनेत्र कडगम के एक MLA एस कामराज की भी हिमायत हासिल है। अब असेंबली में TVK के पास कुल 151 अरकान हैं। जनरल सेक्रेटरी ई पलानीस्वामी की क्यादत वाली AIADMK ये कह चुकी है कि जो लोग व्हिप के जाब्तों पर अमल नहीं करेंगे उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इस पार्टी की बुनियाद MGR ने रखी थी और इसे फिलहाल एक बड़े सियासी बुहरान का सामना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: ऑल इंडिया NR कांग्रेस के रहनुमा एन रंगासामी आज पुडुचेरी के वजीर आला का हलफ लेंगे। एक सादा सी तकरीब में जो लोक निवास में मुनाकिद की जाएगी, पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाश नाथ जनाब रंगासामी को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: पुडुचेरी में हलफ बरदारी की तकरीब मुनाकिद की जाएगी। एन रंगासामी वजीर आला के ओहदे की एक बार फिर जिम्मेदारी संभालने को तैयार है। 76 साल सियासी कदावर शख्सियत की वजीर आला के तौर पर यह पांचवी मुद्दत होगी। इस तकरीब में वजीर आला के साथ साथ कुछ वजीरों को भी हलफ दिलाया जाएगा। मरकजी वजीर और BJP के चुनाव इंचार्ज मनसुख पांडविया, BJP के कौमी सदर नितिन नबीन, BJP पुडुचेरी के इंचार्ज निर्मल कुमार सुराना और रियासती BJP के सदर VP रामलिंगम उन मुमताज रहनुमाओं में शामिल हैं जिनकी इस तकरीब में शिरकत की उम्मीद है। जनाब नवीन कल शाम पुडुचेरी पहुंचे थे। उन्होंने पार्टी अहदेदारों और पार्टी हेडक्वार्टर में कानून साज अरकान से बातचीत की थी। पुडुचेरी से बिबिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: मगरबी बंगाल में हुकूमत की तब्दीली के बाद रियासती पुलिस ने नज्म व जब्त और सियासी तशद्दुद के माजी के मामलात के बारे में फौरी तौर पर एक मौकफ इख्तियार किया है। इस सिलसिले में नज्म व जब्त के ADG ने कल सभी पुलिस कमिश्नरों, पुलिस सुपरिंटेंडेंट्स और रेलवे हुकाम को एक तफसीली हिदायत जारी की है जिसमें बहुत से फौरी इकदाम के बारे में कहा गया है। इस हिदायतनामे में 2021 के असेंबली

0: नामे में सरहद के बारे में मीटिंग्स और खुफिया मालूमात एक दूसरे को फराहम करके सरहद पार से की जाने वाली स्मगलिंग और जराइम के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया गया है। मगरबी एशिया के बहरान के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की किफ़ायत की अपील के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के वज़राए आला ने वज़ीरों, अरकान असम्बली और अवामी नुमाइंदों की सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के इकदाम का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वज़ीर आला, वज़ीरों और दीगर अफसरान के गाड़ियों के काफ़िले में 50% कटौती करने का हुक्म जारी किया है और हिदायत दी है कि सरकारी काफ़िलों से गैर ज़रूरी गाड़ियों को हटाया जाए। रियासती सरकार ने PNG, मेट्रो खिदमात और सरकारी ट्रांसपोर्ट के ज़्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया है और मीटिंगें वर्चुअल वसीले से मुनक़िद करने, नीज हफ्ते में एक बार कोई गाड़ी नहीं चलेगी का उसूल अपनाने की हौसला अफजाई की है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लोगों से कहा है कि वो कम ईंधन इस्तेमाल करें और सोने की गैर ज़रूरी ख़रीदारी से गुरेज करें। चीफ सेक्रेटरी, DGP और मुख्तलिफ महकमों के तमाम एडिशनल चीफ सेक्रेटरियों और प्रिंसिपल सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग के दौरान योगी आदित्यनाथ ने हिदायत दी कि वज़ीर आला, वज़रा और दीगर के काफिलों में फौरी तौर पर 50% की कमी की जाए। उन्होंने हिदायत दी कि गैर ज़रूरी गाड़ियों को सरकारी काफिलों से हटाया जाए। वज़ीर आला ने रियासत में घर से काम करने के कल्चर को तरजीह देने की अपील की। उन्होंने PNB मेट्रो सर्विस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जरिए चलाई जा रही बसों के इस्तेमाल पर ख़ास तौर से जोर दिया। वज़ीर आला ने कहा कि वज़रा, MP, MLA और सरकारी नुमाइंदों को हफ्ते में कम से कम एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना चाहिए। हर हफ्ते एक बार नो व्हीकल डे भी मनाना चाहिए। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव ने मज़ीद अहकामात जारी होने तक अपने काफिले में गाड़ियों की तादाद कम कर दी है। पीर को एक काबीना मीटिंग में जनाब यादव ने वज़ीरों की कौंसिल के अरकान से अपील की है कि वो कौमी मफाद के तहत पेट्रोल और डीजल की खपत में कमी लाएं। उन्होंने सरकारी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। एक अफसर ने बताया कि उनके दौरे में जो रैलियाँ मुनक़िद की जाएंगी उनमें गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने भी वज़ीरों, अरकान असम्बली, अफसरान और सरकारी महकमों से कहा है कि वो सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल महदूद कर दें, कार पूलिंग यानी गाड़ियों को मुश्तरक तौर पर इस्तेमाल करें और मेट्रो और बस खिदमात को तरजीह दें। हुकूमत ने सोने और दीगर कीमती धातुओं पर दरामदी ड्यूटी में इजाफा किया है जो आज से नाफिजुल अमल होगी। एक बयान में वजारत खजाना ने कहा कि सोने और चांदी के जेवरात के हिस्सों पर 5% ड्यूटी और प्लेटिनम के हिस्सों पर 5.4% ड्यूटी लगेगी। मजीद बरां कीमती धातुओं के इस्तेमाल शुदा कैटलिस्ट की शरह 4.35% मुकर्रर की गई है जो कि तामील के मेयारात को पूरा करने से मशरूत है। इससे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया में जारी बहरान के मद्देनज़र लोगों से सोना न खरीदने की अपील की थी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। तहकीकात के मरकजी ब्यूरो CBI ने मुबैना नीट पेपर लीक के मामले में शुभम खैर नार को हिरासत में ले लिया है। शुभम को राजस्थान पुलिस की दरख्वास्त पर नासिक पुलिस के क्राइम ब्रांच यूनिट ने कल महाराष्ट्र के शहर नासिक से गिरफ्तार किया था। मेडिकल कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट UG 2026 इम्तिहान इस महीने की 3 तारीख को कराया गया था जिसे कल पेपर लीक के इल्ज़ाम के तहत मनसूख कर दिया गया। हुकूमत ने CBI से कहा है कि वो बदउनवानी के खिलाफ मुकम्मल इंक्वायरी करे। एक और मुतालिका वाक़े में नीट UG 2026 के एक उम्मीदवार के वालिदैन ने लातूर के SP ऑफिस में एक दरख्वास्त दाखिल की है जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि एक प्राइवेट कोचिंग इदारे ने इम्तिहान से पहले एक मॉक टेस्ट लिया था जिसमें मुबैना तौर पर 42 सवालात उन सवालात से यकसानियत रखते थे जो असल नीट पेपर में पूछे गए थे। SP अमूल तांबे ने सब डिविजनल पुलिस अफसर को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर इंक्वायरी शुरू करें और कसूरवारों के खिलाफ कानूनी कदम उठाएं। इससे पहले राजस्थान पुलिस के खसूसी ऑपरेशंस ग्रुप ने मुश्तबह नेटवर्क और पैसे के लेन देन की तफ्तीश के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया था। इस ग्रुप ने कल एक मुबैना सरगना मनीष को जयपुर से गिरफ्तार किया है। हुकूमत ने सालाना मजमूई घरे

0: घरेलू पैदावार जीडीपी के आरजी तखमीने और चौथी सहमाही के लिए जीडीपी के सहमाही तखमीने के इजरा की तारीख दोबारा मुकर्रर की है। पहले ये तारीख मई का कामकाज का आखिरी दिन होता था, लेकिन अब इसे हर साल जून की 7 तारीख कर दिया गया है। इजरा की तारीख में ये तब्दीली कौमी अकाउंट्स के आदादो शुमार से मुतालिक मशावरती कमेटी के साथ सलाह मशवरे के बाद की गई है। वजारत ने कहा है कि इस तब्दीली का मकसद आदादो शुमार की क्वालिटी को मजीद मुस्तहकम बनाना है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की क़यादत में एक आला सतही भारतीय पार्लिमानी वफद आज से भूटान का दौरा करेगा। इसका मकसद भारत भूटान रिश्तों को मजीद मुस्तहकम करना है। इस 51 रुकनी वफद में राज्यसभा और लोकसभा के अरकान पार्लिमान और वजारत खारजा के अहलकार शामिल हैं। महाराष्ट्र के ज़िला सांगली की जाट तहसील में कल एक मजहबी तकरीब के दौरान दीवार गिरने से 6 अकीदतमंद हलाक और तकरीबन 15 जख्मी हो गए। तकरीब में 300 से ज़्यादा अकीदतमंद जमा थे, जब इलाके में तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिश हुई। तकरीबन 30 अकीदतमंद एक दीवार के पास खड़े हो गए और इसी वक्त दीवार गिर गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। जख्मियों को इलाज के लिए जाट और सांगली सिविल अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दीवार गिरने के हादसे में होने वाली अमवात पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की तमन्ना की। सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान की ताज़ा तरीन अमन तजवीज़ को मुस्तरद किए जाने के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी में और भी कमज़ोरी पैदा हो गई है। जनाब ट्रंप ने ईरान की तरफ से की गई जवाबी पेशकश को कचरा बताया है। इस इल्ज़ाम तराशी के सबब मगरबी एशिया में तनाज़े को फैलने से रोकने की कोशिशों में गैर यकीनी पैदा हो गई है। जम्मू कश्मीर में फ़ौज ने कल पुंछ ज़िले में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब दरअंदाजी की एक कोशिश नाकाम कर दी। कृष्णा घाटी सेक्टर में एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया। भारत में इस हफ्ते जुनूब मगरबी मानसून दस्तक दे सकता है। महकमे मौसमियात IMD के मुताबिक इस हफ्ते के अख्ताम तक जुनूब मगरबी मानसून के जुनूबी खलीज बंगाल, अंडमान समुंदर और अंडमान और निकोबार जजायर के हिस्सों में आगे बढ़ने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुनूब मगरबी खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का हल्का कल उसी इलाके में बरकरार है। इसके साथ ही हवा का गिरदाबी निज़ाम सतह समुंदर से 4.5 किलोमीटर की बुलंदी तक फैला हुआ है। भारत के महकमे मौसमियात ने राजस्थान में शदीद गर्मी और लू के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। रियासत के सरहदी अजला में इस वक्त सख्त गर्मी है। कई मुकामात पर दर्ज हरारत 45 से 47 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड किया जा रहा है। IPL क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से शिकस्त दी। आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने आज अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इंकलाब ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि मगरबी बंगाल के अवाम की फलाह व बहबूद हुकूमत की अवलिन तरजीह, रियासत के अवाम को आयुष्मान भारत सेहत बीमा स्कीम के फवायद हासिल होंगे। अखबार प्रताप ने भी इस खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, सदर जमहूरिया ने 15 नर्सिंग स्टाफ को नेशनल फ्लोरेंस नाइटेंगेल अवार्ड से नवाजा। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने हेमंत बिस्व शर्मा के मुसलसल दूसरी बार आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेने की खबर को नुमायाँ तौर पर शाया किया है। अखबार इनकलाब ने वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल की इस बयान को अहमियत दी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान की मदद की। हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से असलाह, धमाका खेज मवाद और 1 करोड़ नकद बरामद। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, भारत नेपाल सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश, 4 अफराद गिरफ्तार। अखबारात की अहम बैन अलाक्वामी खबरें इस तरह हैं, मुज़ाकरात में हो रही नाकामी पर ट्रंप का ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का मंसूबा ज़ेर गौर, दोबारा हमला हुआ तो 90% यूरेनियम अफजूदगी शुरू हो सकती है, ईरान का बयान।
0: खास खास खबरें एक बार फिर, तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की क़यादत वाली नौ मुंतखबा टीवी के सरकार आज असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करेगी। ऑल इंडिया एनआर

कांग्रेस के रहनुमा एन रंगासामी आज पुडुचेरी के वजीर आला का हलफ लेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई किफायत शेयरी की अपील के बाद ईंधन की खपत से मुतालिक इकदामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। मरकज ने सोने और दीगर कीमती धातुओं पर दरामदाती ड्यूटी में इजाफा कर दिया है। IMD ने इस साल मानसून जल्द शुरू हो जाने की पेशगोई की है। और IPL में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से शिकस्त दी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। 8:45 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा के अंतर्गत आइए सुनते हैं सईद अहमद खान का सितार वादन राग अलहैया बिलावल में। तबले पर संगत कर रहे हैं जी जी भारती।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी ने आज पुद्दुचेरी की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित समारोह में पुद्दुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में ये 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुद्दुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामालिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वासमत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीति में नाटकीय मोड़ आया, जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डपड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन ना करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बीच कल रद्द कर दी गई थी। सरकार ने CBI को अनियमितताओं की व्यापक जांच के निर्देश दिए हैं। वैश्विक ईंधन में कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के बेड़े में 50% वाहनों की कमी का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या को कम कर दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावित हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लेटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा में भाग लेने के इच्छुक लोगों से 19 मई से पहले आवेदन करने का आग्रह किया है। इस यात्रा के लिए पंजीकरण जल्द ही बंद होने वाले हैं। इच्छुक आवेदक आधिकारिक वेबसाइट kmy.gov.in पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और पंजीकरण करा सकते हैं। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों से देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह के 10:10 और पूरे 20 सेकंड। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद।

जी हाँ दोस्तों, मैं भी हूँ, आप भी हैं और कार्यक्रम है आपकी पसंद और साथ हूँ मैं आपकी दोस्त आरती कौर। इस कार्यक्रम का बेसब्री से आप रोज़ इंतज़ार करते हैं, अपने मेल को बड़े प्यार से लिखते हैं और हम तक पहुंचा देते हैं। और देखिए, कार्यक्रम शुरू हुआ नहीं और हमारे पास हो गई है मेल की बारिश, जैसे वो बारिश हो रही है बाहर मौसम के बदलते अंदाज के साथ। तो भाई, और भी श्रोता जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो चाह रहे हैं कि हम भी अपनी कुछ बात कह दें, तो ipradiodelhi@gmail.com आपका इंतज़ार कर रहा है। जल्दी से आप अपना मेल हम पर पहुंचाइए और साथ ही सुनते जाइए ये खूबसूरत संगीत आप सबका

तो दोस्तों, मैं भी हूँ, आप भी हैं, लेकिन साथ है खूबसूरत सा मौसम, जो भाई हमारी दिल्ली में तो बदल चुका है, क्योंकि मुझे यहाँ से जो नज़ारा नज़र आ रहा है वो है थोड़ा बारिश का। हवाएं चल रही हैं ठंडी और मौसम बदल गया है। कल तक गर्मी से परेशान थे और आज मुझे लग रहा है कि शायद बारिश में भीगते हुए घर जाना पड़ेगा। कुछ ऐसी मेरे मन में हलचल मची हुई है। वैसे आपके मन में कैसी हलचल है? महीना मई का है, तपती दोपहर की हम उम्मीद लगाते हैं और ऐसे में ये राहत पहुंचाने वाली बारिश बार बार हम सबके मन को और तन को भिगो जा रही है। तो कैसा लग रहा है इस मौसम का बदलता अंदाज आपको, और आपके शहर के क्या हाल हैं ये भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। कैसे? ipradiodelhi@gmail.com पर। जैसे हमारे पास ये संदेश आया है बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु रिधान खुराना कहते हैं आरजे आरती जी नमस्कार, लवली सॉन्ग से आगाज, मुझको देखोगे जहाँ तक। जी हाँ, जहाँ तक देखेंगे इंद्रप्रस्थी नजर आएगा, क्योंकि आप सबके लिए इतना प्यारा कार्यक्रम हम लेकर जो आते हैं।

0: और दोस्तों ये हमारे पास जो संदेश आए हैं इनमें लिखने वाले हैं छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले कापासडा बॉर्डर नई दिल्ली से, बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फूल वाले और समस्त फूल वाले फैमिली हमारे साथ जुड़ी हुई है। और इसके साथ ही जो अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
1: हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा।

0: यारों से जुदा है बचना ऐ हसीनों, लो मैं आ गया।
1: जी हाँ, मैं को आए हुए तो 13 दिन बीत गए हैं, आज 13 तारीख है, लेकिन मौसम रोज अपने अंदाज नए नए दिखा रहा है। हम उम्मीद लगाते हैं चिलचिलाती धूप की, ठंडी शिकंजी पीने की और लू के थपेड़ों की, लेकिन आपने गौर किया है मई का जो मिजाज है वो बदल चुका है। सूरज की तपिश आती है लेकिन उस पर बारिश पड़ जाती है और उसके बाद आसमान में अचानक से बादल छा जाते हैं, ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, कभी धूल भरी आंधी आ जाती है तो कभी हो जाती है झम झम झम झम बारिश। जी हाँ, ऐसा कुछ कुदरत हमारे साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ खेल खेला जा रहा है या ये सिर्फ दिल्ली में ही हो रहा है? तो जल्दी से आप हमें लिख भेजिए आपके शहर का क्या है हाल, कैसे हैं आप इस मौसम के साथ, खुश या फिर बेहाल, आप हमें जल्दी से बताइए ipradiodelhi@gmail.com पर। और चलिए लेते हैं कुछ और संदेश।
0: आ गया।
1: ये हमारे पास जो संदेश आया है वो है किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास और आशा देवी का। इसके साथ अगले जो श्रोता जुड़े हैं वो हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कहते हैं बहुत ही बढ़िया शानदार प्रोग्राम पेश हो रहा है, बेहतरीन नगमे भी सुन रहे हैं और कार्यक्रम का ये मज़ा ले रहे हैं। तो भाई मज़ा तो आप ले रहे हैं लेकिन साथ ही अगर सवालों का जवाब भी मिल जाए तो मुझे भी पता चल जाए भाई किस किस जगह पर क्या क्या हालात चल रहे हैं मौसम के, मुझे भी समझ में आ जाए कि किस तरीके से मौसम असर दिखा रहा है आप सबके ऊपर। अगला जो संदेश है वो है लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू का। इसके साथ ही जुड़े हुए हैं हमारे साथ जवाहर नगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी।

ये हमारे पास जो अगला संदेश आया है वो है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा, स्वीटी छावड़ा, और कहते हैं मौसम बदल रहा है, इसमें सावधान रहने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जी हाँ, बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है, क्योंकि हर बदलते मौसम के साथ सिर्फ खुशियाँ नहीं, थोड़े से जो सर्दी ज़ुकाम और बुखार होते हैं ना, और वायरल, ये सब अपने साथ आते हैं तोहफे की तरह। तो इन तोहफों को लेने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, अपने लिए आपको सतर्क रहना ही होगा। अगला जो संदेश आया है वो है चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, और इसके साथ ही हमारे पास अगले संदेश में शामिल हुए हैं ये जो श्रोता हैं वो है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा, और ये कहते हैं हमारे यहाँ का भी मौसम बहुत खूबसूरत है जी। तो भाई सच में मौसम पता नहीं क्या दिखा रहा है, पता नहीं इसको अच्छा कहना चाहिए या फिर ये कहना चाहिए कि कहीं ये डर की बात तो नहीं है, क्योंकि मई से हमारी उम्मीदें ज़रा कुछ और ही होती हैं। लेकिन मई के मौसम में, मई के इस बार तो देखा जाए तो मार्च, अप्रैल, मई, तीनों ही महीनों में मौसम ने अपना अलग ही रुख अख्तियार किया हुआ है। अगला जो संदेश हमारे पास है वो है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी करवी, बेबी बॉय हिमाक्ष, ये लिखते हैं। साथ ही जुड़े हुए हैं हमारे साथ ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से।

तो ये जो अगला संदेश हमारे पास आया है ये है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य कहते हैं, मैडम जी आज हमारे यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, लगता है बारिश होगी। भाई सच में बारिश अपने आप में ही ना कुछ अंदर से ही हमें खुशी दे जाती है। मतलब देखा जाए तो सिर्फ पानी ही तो होता है, लेकिन उसके बावजूद वो जो आसमान से जो बूंदें टपकती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जैसे रूह को छू जाती हैं। और बारिश की बात सुनते ही सबके चेहरों पर अपने आप ही मुस्कान आ जाती है, पता नहीं कैसे वो सबकी फेवरेट हो जाती है। क्यों, सही कहा ना मैंने? चलिए बढ़ते हैं आप सबके संदेशों की तरफ। ये है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। इसके साथ ही हमारे साथ जो अगले श्रोता जुड़े हैं वो हैं संदीप मकर, ज्योति मन्नत, भरत कमल साहनी, पिंगा वाला चौक, गोरिया, जालंधर, पंजाब से। और ये भी कहते हैं कि जालंधर में अभी गर्मी है बहुत ज़्यादा और मौसम बेईमान हो जाए यही चाहते हैं। भाई हमारे यहाँ तो दिल्ली में मौसम फुल्ली बेईमान हो चुका है, समझ ही नहीं आ रहा कि ये किधर जाएगा, फिर से सूरज को हमारे सर पे बिठा देगा या फिर बारिश की बूंदों से हमें भिगो देगा। लेकिन मैं यही चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं मौसम बेईमान हो जाए तो फिर हो ही जाए। आगे जो संदेश है वो है दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, ये कह रहे हैं कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है और हम सुने बिना नहीं रह सकते। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस कदर हमसे मोहब्बत करते हैं।

ये जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, पप्पी भाटिया और सोनू भाटिया। स्टेशन रोड जमशेदपुर से ये लिखते हैं। इसके साथ ही अगले जो श्रोता हैं वो हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल। साथ ही इन्होंने बहुत सारे संदेशों की झड़ी लगा दी है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास जो संदेश आया है वो है नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, मिसेस पिंकी साहनी, डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कड़ और रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी साहनी और मिसेस सुनीता साहनी। ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं।

और अगले जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो कहते हैं, देश के कोने कोने से आए हुए श्रोताओं के मैसेजेस से पता चल रहा है कहाँ कहाँ मौसम कैसा है। बढ़िया लग रहा है सुनने में, हमारे यहाँ तो गर्मी जोरों से है। भाई इनके यहाँ पर गर्मी है तो मैं बारिश से प्रार्थना करूँगी कि थोड़ा सा इनके पर भी रहम करिए और वहाँ पर भी बरस जाइए और इनके यहाँ जो ये गर्मी है इसको शांत कर दीजिए। लिखने वाले हैं कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल, ये हमेशा जुड़े हैं। साथ ही अगले जो श्रोता जुड़े हैं वो हैं एनी सॉन्ग मॉडल टाउन करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और इशप्रीत शर्मा, और ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही जो अगले श्रोता जुड़े हैं वो हैं मुसर्रत जहां नाज शिक्षिका, तलत जहां नाज, फरहत जहां नाज, रिफत, नुजहत, शाजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज, और कहते हैं हम बहनों को प्रोग्राम में शामिल करें, तो भाई आप सब शामिल हो चुके हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं ये हैं हमारे साथ किशन वनजानी, कार्यक्रम शानदार चल रहा है, गीत पसंद आ रहे हैं, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, ये गीत ये सुनना चाहते हैं, तो भाई कोशिश करेंगे कि आपका गीत आप तक ज़रूर पहुँचे। इसके साथ ही अगले जो श्रोता हैं वो हैं वाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, देवेंदु भूषण, संस्कृति, पौरुष, ये कहते हैं अब मौसम भी इंसानों की तरह बदलने लगा है, सूरज की जगह अब लोगों का दिल चलने लगा है। तो भाई ये तो बात आपने सही कही, क्योंकि लोगों में थोड़ी बहुत तो चेंजेस आ गए हैं जिस तरह मौसम में आ गए हैं, लेकिन उस चेंजेस को ना हम खुद ही बदल सकते हैं। अगर आप चाहें तो सामने वाला आपके साथ अगर गलत कर रहा है, आप भी उसके साथ गलत करने पे आ गए तो बराबरी हो जाएगी ना। नहीं, थोड़ा अपने आप को बदलिए, थोड़ा देखिए कि जब

जलते हैं तो उस पर मरहम लगाया जाता है। तो बस वही आप बात आप ध्यान रखिए और अपने आप में थोड़ा सा बदलाव लाइए और लोगों का जो दिल जल रहा है उस पर प्यार का मरहम लगाइए। अगले जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो कहते हैं, मैडम हमारे इधर का मौसम आज सवेरे 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान, हम आपका प्रोग्राम बहुत पसंद करते हैं, धूप में निकला ना करो रूप की रानी, ये गीत ये सुनना चाहते हैं, तो चलिए कोशिश रहेगी।

राजे यादव, डॉक्टर प्रशांत राजे यादव, कुमार संचित वायल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सरवत देशमुख और कुमारी सानवी देशमुख, ये लिखते हैं देशमुख वायल परिवार। तो चलिए, आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कि आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो इसी तरीके से सुनते रहिए और पसंद

अगले जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी, तनुश्री गुप्ता, अभय कुमार सनातनी, शिवानी, प्रियंका कुमारी साहू, मुन्नी देवी शौ, जयप्रकाश राव और रिया जिया टुस्सी आयुषी अनिरुद्ध बाबू। ये कहते हैं हमारे यहाँ कोलकाता में दिन में उमस भरी गर्मी और शाम को रिमझिम बारिश हो रही है, मौसम बेईमान सा हो गया है। और साथ में उन्होंने कहा है कि आपके साथ यहाँ भी मेरे साथ बेईमानी हो रही है, दो चार दिन से मेरे मैसेजेस को दरकिनार किया जा रहा है, शामिल नहीं हो रहा, ऐसा क्यों? भाई ऐसी कोई भी आपके साथ बेईमानी नहीं हो रही है, बल्कि हमारे यहाँ के जो कुछ श्रोता है ना वो थोड़े से बदमाश हो गए हैं, वो बार बार हमारे कहने पर भी मानते नहीं और एक के बाद वो भी बारिश की तरह अपने मेल की झड़ी लगा देते हैं और ऐसे में बेचारे कुछ श्रोता जो होते हैं उनके मैसेज उसमें दब के रह जाते हैं। तो भाई आप सुन लीजिए, कभी कभी आप सब की वजह से ऐसे भी हो जाता है। हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि आप सबका संदेश शामिल हो, क्योंकि हमारी तो किसी से नाराज़गी है ही नहीं, आप सब इतने प्यार से हमें सुनने आते हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है ना कि आपके संदेशों को उसी तरह शामिल करें। तो कोशिश कीजिए एक या दो बार से ज़्यादा अपने संदेश ना भेजें ताकि बाकी साथियों को भी मौका मिले। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी से इनका 20 संदेश ऑलरेडी लिया जा चुका है। किशनगंज बिहार से इनका संदेश भी लिया जा चुका है। तो देखिए इस तरीके से कई बार संदेश भेजे जाते हैं और इसमें परेशान होते हैं हम और फिर आप माई लगाते हैं डांट। तो ज़रा अपने साथी श्रोताओं से भी समझाइए कि थोड़ा सा कोशिश करें, हम पर भी रहम खाएं।

ये जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। कहते हैं हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी है, थोड़ी सी बरसात हमारी तरफ भी भेज दें। तो भाई मेरी यही ख्वाहिश रहेगी कि आपकी तरफ भी थोड़ी क्या बहुत सारी बरसात हो जाए और आपको इस गर्मी से राहत मिल जाए। अगले जो श्रोता हैं वो कहते हैं हम आजकल मुंबई में हैं। मुंबई में वैसे तो सम जलवायु कही जाती है, लेकिन अप्रैल ख़त्म होते होते मई का महीना सबसे गर्म होता है और 15 जून तक गर्मी रहती है।

हालांकि टेम्परेचर 36 डिग्री की रेंज में रहता है, लेकिन ह्यूमिडिटी परेशान करती है। सूरज अपने चरम पर जाने वाला है, अभी बारिश का कोई साइन नहीं है। तो वही मुंबई के हालात तो कुछ इस तरह से हैं, और ये बताने वाले हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से, शुभचंद्र बजाज और साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। तो भाई हम यही कहेंगे कि आपको भी राहत मिले, क्योंकि ये जो मौसम है ये खेल खेल रहा है। कभी धूप से हमें जला देता है तो कभी बारिश करके हमें खुश कर देता है। तो मैं यही चाहूँगी कि अगर आपकी तरफ बहुत ह्यूमिडिटी है तो वो कम हो जाए, और ये जो गर्मी है, ये जो सूरज है अपने चरम पर बैठा हुआ है, वो बारिश के पीछे छिप जाए। अगले जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं किशनगंज बिहार से। ये बार बार आप तो संदेश हमारे पास भेज रहे हैं, कम से कम 5-6 बार आपका संदेश बार बार रिपीट होके हमारे पास आया है, और ऐसे कई सारे संदेश हैं जिनकी वजह से कुछ ऐसे श्रोता रह जाते हैं जो बेचारे एक बार भेजते हैं और हमारी बात को मानते हैं। तो चलिए कोशिश यही रहेगी कि सबके संदेशों को शामिल करें, और आप भी कोशिश कीजिए एक या दो बार से ज़्यादा अपने संदेश ना भेजें।

ये जो हमारे पास संदेश आया है वो है खेल बाजार पानीपत से। नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू और भाविक सिक्का।

ये जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, ये लिखते हैं शांति नगर सोनीपत से। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और कैथल हरियाणा से मधु नायक। साथ ही हमारे साथ अगले जो श्रोता हैं वो कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी, सुशील योगी, बब्बू डब्बू, राजू मिगलानी और बबीता मिगलानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ जो श्रोता हैं वो हमसे ये शिकायत कर रहे हैं कि उनका संदेश नहीं लिया गया है, तो हम उन्हें ये बताना चाहेंगे कि कृपया कार्यक्रम को बहुत ही इत्मीनान से, प्यार से और पूरा सुनिए। यकीन मानिए आपका संदेश लिया जा चुका है। और ऐसा कहने वाले हैं खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा उर्फ नीटू। अब बहुत सारे श्रोता होंगे जिन्होंने इनका नाम सुना होगा पर ये शायद अपना नाम सुनना भूल गए हैं, तो कोई बात नहीं, दोबारा आपका नाम ले लिया है, लेकिन शिकायत करने से पहले कृपया कार्यक्रम को पूरा सुना कीजिए। अगले जो श्रोता हैं वो हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर हमारे साथ जुड़े हैं। इसके साथ ही अगले जो श्रोता हैं वो हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, ये कहते हैं कोई भी गीत सुना दीजिए। तो देखिए इतने प्यारे प्यारे गीत आप सब हम तक पहुंचा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी फरमाइशों को पूरा कर सकें। अगले जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं श्रोता हैं ये रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू, और कहते हैं ज़िंदगी में सबसे हसीन पल वो होता है जब आप मुस्कुराते हैं, क्योंकि कोई और कहे कि तुम्हारी मुस्कान में ही पूरी दुनिया बसी है। कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। वाह वाह, क्या लाइनें लिखी हैं आपने, और सच में मुस्कान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में तो सब किस रूटीन लाइफ तो सभी फॉलो कर ही रहे हैं कि सारे काम जो करने हैं वो कर रहे हैं, लेकिन एक काम जो कई बार हम करना भूल जाते हैं वो है मुस्कुराना। तो अपने जीवन में इसको सबसे पहले अप्लाई करना सीखिए, आपको मुस्कुराना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप पॉजिटिविटी से किसी चीज़ को देखते हैं तो कई बार आपको अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल जाता है, और अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं भी मिलता तो भी कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अलग हिम्मत आ जाती है और आपकी मुस्कुराहट को देखकर कोई और भी मुस्कुराना सीख जाता है।

बढ़ते हैं आपके संदेशों की तरफ। ये हमारे पास मोहाली पंजाब से बब्बन मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा ये लिखते हैं, दीदी जी को प्यार भरी नमस्कार और कार्यक्रम लाइव सुन रहे हैं, बहुत दिनों के बाद मेल भेज रहे हैं, कृपया किसी भी गीत में शामिल करें। तो भाई एक खूबसूरत सा गीत आप सबके लिए हाजिर है और इतने समय बाद आप मेल भेज रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारे पास जलालाबाद वेस्ट से सुरेश कगनेजा, पूनम कगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित का भी संदेश आया है। साथ ही हमारे साथ गांव चौधरी वास हरियाणा से मांगेराम सतोड़ और कहते हैं, मैडम जी हमारा एक भी मेल आपने शामिल नहीं किया और इसके लिए ये इन्होंने लिखा हुआ है कि आपके मेल ना शामिल करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो भाई ये किसका मेल शामिल हो रहा है, ये जो मैं नाम पढ़ रही हूँ ये किसका नाम ले रही हूँ, मैं आप ही का ले रही हूँ ना, थोड़ा सा इंतज़ार तो किया कीजिए, कार्यक्रम पूरे 50 मिनट का है तो उस 50 मिनट में कम से कम थोड़ा तो वेट कीजिए, क्योंकि नाम धीमे धीमे आएंगे, क्योंकि छोटे छोटे सॉन्ग्स जो आप रिक्वेस्ट करते हैं वो भी तो आप तक पहुँचाने होते हैं। फिलहाल आपका संदेश

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरमंजरी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आपने सुना पंडित राजीव वर्मा द्वारा सितार वादन राग जौनपुरी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। दोपहर के 12 बजने को हैं, आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित तमिल कवयित्री कड़गम टीवी के सरकार ने विश्वास मत में बहुमत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने पक्ष में मतदान किया है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए नमसिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम, अधिकारी और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। वैश्विक

उन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनके हाल ही यात्राओं के दौरान लागू की गई। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिसो पेरेस मैकेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिसको ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। नीट UG परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह SOG द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत SOG ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। पंजाब सरकार ने रक्षा बलों में कार्यकाल पूरा करने के बाद अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति बनाने का निर्णय लिया है। प्रक्रिया रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी है। सरकार का कहना है कि पंजाब पुलिस, वन रक्षक, अग्निशमन सेवा, जेल, होमगार्ड और अन्य कई विभागों में उनकी सेवाओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। IPL क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

घर आंगन। नमस्कार। अगर इस वक्त आपकी जिंदगी एक स्क्रीन होती तो उस पर क्या चल रहा होता? रफ्तार, जिम्मेदारियां या थोड़ी सी थकान? तो चलिए अगले 50 मिनट तक के लिए उस स्क्रीन को थोड़ा सा पॉज करते हैं और कनेक्ट होते हैं खुद से, अपनों से और जिंदगी के जज्बातों से। आप सुन रहे हैं ना, तो घुमाते हैं पहिया कार्यक्रम घर आंगन का और इन लम्हों में आपकी सारथी बनी हूँ मैं, श्रुति पुरी। ये समय है दोपहर 12:10 का और अगर 1 बजे तक भी आपको लगे कि आपकी कोई बात, कोई अनुभव या कोई सवाल इस बातचीत का हिस्सा बनना चाहिए तो हमें लिखिए fmgoldgia@gmail.com पर, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज़ जुड़ती है उस सफ़र से जो हमें आप तक ला रहा है। FM गोल्ड 100.1 MHz पर, इंद्रप्रस्थ पर आप हमसे जुड़े हैं 366.3 मीटर यानी 819 KHz और DRM 810 KHz पर, और हमारा डिजिटल परिवार हमें सुन रहा है AIR न्यूज़ लाइव 24/7 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए कार्यक्रम के रथ को आगे बढ़ाते हैं और एक नया अनुभव संजोते हैं इस गीत के साथ। हम जोली फिल्म में अभी आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

और श्रोताओं, अब समय है सुविचार का। आज के सुविचार को हो सकता है कि आप भी शायद मेरी तरह पसंद करें। महान कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। दिनकर जी ये बताना चाहते हैं कि अगर इंसान पूरे मन से मेहनत करे और हार न माने तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो सकती है। कई बार जीवन के रास्ते बंद लगते हैं, लेकिन लगातार प्रयास करने वाला व्यक्ति अपना रास्ता खुद बना लेता है। सफलता पाने के लिए हौसला, मेहनत और विश्वास बहुत जरूरी है, और जरूरी है अपनों का साथ या उनके साथ होने का एहसास। प्यासा सावन, इस फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे हैं।

श्रोताओं, भारत के इतिहास और साहित्य जगत में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी। आज पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती है, जो हमें लोकतांत्रिक मूल्यों, सादगी और राष्ट्र सेवा की याद दिलाती है। आज ही के दिन भारतीय अंग्रेजी साहित्य को नई पहचान देने वाले लेखक आर के नारायण की पुण्यतिथि भी है। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पांचवें राष्ट्रपति थे। उनका व्यक्तित्व सौम्य, सरल और जनसेवा के प्रति समर्पित था। उन्होंने देश के संवैधानिक मूल्यों को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं

आर के नारायण ने अपनी लेखनी से भारतीय जीवन, छोटे शहरों की संवेदनाओं और आम लोगों के अनुभव को बेहद सहज भाषा में दुनिया के सामने रखा। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में मालगुड़ी डेज विशेष रूप से लोकप्रिय रही। उन्होंने भारतीय कथाओं को वैश्विक पहचान दिलाई। श्रोताओं, कुछ लोग अपने पद से बड़े होते हैं और कुछ अपनी प्रतिभा से। फखरुद्दीन अली अहमद और आर के नारायण दोनों ही इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। इंतकाम फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे हैं।

0: ऐसे होते हैं जो वर्षों बाद भी अपनी आत्मीयता और प्रासंगिकता बनाए रखते हैं। आकाशवाणी और उसके श्रोताओं का संबंध भी कुछ ऐसा ही है। अपने 90 वर्ष पूरे कर रहा आकाशवाणी आज केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं, बल्कि भारतीय जनजीवन की स्मृतियों, संवेदनाओं और संवाद का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। गांव से शहर तक, युवा से वरिष्ठ तक और समाज के हर वर्ग तक इसकी पहुंच है। विशेष रूप से दिव्यांग जन के लिए आकाशवाणी ने हमेशा एक ऐसे साथी की भूमिका निभाई जिसने उन्हें सूचना, मनोरंजन, साहित्य, संगीत और समाज से निरंतर जोड़े रखा। इसकी सहज उपलब्धता, सरलता और विश्वसनीयता ने इसे दिव्यांग जनों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय बनाया। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के इस अवसर पर आइए सुनते हैं कि क्यों ये माध्यम आज भी दिव्यांग जन की पहली पसंद बना हुआ है। ये है हमारी दिव्यांग श्रोता अंजलि।
1: मेरा नाम अंजलि है। मेरी दुनिया की रंग बिरंगी दुनिया को मैं देख नहीं सकती। मेरी तो दुनिया रेडियो है, जो मैं हमेशा सुनती आई हूँ और सुनती रहती हूँ। इसके प्रोग्राम मुझे बहुत ही मन लुभावने लगते हैं, क्योंकि दृष्टिहीन होने के कारण मुझे इस दुनिया की चकाचौंध दिखाई नहीं देती। लेकिन जो प्रोग्राम आते हैं उन्हें मैं सुन के मुझे खुशी का अनुभव होता है। टीवी या और कुछ हम देख नहीं पाते। इसी को सुनकर, इसकी कहानी, मनोरंजक प्रोग्राम सुन के मन को बहुत ही प्रफुल्लित होता है। अधिक खुशी जब होती है जब आकाशवाणी से हमें कहा जाता है कि आप अपने विचार बताइए, तो बस यही शब्द रह जाते हैं कि काश अगर दृष्टि होती तो हम दुनिया को देख पाते। लेकिन कानों से सुनते हैं तो उसी को मनोवित कर लेते हैं कि हमें सब कुछ दिख रहा है।
0: आकाशवाणी की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसने कभी अपने श्रोताओं के बीच कोई भेद नहीं किया। सभी तक समान रूप से पहुंचने और उन्हें जोड़ने की क्षमता ही इसकी असली ताकत है। दिव्यांग जन के लिए ये माध्यम केवल कार्यक्रम सुनने का साधन नहीं, बल्कि आत्मीय संवाद और आत्मनिर्भरता का माध्यम भी रहा है। आइए बात करते हैं आकाशवाणी से जुड़े कवि दिव्यांग सुनील कुमार कर्दम से।
2: यूं तो आकाशवाणी से बचपन से ही मेरा लगाव रहा है। 90 के दशक में जब गांव में टीवी नहीं हुआ करते थे, तब हम रेडियो पर अपने मन पसंद कार्यक्रम सुना करते थे। समय समय पर आकाशवाणी से सामाजिक संदेशों के अलावा नारी उत्थान, दिव्यांगजनों के कल्याण, देश प्रदेश की जानकारी देने वाले समाचार एवं गीत संगीत के कार्यक्रम प्रसारित होते रहे हैं, जिन्हें चौपाल पर बैठकर मैं और मेरे गांव की महिलाएं, युवा, बच्चे व बुजुर्ग ध्यान से सुनकर अपना मनोरंजन व ज्ञान में वृद्धि करते रहे हैं। मैं आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को बचपन से अब तक अनवरत सुनता आया हूँ। कार्यक्रम सुनते सुनते मेरे मन के एक कोने में एक सपना पलता रहा कि मैं भी कभी न कभी आकाशवाणी पर अपना प्रोग्राम पेश करूं, और वो सपना अब तक कई बार आकाशवाणी से प्रसारित काव्य गोष्ठी में काव्य पाठ करने एवं सामाजिक सरोकारों पर अपने विचार प्रस्तुत करने के साथ साकार हुआ है। मैं जब से अब तक अनवरत रूप से आकाशवाणी का अभिन्न हिस्सा बना हुआ हूँ और समय समय पर अपना प्रोग्राम देता आया हूँ, इसके लिए मैं आकाशवाणी का तहे दिल से आभार प्रकट

बचपन को तो आपने जिया ही होगा। थोड़ा सा बचपन ये सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपा वो गुप्त कमरा है जिसे हम बड़े होते होते खुद ही बंद कर देते हैं और फिर जिंदगी भर उसकी चाबी ढूंढते रहते हैं। जब हम बच्चे थे तो हमें खुश होने के लिए वजह नहीं चाहिए होती थी, लेकिन बड़े होते होते हम वजह के बिना खुश होना ही भूल जाते हैं। जब हम खेलते हैं, हंसते हैं या बेवजह खुश होते हैं तो हमारा दिमाग वही केमिकल डोपामिन और एंडोर्फिन रिलीज करता है जो बचपन में करता था। मतलब बचपन कहीं गया नहीं है, वो आज भी हमारे अंदर एक्टिव मोड में है, बस हम उसे ऑफ करके बैठे हैं। कब आपने आखिरी बार बारिश में भीगते हुए सिर्फ बारिश को महसूस किया था, या फिर पतंग उड़ाते हुए आसमान को देखा था, या कभी बिना वजह हंसे थे इतना कि आंसू आ जाएं? थोड़ा सा बचपन जिंदा रखने के लिए बड़े बदलाव नहीं चाहिए। कभी अपने नाम के आगे से जी हटाकर सुना है? कभी सड़क किनारे गोलगप्पे खाते हुए ये सोचा है कि लोग देखकर क्या कहेंगे? मत सोचिए ना। कभी बिना वजह पुराने गाने पर झूम उठे हैं आप? बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ छोटे छोटे खेल खेलिए, खुद को उनकी उम्र का बना लीजिए और उनके साथ सहभागी बनकर हंसिए, खेलिए। कभी कभी बच्चों के कॉमिक्स पढ़ लीजिए, किताबों में छुपी मासूम कहानियों को महसूस कीजिए। कभी बच्चों के सीरियल या कार्टून देखकर मुस्कुराइए। उम्र कभी ये तय नहीं करती कि आपको जीना कैसे चाहिए, आपका मन तय करता है कि आप उम्र को कैसे जीना चाहते हैं। तो थोड़ा सा बचपन जिंदा रखिए हर उम्र में, क्योंकि उम्र तो बस गिनती बढ़ाती है, जिंदगी नहीं। लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे हैं फिल्म जंगली में।

श्रोताओं, आज हम बात करेंगे ब्रेन विद ब्यूटी यानी खूबसूरती से जुड़े प्रोफेशंस के बारे में। आज के दौर में हम केवल डॉक्टर, इंजीनियर या शिक्षक बनने तक ही सीमित नहीं रह गए हैं। कई क्षेत्र उभर कर ऐसे सामने आए हैं जहां खूबसूरती, आकर्षक व्यक्तित्व, स्मार्टनेस, संवाद कौशल और बुद्धिमत्ता सभी की बराबर भूमिका है। विशेष रूप से फिल्म्स, मॉडलिंग, टेलीविजन, फैशन और डिजिटल मीडिया जैसे क्षेत्रों ने युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोले हैं। इन प्रोफेशंस में सफल होने के लिए केवल सुंदर चेहरा काफी नहीं होता। आत्मविश्वास, कैमरा प्रेजेंस, बेहतर संवाद अदायगी और रचनात्मक सोच भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में अभिनेता, एंकर, न्यूज़ प्रेजेंटर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, स्क्रिप्ट राइटर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट और इमेज कंसल्टेंट जैसे कई विकल्प उपलब्ध हैं। वहीं मॉडलिंग के क्षेत्र में फैशन मॉडल, कमर्शियल मॉडल, रनवे मॉडल और ब्रांड प्रमोशन एक्सपर्ट जैसे करियर भी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। फैशन और ब्यूटी इंडस्ट्री में परिधान डिजाइनर, सौंदर्य विशेषज्ञ, त्वचा देखभाल सलाहकार और केश सज्जाकार या स्वास्थ्य प्रशिक्षक जो होते हैं और पोषण विशेषज्ञ जैसे पेशे भी बहुत आजकल फेमस हो रहे हैं। आज कंटेंट क्रिएटर, ब्यूटी ब्लॉगर, फैशन इन्फ्लुएंसर बनकर भी लोग अपनी पहचान तो बना ही रहे हैं ना। यहाँ व्यक्तित्व के साथ साथ समझदारी, ट्रेंड्स की जानकारी और दर्शकों से जुड़ने की कला बेहद ज़रूरी है। हालांकि इन क्षेत्रों में आजकल प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है, इसीलिए केवल आकर्षक दिखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि लगातार सीखना, अनुशासन बनाए रखना और अपने कौशल को निखारना बहुत ज़रूरी है। यदि सही दिशा, प्रशिक्षण और आत्मविश्वास हो तो फिल्म, मॉडलिंग, टीवी और फैशन जैसे क्षेत्रों में आप नए नए सफलता के आयाम खोल सकते हैं। कर्तव्य फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे हैं।

श्रोताओं, क्या कभी आपने महसूस किया है कि हमारी पहचान कपड़ों या हमारे काम से पहले हमारे व्यवहार से बनती है? एक कॉरपोरेट मीटिंग हो या किसी दोस्त की पार्टी, मेट्रो का सफर हो या किसी रेस्टोरेंट में बिताया गया समय, हर जगह हमारा पब्लिक बिहेवियर ही हमारी असली छवि पेश करता है। यही छोटी छोटी आदतें मिलकर हमारे समाज की एक बड़ी तस्वीर तैयार करती हैं। जब हम मेट्रो या बस में सफर करते हैं, तो क्या हम अपनी लाइन में अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं? क्या हम उतरने वालों को पहला रास्ता देते हैं? क्या हम बुजुर्गों, महिलाओं और जरूरतमंदों के लिए सीट छोड़ते हैं, या क्या हम मोबाइल पर ऊंची आवाज में बात करने से बचते हैं? इसी तरह सड़क पर चलते या गाड़ी चलाते समय क्या हम ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं? क्या हम अनावश्यक हॉर्न बजाने से बचते हैं या कभी

सच तो ये है कि एक अच्छा समाज नियमों से नहीं बल्कि लोगों की सोच और व्यवहार से बनता है। एक मुस्कान के साथ धन्यवाद कहना, किसी को रास्ता देना, सफाई का ध्यान रखना और थोड़ी सी सहनशीलता दिखाना, ये सब छोटी बातें हैं लेकिन इनका असर बहुत गहरा है। तो क्यों ना आज से हम खुद से एक वादा करें कि हम जहां भी जाएं अपने व्यवहार से एक सकारात्मक छाप छोड़ेंगे, क्योंकि जब हम बदलते हैं तो हमारे आसपास का माहौल भी बदलने लगता है और यही बदलाव मिलकर एक बेहतर समाज की नींव रखता है। दोस्ताना फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे हैं।

चलते चलते क्यों ना आज आई कुछ मेलों पर भी ध्यान दे लें। हमें एक मेल लिखी है नवीन भाटिया जी ने, कह रहे हैं श्रुति जी नमस्कार, आज काफ़ी दिनों बाद दिखाई दी हैं आप, काफ़ी दिनों बाद सुनाई दे रही हैं, सब ठीक? तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छी हूँ, बस हाँ कुछ दिनों बाद आपसे मिल रही हूँ। गौरी शंकर वर्मा जी लिख रहे हैं, श्रुति बेटा राम राम, प्रोग्राम अच्छा है, जानकारियाँ बहुत अच्छी हैं, गाने भी बहुत अच्छे हैं, तो धन्यवाद गौरी शंकर जी। सुदर्शन मुखी जी लिख रहे हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, हम सुन रहे हैं, गीत बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कार्यक्रम, तो हम आपका दिल से आभार अभिव्यक्त करते हैं। हमें ऐसे ही मेल लिखते रहिए और अब हम अपनी इस महफिल को यहीं समेटते हैं, लेकिन इसके एहसास आपके साथ चलते रहेंगे, तो मुझे यानी श्रुतिपुरी को दीजिए नमस्कार और फिर मिलेंगे आपसे अपने इसी कार्यक्रम घर आंगन में।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वित्री कड़गम सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया, जबकि 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। प्रमुख विपक्षी दल डीएमके ने कार्यवाही के दौरान विधानसभा से वॉकआउट किया। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने विजय को सदन में अपना बहुमत साबित करने का आदेश दिया था। विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी को 108 सीटें मिली थीं। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के एन नमसिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से

0: मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रभदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस के समन्वय से ये कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीप वांछित था। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,881 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। सेंसेक्स 201 अंक बढ़कर 74,760 पर, जबकि निफ्टी 77 अंक के साथ 23,457 पर पहुंच गया। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. In Tamil Nadu, the Tamilaga Vetri Kadagam government led by C. Joseph Vijay won the floor test in the Tamil Nadu Assembly with 144 MLAs voting in favour, demonstrating a clear majority in the House. 22 MLAs voted against the confidence motion. The DMK major opposition party walked out of the assembly during the proceedings. Mr. Vijay was mandated by the Governor of Tamil Nadu, Rajendra Vishwanath Adlekar, to prove his majority in the floor of the House after his party was able to secure only 108 seats in the recently concluded assembly election. The Minister of Youth Affairs and Sports, in collaboration with the Minister of Home Affairs, has launched the national-level quiz for the Viksit Vibrant Villages Programme 2026 on the My Bharat platform. The Ministry said that the quiz marks the first stage of selection for youth participation in the Immersive Border Village Engagement Programme scheduled to be held next month. All India NR Congress leader N. Rangaswamy was sworn in as the Chief Minister of Puducherry today for the record fifth term. At a ceremony held at the Lok Nivas, Puducherry, Lieutenant Governor K. Kailashanathan administered the oath of office and secrecy. Maladi Krishna Rao of the All India NR Congress and A. Namasivayam of the BJP were also sworn in as ministers at the ceremony. Among those present were BJP National President Nitin Nobin, BJP National General Secretary Organization B.L. Santosh, State BJP President V.P. Ramalingam, officials and party leaders. Prime Minister Narendra Modi has significantly reduced the size of his convoy during recent domestic visits while retaining all essential security arrangements mandated under the Special Protection Group SPG protocol.

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 1:10 हुए हैं और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म का। एक ही फिल्म कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: दी, ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: RBI कहता है,
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है और आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम एक ही फिल्म में स्वागत। खैर मकदम करती हूँ मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम है एक ही फिल्म और आज इस कार्यक्रम में हम वक्त की जो सुइयां हैं उनको थोड़ा सा पीछे घुमाने वाले हैं और उस दौर में लेके जाएंगे जब सादगी में सारा जादू छिपा होता था। तो दोस्तों, बांध लीजिए अपनी सीट की पेटियां और रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्योंकि आज पुरानी यादों के पिटारे से फिल्म निकली है, वो फिल्म जिसने ब्लैक एंड वाइट पर्दे पर भी रंग जमा दिए थे। जी हाँ, आज हम बात करें सन 1955 की उस क्लासिक फिल्म की जिसने देवानंद के स्टाइलिश अंदाज और नूतन

0: दी ये देख कैसे
1: हैप्पी बर्थडे भाई
0: दिखा हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग
2: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है
4: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा
2: आई नो ना
4: आरबीआई कहता है
5: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
6: जी दोस्तों आज की जो महफिल सजी है वो सजी है मुनीम जी के नाम एक ऐसी फिल्म जिसने हमें सिखाया कि प्यार की राहों में अमर और रजनी का जो सफ़र है वो कितना खूबसूरत हो सकता है अमर और रजनी यानी कि इस फिल्म की वो खूबसूरत जोड़ी अमर और रजनी यानी कि देवानंद और नूतन की जो केमिस्ट्री है वो पहली बार इस तरह से बड़े स्तर पर सराही गई जी हाँ दोस्तों मुनीम जी का अगर हम मुनीम जी फिल्म के बारे में अगर हम बात करें तो आपको याद आएगा वो टेढ़ा सा हैट आँखों में खास चमक और गर्दन झुकाकर बात करने का वो निराला सा अंदाज जी हाँ हम बात करें बॉलीवुड के एवरग्रीन स्टार देवानंद साहब की लेकिन हम उनके सिर्फ एक्टिंग की नहीं बल्कि उनकी फिल्म की भी बात करेंगे वो फिल्म जो कि आज हम लेकर आए हैं मुनीम जी जिसमें सस्पेंस भी था रोमांस भी था और साथ ही साथ उसमें एस डी बर्मन साहब का संगीत जो आज भी हमारे कानों में घोलता है शहद

जी दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फिल्म मुनीम जी के बारे में। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम में, एक ही फिल्म में। दोस्तों, ये जो फिल्म है, इस फिल्म के पीछे बहुत सी कहानियाँ, बहुत से किस्से जुड़े हुए हैं। लेकिन हम जानते हैं, सन 1956 में जब फिल्म फेयर अवार्ड्स थे, तो इस फिल्म ने एक इतिहास रचा। जी हाँ दोस्तों, फिल्म में नूतन ने अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जीता अपना पहला फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। यही नहीं, ये उनके करियर की सबसे बड़ी उड़ान थी। जी हाँ, सबसे बड़ी उड़ान, या कह सकते हैं कि सबसे बड़ी छलांग थी, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और उन्हें इस फिल्म ने रातों रात बना दिया सुपरस्टार। और अगर हम बात करें इस फिल्म के गाने की, तो इस फिल्म के जो गीत हैं वो भी एक से बढ़कर एक हैं। लेकिन आपको मालूम है इस फिल्म को डायरेक्ट किसने किया था? इसके पीछे किसका दिमाग था? सुबोध मुखर्जी। जी हाँ, सुबोध मुखर्जी थे इस फिल्म के डायरेक्टर, जिन्हें जाना जाता था अपनी फिल्मों में

ग्लैमर और सस्पेंस के लिए। और मुनीम जी की कामयाबी के बाद उन्होंने बहुत सी फिल्में बनाई जिनमें जंगली और शागिर्द जैसी हिट फिल्में भी शामिल हैं।

जी दोस्तों, रेडियो के सफ़र को थोड़ा और आगे चलाते हैं। वैसे दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि जो जोड़ियाँ होती हैं वो ऊपर वाला बनाता है, लेकिन जो सिनेमा की जोड़ियाँ बनती हैं वो कभी कभी बहुत ही दिलचस्प इत्तफाकों से बनती है, और वही हुआ फिल्म मुनीम जी में देवानंद और नूतन का साथ में आना। जी हाँ, उन दोनों का किसी फिल्म में साथ आना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। तो चलिए बताते हैं आपको। दरअसल नूतन जी इस फिल्म को करने से ठीक पहले पढ़ाई करने के लिए स्विट्जरलैंड चली गई थी, और उस दौर में किसी भी टॉप एक्ट्रेस का अपने करियर को छोड़कर पढ़ने के लिए जाना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। और जब वो पढ़ाई पूरी करके वापस आई तो वो पहले से और भी ज़्यादा दुबली हो गई थी। जी हाँ, क्योंकि नूतन पहले से ही काफ़ी दुबली पतली, एकदम पतली सी थी, लेकिन जब वो वहाँ से आई तो और भी ज़्यादा पतली थी। तो फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे शशधर मुखर्जी और डायरेक्टर सुबोध मुखर्जी, उन दोनों ने, भाई उनको चाहिए तो अपने फिल्म में नूतन ही चाहिए थी, क्योंकि उनको एक ऐसी

ड्रेस चाहिए थी जो दिखने में मॉडर्न भी दिखे, लेकिन साथ ही साथ मॉडर्न होने के साथ साथ वो सादगी से भी भरी हुई हो। और नूतन जी का इस मामले में तो क्या ही कहना। जी हाँ, क्योंकि नूतन जहाँ अपने अंदर सादगी समेटे हुए हैं, वहीं वो पूरी तरह से मॉडर्न भी थीं। लेकिन अब आड़े आ रही थी यही चीज़ कि भाई ये तो बहुत दुबली पतली हैं, और अगर इतने दुबली पतली हमें हीरोइन नहीं चाहिए, और उनकी जो थोड़े से वो झिझक रहे थे उनको लेने के लिए। तभी सुबोध मुखर्जी ने भरोसा जताया और उन्होंने नूतन से कहा कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, आपके लिए जो कपड़े बनाएंगे वो इस तरह के बनाएं जिसमें कि आप थोड़ी बल्की लगें, थोड़ी मोटी लगें। और जब फिल्म में उन्होंने काम किया, जब उन्होंने अपनी अदाकारी के जलवे दिखाए, जौहर दिखाया, तो किसी की भी नज़र उनकी कद काठी पर गई ही नहीं। उन्होंने अपनी एक्टिंग से हर किसी को इतना ज़्यादा इम्प्रेस किया कि कोई भी उस चीज़ को देख ही नहीं पाया कि भाई वो इतनी दुबली पतली भी। और अगर हम बात करते हैं देव साहब के बारे में भी, 1955 में जब ये फिल्म आई थी, उस टाइम तक देवानंद साहब एक बहुत बड़े स्टार थे, और जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं सुबोध मुखर्जी जी और देवानंद साहब, उनके बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। अब देवानंद का उस वक्त में काफ़ी अच्छा चार्म था, और वो एक मामूली मुनीम के रूप में आएंगे ये, और आकर के ऑडियंस को अपनी तरफ खींचे, ऐसा थोड़ा सा उनको गलत लग रहा था। तभी देवानंद को ये आइडिया जो था उनका कि भाई आपको मुनीम बनना होगा, वो बड़ा पसंद आया, और उन्हें फिल्म में अपनी पहचान छिपा कर एक जासूस की तरह काम करना है, आप इस चीज़ को इस तरह से लें, ना कि ये सोचें कि मैं एक मुनीम बनूंगा। उन्होंने ना केवल इस रोल को अपनाया, बल्कि नूतन के साथ इतनी गजब की केमिस्ट्री दिखाई कि लोग इस जोड़ी के दीवाने हो गए। और वाकई में इस कामयाबी के बाद देवानंद साहब और सुबोध मुखर्जी की जोड़ी ने आगे चलकर पेइंग गेस्ट जैसी सुपरहिट फिल्म भी दी थी। जी हाँ दोस्तों, शायद यही वजह, अगर उस दिन सुबोध मुखर्जी ने इन दोनों सितारों को साथ में लाने का फैसला अगर नहीं किया होता, तो आज हम लोगों को इतनी खूबसूरत और इतनी गजब की ये फिल्म शायद नहीं मिलती।

आप भी गाइए ना। दिल की उमंग है जवान, गाइए ना, क्या मुश्किल है, सरगम बताऊं।

कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म मुनीम जी के बारे में। दोस्तों, इतनी देर से हम बता रहे हैं कि फिल्म बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी है, तो हम इस फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। ये फिल्म की कहानी शुरू होती है एक अमीर परिवार से, जहाँ एक माँ यानी कि निरुपम रॉय के दो बेटे हैं, रतन और अमर। बचपन में बिछड़ जाते हैं, सालों बीत जाते हैं और रतन जो कि बड़े होकर बनता है प्राण, बिगड़ैल और लालची, जबकि दूसरा बेटा बनता है अमर देवानंद, एक होनहार नौजवान। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अमर एक मुनीम बन कर के, मुनीम का रूप धर के उसी घर में वापस आता है जहाँ पर रतन अपनी चालें चल रहा होता है। और इसी बीच एंट्री होती है खूबसूरत और चुलबुली रजनी की, रजनी यानी कि नूतन की। रजनी और मुनीम जी यानी कि अमर के बीच में नोकझोंक शुरू होती है और धीरे धीरे ये नोकझोंक प्यार में बदल जाती है। लेकिन अब अमर को अपना हक भी पाना है, रजनी का दिल भी जीतना है, वो भी अपनी पहचान को छिपाते हुए। और मुनीम जी का असली जो मिशन होता है वो सिर्फ प्यार नहीं था बल्कि बेनकाब करना था उस शातिर विलन को जो जायदाद हड़पने के चक्कर में था। फिल्म का अंत सस्पेंस इमोशन से भरा हुआ है, जब माँ अपने दोनों बेटों को पहचानती है और अमर अपनी चतुराई से बुराई पर जीत हासिल करता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस फिल्म मुनीम जी की, जिसने हिसाब सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि दिल का भी किया जाता है। इसी बात पर सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत इसी फिल्म से।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और हमारे साथ जुड़े हमारे कुछ श्रोता जिनके संदेश हम शामिल कर लेते हैं। और ये जो संदेश हम तक आया है इसको पहुंचाने वाले हैं स्वर्ण सिंह जी, और इन्होंने ये संदेश हम तक पहुंचाया गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से। इनके साथ हैं दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, नीतेश कुमार देवगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये जुड़े हैं पलारी छत्तीसगढ़ से। अगला संदेश हम तक पहुंचाया है और इसको पहुंचाने वाले हैं पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, समडल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे दीपक गुप्ता और श्रीमती अंकु राघव गुप्ता के साथ। अगला संदेश हम तक आया है सुशीला देवी मंदुरकर, डाबकी रोड अकोला से हमारे साथ जुड़ी हैं सदानंद मंदुरकर कुमार गौरव जी के साथ में। सुनील पाठक जी हमारे साथ जुड़े हैं अनारकली बाजार जगराओ पंजाब से। कमल पाठक

नवदीन सुहान और जाना बानम बाजी जी के साथ भेजा है इन्होंने अपरकोट मोहल्ला चौकुटी बुलंदशहर से। अगला संदेश हम तक पहुंचाया है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश पूनम गगनेजा ने। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संबलपुर कांकेर से फागर राम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव हमारे साथ जुड़े हैं। देवनारायण साहू, योगिता, गीतिका, चंचल रानी साहू, उमाबाई, गंगाराम साहू जुड़े हैं हमारे साथ जिला बालो छत्तीसगढ़ से, ग्राम भाईनापार लाटा बोर्ड से। नोहर राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज, हिमांशु सुधार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलामती, विनीता वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। रुद्र वर्मा के साथ रतरंगी भट्टापारा से। संदीप मकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्योति मन्नत भारत के साथ कमल सहानी पिंगावाला चौक गुरैया जालंधर से। गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, पूजा परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नलेश्वर नगर नरवेल से पीएस नवानकर, निर्मला विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष महरेकर हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा जो अगला संदेश है उसको भेजा है हमारे हम तक वीरगांव गुजरात से अजित भावसार, प्रमीला भावसार, भावेश सन्नी भावसार ने। छत्तीसगढ़ पलारी से हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हुए हैं प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा जी के साथ, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिलू नायक जी जुड़े हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से कैथल, हरियाणा से मधु नायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत ही खूबसूरत सी इन्होंने जानकारी हम तक शेयर की है। और भी हम तक बहुत से संदेश आए हैं जिसमें से ये संदेश देवशंकर तामुलिया जी का हमारे साथ में, सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांतिनगर सोनीपत से भूषण खेरा जी हम तक जुड़े हुए हैं। उषा मोहन, संजय ढींगिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमन ढींगिया, पा ढींगिया के साथ बागपत उत्तर प्रदेश से। विजेंद्र विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार डूडी जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय साहू जी पोटियाकला दुर्ग से हम तक जुड़े हुए हैं। बबलिश पवार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इंद्रभान सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। लालगिरी जी हम तक जुड़े हैं। इशाक मोहम्मद, अजीत भावसर जी, जगराम साहू, मुकेश भट्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं कनेरा मोहल्ला पटियाला जी पटियाला से। तो दोस्तों कार्यक्रम एक ही फिल्म में आज की फिल्म मुनीम जी मुझे यानी प्रीति को दीजिए।

एनआर कांग्रेस दे मल्लाडी कृष्णा राव अते भाजपा दे ए नमाज सिव्यम ने भी मंत्री वजों सहुं चुकी। मौजूद लोगों विच भाजपा दे राष्ट्रीय प्रधान नितिन नवीन, भाजपा दे राष्ट्रीय जनरल सकत्तर संगठन बी एल संतोष, राज भाजपा प्रधान वी पी रामलिंगम, अधिकारी ते पार्टी आगू शामिल सन। सरकार ने सोने ते होर कीमती धातां ते दरामदी महसूल बढ़ा दिता है जो अज तो लागू हुए। एक बयान विच खजाना मंत्रालय ने कहा कि सोने ते चांदी दी भाल ते 5% जदों कि प्लैटिनम दी भाल ते 5.4% महसूल लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही दे घरेलू दौरान अपने काफले दे आकार नूं काफी घटा दिता है जदों कि विशेष सुरक्षा समूह पीजी प्रोटोकॉल अधीन लाजमी सारे जरूरी सुरक्षा प्रबंधा नूं बरकरार रखा है। हल्कियां मुताबिक प्रधानमंत्री दे काफिले विच वाहनां दी गिनती विच कमी उन्हां दे गुजरात ते आसाम दे हालिया दौरान लागू कीती गई सी। एह कदम प्रधानमंत्री वल्लों नागरिकां नूं पछमी एशिया संकट दरमियान दरामद कीते ईंधन ते निर्भरता घटा के अते चुगिरदे पक्खों निरंतर रहणयोग विकल्प अपनाउंदिआं आर्थिक लचकीलेपण विच योगदान पाउण दीआं 7 अपीलां दे संबंध विच चुकिआ गिआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटा के इस नूं अद्धे तो भी घट कर दिता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश अते दिल्ली दे मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों विधायकों ते जनप्रतिनिधियों वल्लों सरकारी वाहनों की वरतों घटाउण दे उपावां दा ऐलान कीता है। उत्तर प्रदेश दे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री मंत्रियों ते होर अधिकारियों दे वाहनों दे बेड़े विच 50% कटौती करन दे आदेश दित्ते ने अते इह निर्देश भी दित्ते ने कि सरकारी काफलियां तों बेलोड़े वाहन हटाए जाण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 विच इसे दिन भारत वल्लों कीतियां गईयां परमाणु परखां नूं याद कीता है। सोशल मीडिया ते संस्कृत सोलोक सुभाष चितम सांझा करदे होए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्हां परमाणु परखां ने देश दे अटुट इरादे नूं दर्शाया। श्री मोदी ने कहा कि परखां तों बाद पूरी दुनिया ने भारत ते दबाव पाया पर भारत ने साबित कर दिता कि कोई भी शक्ति इस नूं काबू नहीं कर सकदी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन विखे साबका राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद नूं उन्हां दे जन्मदिन ते फुल्लां नाल श्रद्धांजलि भेंट कीती। फखरुद्दीन अली अहमद ने देश दे 5वें राष्ट्रपति वजों सेवा निभाई ते 24 अगस्त 1974 तों 11 फरवरी 1977 नूं अपने देहांत तक इस अहुदे ते रहे। अजिहे पहले राष्ट्रपति सन जिन्हां दा अहुदे ते रहिंदिआं देहांत होया सी। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने लुड़िंदे भगौड़े प्रभदीप सिंह दी अजरबाईजान तो सफलता नाल भारत हवालगी नूं यकीनी बनाया है। सीबीआई ने यह कार्रवाई विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय ते दिल्ली पुलिस नाल तालमेल करके कीती। सीबीआई ने कहा कि प्रभदीप नवी दिल्ली दे स्पेशल सेल पुलिस थाने विच नशीलियां दवाईयां ते मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस कानून दीआं वख-वख धारावां तहत दर्ज इक मामले विच लुड़िंदा सी। इस मामले विच वड्डी मात्रा विच नशीले पदार्थ बरामद कीते गए सन अते कई सह दोषियां नूं गिरफ्तार ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। सीबीआई ने कहा कि प्रभदीप इस ड्रग रैकेट का मुख प्रबंधक सी। पिछले कुछ सालों में 160 तो वध लुड़िंदे अपराधियों नूं सफलता नाल भारत हवालगी की गई है। ए खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा xhandle@AIRRN जलंधर, साडा फेसबुक पेज ए RNU-AIR जलंधर अते यूट्यूब ते साडा चैनल ए @AIR जलंधर। पंजाब सरकार ने रक्षा बलों विच अपना कार्यकाल पूरा होने तो बाद सरकारी नौकरियां विच अग्निवीरां लई राखवाकरण नीति बनाउण दा फैसला कीता है। इस लई रूपरेखा ते ढांचे नूं समाबद्ध ढंग नाल अंतिम रूप देण लई सीनियर सिविल ते पुलिस अधिकारियों दी कुछ शक्तिशाली कमेटी दा गठन कीता गया है। मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने राखवाकरण वधाउण नूं सिद्धांतक तौर ते प्रवानगी दे दित्ती है तां जो इह सिखलाई प्राप्त ते अनुशासित नौजवान पंजाब दे समाजिक ते आर्थिक विकास दा इक अनिखणवा अंग बन सकन। ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਰਡ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਮਗਾਰਡ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अज सवेरे चिली दे विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना नाल मुलाकात की थी। श्री जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट विच दस्सिया कि दोवां नेतावां ने बाजारां ते स्रोतियां विच भिन्नता लियाउण, तरजीही वस्तां दी दरामद नूं वधाउण अते सेवावां दी आर्थिकता नूं सुचारू बनाउण लई दुवल्ले सहयोग नूं मजबूत करन ते चर्चा कीती। श्री फ्रांसिस्को कल तों शुरू होण वाली ब्रिक्स विदेश मंत्रियां दी दो रोजा मीटिंग विच शामिल होण लई भारत आए ने। इंडोनेशियाई विदेश मंत्री सुगियोनो आज सवेरे नवी दिल्ली दे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ते पहुंचे। कल तो शुरू हो रही दो दिना ब्रिक्स विदेश मंत्रियां दी मीटिंग विच हिस्सा लैण लई भारत दा दौरा कर रहे ने। इस मीटिंग दी प्रधानगी विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर करनगे। ब्रिक्स दे विदेश मंत्री ते मैंबर ते भाईवाल देशां दे वफद दे मुखी मीटिंग विच हिस्सा

करनगे। ओ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नाल भी मुलाकात करनगे। मीटिंग दौरान ब्रिक्स मैंबर देशां दे विदेश मंत्री आपसी हित दे आलमी ते खेतरी मुद्दयां ते विचार वटांदरा करनगे। विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा करने दे इच्छुक लोगों इस महीने की 19 तरीक तो पहला अर्जी देने की अपील की है। इस यात्रा लई रजिस्ट्रेशन छेती ही बंद हो रही है। इच्छुक बिनेकार अधिकारित वैबसाइट kmy.gov.in राही होर जानकारी प्राप्त कर सकते ने अते रजिस्टर भी कर सकते ने। मुलायम सिंह यादव के छोटे पुत्र ते समाजवादी पार्टी के मुखी अखिलेश यादव के मतरे भरा प्रतीक यादव का 38 साल की उम्र विच देहांत हो गया है। उन्होंने लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया जिथे उन्होंने मृतक ऐलान दिता गया। उन्होंने पत्नी अपर्णा बिश यादव बीजेपी के मैंबर ने ते मौजूदा समय विच राज महिला कमीशन के उप चेयरपर्सन ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव के देहांत ते डूंगा दुख प्रगट किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतीक यादव का अचानक देहांत बेहद दुखदाय। मुख्यमंत्री ने उन्होंने परिवार प्रति डूंगी संवेदना प्रकट की थी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित तौर पर लीक होने के मामले की जांच लई केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की टीम जयपुर पहुंच गई है। टीम ने राजस्थान पुलिस के विशेष ऑपरेशन ग्रुप एसओजी वालों हिरासत में लए गए कई लोगों तो पुछगिछ की थी। जांच के हिस्से वजो एसओजी ने सीकर आले दुआले के इलाकों में भी लोगों तो पुछगिछ की थी। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बंगलौरी का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स नाल होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। बीती रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम च गुजरात टाइटन्स ने सनराइजर्स हैदराबाद नू 82 रनों नाल हरा के अंक सूची में सिखरला स्थान हासिल कर लिया है। आखिर विच इस बुलेटिन दियां खास खास खबरां एक बार फिर। तमिलनाडु विच सी जोसफ विजय की अगुवाई वाली तमिलनाडु वेत्री कड़गम सरकार ने तमिलनाडु विधानसभा विच भरोसे का वोट हासिल कर लिया है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी ने अज रिकॉर्ड 5वीं बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वजो सहु चुकी। सरकार ने सोने ते होर कीमती धातां ते दरामदी महसूल वधा दिता है। पंजाब सरकार वल्लों रक्षा बलों विच कार्यकाल पूरा होण तों बाद सरकारी नौकरियों विच अग्निवीरां लई राखवांकरण नीति बनाई जाएगी। विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा करन दे इच्छुक लोगों नूं इस महीने की 19 तरीक तों पहला अर्जियां देण लई कहा है। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 6:20 बजे होगा। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की क्यादत वाली टीवी के हुकूमत ने रियासती असेंबली में आसानी से अक्सरियत साबित करते हुए एतमाद का वोट जीत लिया है। वहीं एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवीं मुद्दत के लिए पुडुचेरी के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। मगरबी एशिया के तनाजे की वजह से पैदा हुए तवानाई के आलमी बहरान के दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील पर मरकज और रियासतों ने ईंधन की बचत के इकदाम तेज कर दिए हैं। CBSE ने आज 12वीं जमात के नतीजों का ऐलान कर दिया है। हुकूमत की जानिब से इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर करीब 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% का इजाफा हो गया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि इस साल जुनूब मगरबी मानसून की जल्द आमद का इम्कान है। और IPL क्रिकेट में आज शाम रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब खबरें तफसील से। तमिलनाडु में वजीराला जोसेफ विजय की क्यादत वाली नई हुकूमत ने आज रियासती असेंबली में 144 अराकीन असेंबली की अक्सरियत साबित कर दी है और एतमाद का वोट जीत लिया है। वहीं एडापड्डी पेलानी सामी की क्यादत वाले 22 AIADMK अराकीन असेंबली ने इसके खिलाफ वोट दिया। BJP और PMK से ताल्लुक रखने वाले 5 अराकीन असेंबली ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। असेंबली में अक्सरियत साबित करने की करारदाद वजीर आला ने पेश की थी। SP वेलुमनी की क्यादत वाले AIADMK ने हुकूमत की हिमायत की है। मगरबी

0: बंगाल की 18वीं कानून साज असेंबली के नौ मुंतखब एमएलएज को कोलकाता में हलफ दिलाया जा रहा है। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से एमएलए के तौर पर हलफ लिया, जबकि नंदीग्राम सीट को खाली रखा गया है। इसके बाद पांच दीगर काबीना वजीरों ने भी हलफ लिया। आम जनता उन्नयन पार्टी के एमएलए हुमायूं कबीर ने नोएडा सीट के लिए हलफ लिया। जनाब कबीर रेजीनगर सीट से भी जीते हैं। उबूरी स्पीकर तपस रॉय ने उन्हें हलफ दिलाया। आजमूदाकार सियासी रहनुमा और ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के बानी एन रंगासामी को आज पांचवी म्याद के लिए पुडुचेरी के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया, जो कि एक रिकॉर्ड है। उनके साथ बीजेपी के ए नमासीवम और ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मलाडी कृष्णा राव को भी एनडीए सरकार में वजीर के तौर पर हलफ दिलाया गया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में मुनक़िदा एक तकरीब में पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाश नाथन ने वजीर आला और दो वजीरों को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन, बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष, पुडुचेरी के इंचार्ज निर्मल कुमार सुराना, बीजेपी के रियासती सदर वीपी रामा लिंगम, डीएमके के कन्वीनर आर सिवा, कानून साज असम्बली साबिक स्पीकर आर सिल्वम और नौ मुंतखब अरकान असम्बली और पार्टी के दीगर अहदेदारान मौजूद थे। हलफ बरदारी की तकरीब के बाद जनाब रंगा स्वामी वजीर आला के दफ्तर गए और जिम्मेदारी संभाली। नामा निगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंगापुर के तर्ज पर पुडुचेरी को तरक्की देने के लिए काम करेगी। पुडुचेरी से बिबिन एस नाथन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
0: वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने अंदरून मुल्क हालिया दौरों के दौरान अपने काफिले में मोटर गाड़ियों की तादाद में खातिरखा कमी की है। अलबत्ता स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG के प्रोटोकॉल के तहत सभी सिक्योरिटी इंतजाम बरकरार रखे गए हैं। ज़राए के मुताबिक वजीर अजम के काफिले में मोटर गाड़ियों की तादाद में कमी गुजरात और आसाम के उनके हालिया दौरे के दौरान की गई। यह कदम मगरबी एशिया के बहरान के पेश नज़र ईंधन की दरामदात पर इन्हिसार कम करते हुए इकतसादी इस्तेहकाम में ताउन के लिए शहरियों से उनकी अपील के बाद उठाया गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने वजीर अजम नरेंद्र मोदी की अपील पर अपने काफिले की तादाद घटाते हुए उसे आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के वज़राए आला ने भी वजीरों, अराकीन असम्बली और अवामी नुमाइंदों की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली सरकारी गाड़ियों की तादाद कम करने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वजीर आला, वजीरों और दीगर अफसरान की सरकारी गाड़ियों के बेड़े में 50% कटौती करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि सरकारी काफिलों से गैर जरूरी गाड़ियों को निकाल लिया जाए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए हैं। वो कल बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ सरबरा सतह की मीटिंग करेंगे। तवक्को है कि वो चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ दोतरफा रवाबित के अहम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। इम्कान है कि तिजारत को इस बातचीत में अहमियत हासिल रहेगी। ये शी जिनपिंग के साथ डोनाल्ड ट्रंप की 7वीं बिल मुशाफा मीटिंग होगी और ये साल 2017 के बाद से किसी अमरीकी सदर का चीन का पहला दौरा होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने आज 12वीं जमात के नतीजों का ऐलान कर दिया है। तलबा अपने नतीजे ऑफिशियल वेबसाइट, डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना रोल नंबर लिखकर देख सकते हैं। इस साल CBSE की 12वीं क्लास के इम्तिहान 17 फरवरी और 10 अप्रैल 2026 के दरमियान कराए गए थे। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने आज सुबह चिली के खारजी उमूर के वजीर फ्रांसिस्को पेरेज मैकेन्ना से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि फरीकैन ने तरजीही अशिया की बरामदात को फरोग देने और खिदमात पर मबनी मीशत को आसान बनाने की खातिर बाजारों और सोर्सिंग को वसत देने के मकसद से दोतरफा ताउन को मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया। दोनों फरीक कसीर जहती फोरमों पर एक दूसरे के साथ तालमेल से काम करने पर रजामंद हो गए हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% की तेजी देखी गई। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के मुस्तकबिल के मार्केट में जून कॉन्ट्रैक्ट के लिए सोने की कीमत 6% के इजाफे के साथ 1,62,597 रुपये फी तोला रही। वहीं जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में चांदी की कीमत 6.4% के इजाफे के बाद 2,96,821 रुपये फी किलोग्राम रही। तहम आज के कारोबार में सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक का इजाफा हुआ। हुकूमत ने सोने और चांदी पर सेस समेत इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% तक का इजाफा कर दिया है। प्लेटिनम पर भी इंपोर्ट ड्यूटी 6.4% से बढ़ाकर 15.4% कर दी गई है। सरकार ने आज से सोने

0: और दीगर कीमती धातुओं पर दरामदी महसूल में इजाफा कर दिया है। वजारत खजाना ने एक बयान में कहा है कि सोने और चांदी के जेवराती अज्जा पर 5% महसूल जबकि प्लेटिनम के अज्जा पर 5.4% महसूल आयद होंगे। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरियों से अपील की थी कि वह मगरबी एशिया में जारी बहरान के मद्देनज़र सोना न खरीदें। भारत में इस साल जुनूब मगरबी मानसून की जल्द आमद का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसमी हालात साजगार हैं। महकमे मौसमियात ने आज राजस्थान के लिए लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात, महाराष्ट्र और मगरबी मध्य प्रदेश में भी गर्म हवाएं चलने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने मुल्क के शुमाल मशरक़ी हिस्सों और अंडमान और निकोबार जजायर के लिए कल तक शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई भी की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में अगले 24 घंटे के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत में थोड़ी कमी आने की उम्मीद है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साबिक सदर जमहूरिया फखरुद्दीन अली अहमद को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया और गुलाय अकीदत नज़र किए। फखरुद्दीन अली अहमद ने मुल्क के 5वें सदर जमहूरिया के तौर पर 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक अपने इंतकाल तक फ़राइज़ अंजाम दिए। वो पहले ऐसे सदर जमहूरिया हैं जिनका ओहदे पर फायज रहते हुए इंतकाल हुआ। सीबीआई की टीम नीट इम्तिहान का पर्चा मुबैना तौर पर लीक होने के मामले की तहकीकात के लिए जयपुर पहुंच गई है। उसने तकरीबन 2 दर्जन अफराद से पूछताछ की है जिन्हें राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप एसओजी ने हिरासत में लिया है। इस दौरान एसओजी ने सीकर और उसके अतराफ के इलाकों में सैकड़ों अफराद से भी पूछताछ की है। पंजाब सरकार ने अग्निवीरों के लिए एक रिजर्वेशन पॉलिसी वजह करने का फैसला किया है ताकि दिफाई अफवाज में उनकी म्याद मुकम्मल करने के बाद उन्हें सरकारी नौकरी दी जा सके। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की क्यादत वाली टीवी के हुकूमत ने रियासती असेंबली में आसानी से अक्सरियत साबित करते हुए एतमाद का वोट जीत लिया है। वहीं एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं मुद्दत के लिए पुडुचेरी के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। मगरबी एशिया के तनाज़े की वजह से पैदा हुए तवानाई के आलमी बहरान के दरमियान वजीर अजम नरेंद्र मोदी की अपील पर मरकज और रियासतों ने ईंधन की बचत के इकदाम तेज कर दिए हैं। सीबीएसई ने आज 12वीं जमात के नतीजों का ऐलान कर दिया है। हुकूमत की जानिब से इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर करीब 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% का इजाफा हो गया है। और भारतीय महकमा मौसमियात ने कहा है कि इस साल जुनूब मगरबी मानसून की जल्द आमद का इम्कान है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द मिड डे न्यूज। द हेडलाइंस। In Tamil Nadu, C. Joseph Vijay-led TVK government wins floor test in state assembly with comfortable majority. N. Rangaswamy sworn in as chief minister of Puducherry for a record 5th term. Sentence states intensify fuel-saving measures following Prime Minister Narendra Modi's appeal amid global energy crisis triggered by West Asia conflict. CBSE declares all India senior secondary class 12th results. Gold silver prices jump over 6% after government hiked import duty to around 15%. IMD says monsoon likely to arrive early this year. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru to take on Kolkata Knight Riders in Raipur this evening. The newly sworn-in government led by Chief Minister Joseph Vijay has proven majority of 144 MLAs and has won the vote of confidence today. 22 AIA-DMK MLAs led by Edappadi Palaniswamy have opposed it. 5 MLAs, including the BJP MLA and PMK, remained neutral. DMK and other alliance partners did not participate in the motion and walked out of the assembly. The motion to prove majority was brought by Chief Minister in the assembly. The AIA-DMK led by SP Velumani supported the government. We have a report.
2: It was a day of expectation in Tamil Nadu politics. The TVK government had to face a floor test in which the ADMK party faced a split. The former chief minister and general secretary of the party, Edappadi Palaniswami, criticized the ruling TVK government for encouraging a split in the party. He also criticized the speaker for allowing the break.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। रंगासामी के नेतृत्व में

0: लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली, जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रेजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्री परिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट, डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। CBSE ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
4: श्री फ्रांसिस को ब्रिक्स

0: विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसे हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसे हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीत वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल पहली जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर

उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अधिक संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के पांचवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य चार मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, TRM 810 किलोहर्ट्स पर। दिन के 2:30 हो रहे हैं और ये वक्त है कार्यक्रम एक ही कलाकार का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के संगीतमय सफर में।

श्रोताओं, बात उन दिनों की है जब हिंदी सिनेमा के संगीत का गोल्डन पीरियड चल रहा था। हर तरफ लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ का जादू छाया हुआ था। ऐसे समय में किसी नई सिंगर के लिए अपनी जगह बनाना आसान नहीं था, लेकिन इसी दौर में एक ऐसी आवाज़ उभरी जिसने अपनी अलग पहचान बनाई, और वो आवाज़ थी शारदा राजन अयंगर की। 25 अक्टूबर 1933 को चेन्नई के एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। ये वो आवाज़ बनी जिसने 60 से 70 के दशक में अपनी एक अलग पहचान बनाई, एक ऐसी आवाज़ जो मासूम भी थी और चुलबुली भी। शारदा जी को बचपन से ही संगीत का शौक था, लेकिन इन्होंने कभी प्रोफेशनल सिंगर बनने का सपना नहीं देखा था। इनकी आवाज़ पारंपरिक प्लेबैक सिंगर से बिल्कुल अलग थी, थोड़ी तीखी, थोड़ा मासूम, यही इनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। इनका फिल्मों में आने का किस्सा भी बड़ा ही दिलचस्प है।

दिग्गज राज कपूर साहब ने इन्हें ईरान की राजधानी तेहरान में एक पार्टी के दौरान गाते हुए सुना था। राज कपूर की पारखी नज़र के मालिक थे। इन्होंने शारदा को मुंबई आने का न्योता दिया और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफ़र जिसने बॉलीवुड संगीत के समीकरण बदल दिए। आगे इनके सिंगिंग सफ़र की बात करेंगे, उससे पहले सुनते हैं इनके डेब्यू फिल्म का सॉन्ग जो कि ब्लॉकबस्टर हुआ था और इस फिल्म का नाम है सूरज।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। और आज की जो हमारी कलाकार हैं वो हैं शारदा जी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मशहूर प्लेबैक सिंगर शारदा जी की। दरअसल राज कपूर साहब के बुलावे पर शारदा मुंबई तो आ गई, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। राज कपूर ने इन्हें मशहूर संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन से मिलवाया। शंकर जी को शारदा की आवाज़ में एक फ्रेशनेस नज़र आई। उस दौर में जहां हर कोई मंगेशकर बहनों की शैली को कॉपी करने की कोशिश कर रहा था, शारदा अपनी ओरिजिनल आवाज़ के साथ खड़ी थी। इनका पहला बड़ा ब्रेक 1966 में आई फिल्म सूरत से आया। कुछ देर पहले मैंने आपको ये गीत भी सुनाया, तितली उड़ी उड़ के चली। रातों रात पूरे देश की जुबान पर चढ़ गया था। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई इस गाने का दीवाना हो गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि इस गाने

ब्रेक 1966 में आई फिल्म सूरत से आया। कुछ देर पहले मैंने आपको ये गीत भी सुनाया, तितली उड़ी उड़ के चली। रातों रात पूरे देश की जुबान पर चढ़ गया था। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई इस गाने का दीवाना हो गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि इस गाने ने इन्हें उस दौर की सबसे बड़ी गायिकाओं के सामने खड़ा कर दिया था। इनके इसके बाद जो तो शारदा जी को बहुत से प्रोजेक्ट्स मिले जिसका इन्होंने बखूबी इस्तेमाल भी किया और प्लेबैक सिंगिंग में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आगे इनके और भी गीतों की चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल सुनिए इनके फिल्म गुमनाम से ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज की जो हमारी कलाकार हैं वो हैं शारदा रंजन। श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनकी फिल्म की। तितली उड़ी गाना सिर्फ एक हिट सॉन्ग नहीं था, बल्कि इसने इतिहास रच दिया था। 1966 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। उस समय बेस्ट प्लेबैक सिंगर की कैटेगरी में अक्सर एक ही विजेता होता था, लेकिन उस साल शारदा के सॉन्ग और मोहम्मद रफ़ी के गाने के बीच इतनी कड़ी टक्कर थी कि फिल्म फेयर को एक स्पेशल अवार्ड की घोषणा करनी पड़ी। शारदा जी को रफ़ी साहब के साथ गाने के लिए विशेष पुरस्कार भी मिला। इसके बाद तो जैसे इनके पास प्रोजेक्ट्स की लाइन लग गई। चार साल बाद 1970 में आई फिल्म जहां प्यार मिले के गाने के बाद बात ज़रा है आपकी सॉन्ग के लिए इन्हें अपना दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और दोस्तों, कुल मिलाकर इनको अपने सिंगिंग करियर में 4 फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिल चुके थे, जो इस बात का सबूत था कि शारदा जी की वॉइस वाकई लाजवाब थी। इन्होंने एन इवनिंग इन पेरिस, गुमनाम, सपनों के सौदागर, दुनिया और कल, आज और कल जैसी बड़ी फिल्मों में अपनी आवाज़ दी। इनकी आवाज़ का इस्तेमाल अक्सर उन एक्ट्रेस के लिए किया जाता था जो पर्दे पे थोड़ी चुलबुली या वेस्टर्न अंदाज वाली होती थी। चलिए इसी बात पर सुनते हैं इनकी फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस का ये रोमांटिक सा सॉन्ग।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज की हमारी कलाकार हैं शारदा रंजन, और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं मशहूर सिंगर शारदा जी की। शारदा जी ने उस समय के लगभग हर बड़े सिंगर्स के साथ गाने गाए, चाहे वो मोहम्मद रफ़ी हो, आशा भोसले हो, किशोर कुमार हो या मुकेश। इन्होंने हर किसी के साथ अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। इन्होंने उस दौर की बड़ी एक्ट्रेस के लिए गाने गाए, वैजयंती माला, साधना, सायरा बानो, हेमा मालिनी, मुमताज़, शर्मिला टैगोर और रेखा जैसे स्टारर्स के फेस पर इनकी वॉइस एकदम फिट बैठती थी। और तो और, शारदा जी ने सिर्फ फिल्मों तक ही खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि इन्होंने इतिहास भी रचा। ये भारत की पहली महिला सिंगर बनी जिन्होंने अपना खुद का पॉप एल्बम रिकॉर्ड किया। 1971 में इनका एल्बम सिजलर रिलीज़ हुआ, जिसे उस समय की मशहूर कंपनी हिज मास्टर वॉइस ने रिलीज़ किया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं शारदा जी ने म्यूज़िक डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया था? तो इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे, पर अभी वक्त हो गया है इनकी फिल्म नैना का ये गीत सुनने का।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज की हमारी जो कलाकार हैं वो हैं शारदा रंजन जी, और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, आपके मेल आ गए हैं हमारे पास, मैं उसे पढ़ लेती हूं। ये हैं ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह, दलजीत सिंह, राजदीप, गुनरूर, गुरलाल और अविराज जी, और संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत और कमल सैनी, पिंगावाला चौक जालंधर से हैं ये, और साथ में है ये लिखते हैं, शानदार प्रस्तुति के साथ उम्दा जानकारी मिली और बेहतरीन गीत सुनने को मिला, धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावाकर, निर्मला विशाल, मलकापुर से नारायण, राजकुमार आशीष, और ये है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार। और एक ही कलाकार में आज आप शारदा के बारे में जानकारी दे रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है। गांव फरा से, जिला हिसार से राजकुमार डुंडी, प्रमोद कुमार डुंडी, और ये हैं हमारे साथ ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन, सहनवास, फरीन सुहाना, अरजान और अब्बास अब्बासी, और ये है सुदर्शन मुखिया।

सीतामुखी सिमरन मुखी फ्रॉम शांतिनगर सोनीपत से, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेल से, मोहम्मद इस्तफाक, मोहम्मद असफाक, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर आफरीन और खमीजा, ये हैं ऊपरकोट मोहल्ला मोहम्मद सईद अब्बासी जी का। और ये है देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया का। और ये है दंतरेगी से हीरामणि वर्मा जी का। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम आपको बताते हैं कि जब प्लेबैक सिंगिंग से थोड़ा समय मिला तो शारदा जी ने अपने प्रतिभा का एक और पहलू दुनिया को दिखाया। ये बॉलीवुड की उन शुरुआती महिलाओं में से थी जिन्होंने म्यूजिक डायरेक्शन में हाथ आजमाया। इन्होंने 70 के दशक के मिडिल में कई फिल्मों का म्यूजिक तैयार किया। इसमें से था माँ बहन और बीवी, तू ही मेरी जिंदगी, मंदिर मस्जिद, मैला आंचल और क्षितिज जैसी फिल्में शामिल थी जिसमें इन्होंने म्यूजिक दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, इन्होंने बच्चों के लिए भी ढेरों कविताएं और गाने रिकॉर्ड किए क्योंकि इनकी आवाज़ की मासूमियत बच्चों को बहुत पसंद आती थी। म्यूजिक के प्रति इनका ये समर्पण दिखाता है कि ये केवल एक सिंगर नहीं बल्कि एक मुकम्मल कलाकार भी थी जो समय के साथ खुद को ढालना जानती थी। तो चलिए इसी बात पर सुनते हैं इनकी फिल्म अराउंड द वर्ल्ड का ये गाना।

दोस्तों, 14 जून 2023 को शारदा जी हमें छोड़कर चली गईं। इनको कैंसर की बीमारी हुआ था, जिसकी वजह से इनका निधन हो गया। पूरे संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन इनकी आवाज़ आज भी जिंदा है। अपने अंतिम सालों

ये भी ये संगीत से जुड़ी रही। 2007 का एल्बम अंदाज़े बयां इनका आखिरी बड़ा प्रोजेक्ट्स में से एक था। दोस्तों, शारदा जी की कहानी हमें याद दिलाती है कि म्यूज़िक समय से परे है। इनकी आवाज़ सुनकर आज भी मन प्रसन्न हो जाता है और इसी वजह से ये हमेशा फैंस के दिल में अमर रहेंगी।

तो दोस्तों फिलहाल अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए, धन्यवाद। लेकिन श्रोताओं आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा गीत और गुनगुनाते रहिएगा संगीत।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जल संरक्षण के सारे काम, सुख समृद्धि के रचे आयाम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओ, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: तो श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर
1: जी,
2: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
1: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए
2: जी।
1: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं, और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
1: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप।
2: जी,
1: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
2: तो श्रोताओ, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर

0: भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
1: जी, बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है।
0: जी
1: वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
0: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा।
1: जी
0: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
1: तो बिमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
0: जी अजीत जी, श्रोताओ, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
1: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
0: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओं कि खाली पेट घर से न निकलें।
1: जी
0: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
1: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
0: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है, वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओं, जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे, तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते?
1: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
0: जी अजीत जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरे में 80 से 90% तक पानी होता है।
1: जी
0: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
1: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर धन्यवाद देना चाहिए,
0: जी
1: लेकिन दुखद है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करती है ना, उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
0: तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
1: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है गर्मी।
0: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
2: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थीं, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थीं। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थीं।
3: अकर बकर बम्बे वो 80 90 पूरे 100 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा।
4: अब तेरी बारी है, तेरी
5: तुम्हारी बारी, तुम सुना, तुम सुना।
4: अच्छा ठीक है, मुझे तो कहानी आती है,
5: तो कहानी सुना दो भाई।
4: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौआ प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौआ लाया कंकड़, घड़े में डाले कंकड़, पानी आया ऊपर, कौए ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
5: अच्छी कहानी थी भाई, कौए ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
4: हाँ, प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
5: हाँ चलो चलो, वहाँ पे
4: चलो,
5: पानी
4: चलो,
5: होगा।
4: चलते हैं।
2: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुई। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
6: कौन है?
5: दीदी,
6: कौन है?
5: दीदी।
4: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
5: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
4: हम थोड़ा पानी पी लें?
6: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी।

0: पी लिया पानी?
1: हाँ।
0: प्यास बुझी?
1: हाँ, बड़ा ठंडा पानी था। लेकिन अम्मा, आप कौन है?
0: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो मैं कौन हूँ?
1: कौन है आप?
0: नहीं समझे?
1: नहीं।
0: अच्छा तो फिर ये पहेली सुनो।

0: पंखा जलते हैं
1: और सारे दिन पानी भी पीते हैं।
0: ऐसा मौसम।
1: अब गर्मी
0: अम्मा है।
2: बिल्कुल ठीक समझी। मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
1: गर्मी अम्मा, आप कब आती हैं पता ही नहीं चलता।
2: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है, गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू। यानी यानी
1: हाँ, जब होली आती है तो गर्मी भी तो लगनी
2: शुरू हो जाती है। हाँ
1: अम्मा, मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
2: भाई मेरे मौसम में गर्मी तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
1: हाँ चलो अम्मा, चलते हैं।
3: चलो।
4: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गईं। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
1: अरे ये क्या गिरा?
2: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
4: वहां दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
1: अम्मा, आप क्या छुपा रही हैं?
3: अम्मा, ये आपके हाथ में क्या है?
2: मेरे ही मौसम का एक फल है।
1: दिखाओ ना।
2: दूंगी तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
3: इसका नाम
2: सोचो। मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
3: स्वाद है,
0: पसंद है,
3: सबसे अच्छा भी है।
0: कौन सा फल है?
3: कौन सा फल
2: नहीं समझी?
3: नहीं।
2: अच्छा तो फिर सुनो।

0: समझदारू।
1: आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम, कुल्फी वाला बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो आइसक्रीम कुल्फी।
0: मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना।
2: अरे कोई खाने को दे तब ना।
0: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ। और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
2: लाओ अम्मा,
0: लो।
2: घर भी अम्मा, आप बहुत अच्छी हैं।
0: तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।

0: झट से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना।
1: आ, आ, तुम तो बड़ी

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
1: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
2: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है।
3: विजय श्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
2: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया, और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
4: Behind you was the sound of Bofors' gun directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
5: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
3: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्टाज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो। वैसे भी ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम।

0: अभी मई महीने में ही इतनी ठंड है, तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
1: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की दो सर्दियां देख ली हैं।
0: जरा उधर देखो।
1: अब किधर?
0: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
1: कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
0: पहनावे से तो कोई कबायली लगता है।
1: हाँ।
0: लेकिन इधर क्यों आ रहा है?
1: हाँ।
0: कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
1: हाँ, आने तो आने तो। ए! कौन हो तुम? रुको, रुको! जाओ वहीं रुक जाओ, रुको!
2: कौन हो तुम?
3: साहब मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
2: क्या सूचना?
3: साहब साहब दुश्मनों के बारे में।
2: अच्छा यहीं रुको, चलो कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
3: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
4: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
3: सर हम एक चरवाया हैं।
4: आगे बताओ।
3: सर ये 3 मई की बात है, कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
4: क्या देखा तुमने?
3: साहब मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा हैं।
4: क्या?
3: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ।
4: कितने लोग रहे होंगे?
3: साहब पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
4: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
3: साहब मेरा गांव है घरकोन, ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
5: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
6: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
5: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्को, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
6: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
5: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
6: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना

0: एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
1: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यम भावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
0: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
2: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
3: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
2: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
4: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
2: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
5: जी, यस सर।
2: ये मेज के चारों ओर।
5: जी सर।
3: उधर से। हाँ
2: जी। तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
5: जी सर।
2: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
5: जी सर।
2: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
5: जी सर।
2: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
3: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। अब इस तरफ से सर, अब यहां से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
2: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
6: यस सर।
2: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
5: जी जी सर।
2: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
5: सर, जी सर।
2: कोई शक?
5: नो सर।
2: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
6: यस सर।
3: सर, अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
7: धीमे बोलो, धीमे।
3: जी,
7: उन्हें पता ना चल जाए।
3: जी सर।
7: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे।
3: जी।
7: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
3: ठीक है सर।
7: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हथगोला फेंकना।
3: जी सर।
7: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी।
3: जी सर।
7: ठीक है, आगे बढ़ो। बहुत धीरे, आवाज नहीं निकलनी चाहिए। धीरे,
3: ओके, धीरे।
7: तबे पाओ, बस। अब हम चोटी पर आ गए हैं तो अब रेंगना शुरू करो।
3: रेंगेंगे।
7: जी सर। कोई भी उठकर नहीं चाहेगा, सब रेंगेंगे। आवाज नहीं। हर कोई अपनी पोजीशन ले।
3: हाँ सर।
7: एवरीबॉडी रेडी?
5: यस सर।
3: यस सर।
7: अब हथगोला फेंको।
2: गुड। वो अपने बंकरों से बाहर आ रहे हैं।

और इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया।

0: ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
0: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
1: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा है कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
0: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।
2: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

शायद वो उतनी खूबसूरत नहीं है, उतनी सक्सेसफुल नहीं है या उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितने लोग ऑनलाइन दिखते हैं। वो अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देती है, उसकी स्किन इतनी साफ क्यों है, मेरे चेहरे में इतनी खामियां क्यों हैं, सब लोग इतने खुश क्यों लगते हैं और मैं अंदर से इतनी उदास क्यों हूँ। ये कंपैरिजन धीरे धीरे इनसिक्योरिटीज़ बन जाता है और इनसिक्योरिटीज़ धीरे धीरे इंसान को अंदर से तोड़ना शुरू कर देती हैं। बहुत सी लड़कियाँ आज अपने असली चेहरे से ज़्यादा फिल्टर्स वाले चेहरे को पसंद करती हैं। वो बिना फिल्टर या बिना मेकअप अपनी तस्वीर शेयर करने से घबराती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो परफेक्ट नहीं लगेंगी तो लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सोचिए कितनी तकलीफ की बात है कि एक इंसान अपनी असल शक्ल से और असल पहचान से अनकंफर्टेबल फील करने लगे। ये सिर्फ मेकअप या फिल्टर का मसला नहीं है, ये सेल्फ वर्थ का मसला बन चुका है। आज की बहुत सी लड़कियां खुद को दूसरों की नज़रों से देखने लगी हैं। वो ये भूल चुकी हैं कि उनकी असली खूबसूरती उनके किरदार, उनकी सोच और उनके दिल में होती है। डिजिटल दुनिया का एक और बहुत गहरा असर ज़हनी सेहत पर पड़ रहा है। बेचैनी, जिसे हम एंजाइटी कहते हैं, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग और अकेलापन आज के नौजवान में बहुत आम होते जा रहा है। बहुत सी लड़कियां रात भर स्क्रोलिंग करती हैं और फिर जिस्मानी तौर पर थक जाती हैं, लेकिन उनका दिमाग नहीं रुकता। हर वक्त दूसरों की ज़िंदगी देखना और अपनी ज़िंदगी को बोरिंग समझना इंसान को ज़हनी तौर पर थका देता है। कभी कभी इंसान सिर्फ इसलिए ऑनलाइन रहता है ताकि वो अपने असल एहसासात से भाग सके। जब दिल उदास होता है, जब घर के मसाइल होते हैं, जब अकेलापन महसूस होता है या जब खुद से मोहब्बत कम हो जाती है, तो इंसान आरजी सुकून के लिए मोबाइल उठा लेता है। लेकिन असल में वो सुकून नहीं होता, सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन होता है। कुछ देर के लिए इंसान अपने एहसासात भूल ज़रूर जाता है, लेकिन अंदर की खामोशी और खालीपन वही रहता है। आज का नौजवान ऑनलाइन दुनिया में बहुत एक्टिव है, लेकिन जज्बाती तौर पर बहुत थक चुका है। बहुत सी लड़कियां ऑनलाइन मुस्कुराते हुए तस्वीरें शेयर करती हैं, लेकिन असल में वो एंजाइटी, स्ट्रेस और इमोशनल प्रेशर से गुजर रही होती हैं। कई बार वो सिर्फ इसलिए स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश करती हैं क्योंकि मुआशरा उनकी कमज़ोरी को समझने की बजाय उन्हें जज करेगा। वैलिडेशन का मसला भी बहुत खतरनाक होता जा रहा है। आज की लड़कियों का कॉन्फिडेंस लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोवर्स से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। अगर किसी पोस्ट पर अच्छे रिस्पॉन्सेज आए तो खुशी महसूस करती हैं, और अगर कम लाइक्स और फॉलोअर्स मिलें तो वो सैडनेस और सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है। धीरे धीरे इंसान अपनी वैल्यू को ऑनलाइन रिएक्शन से जोड़ देता है। लेकिन सच ये है कि ऑनलाइन दुनिया की अटेंशन टेम्परेरी होती है। आज लोग तारीफ करेंगे, कल इग्नोर कर देंगे। अगर इंसान अपनी पहचान और अपनी खुशी को लोगों के रिएक्शन से जोड़ दे तो वो कभी अंदर से सुकून महसूस नहीं कर सकता। एक रियल इंसिडेंट में एक यंग लड़की ने सिर्फ इसलिए अपनी पिक्चर्स ऑनलाइन शेयर करना बंद कर दिया क्योंकि लोग उसकी स्किन और उसके वज़न पर कमेंट करते थे। धीरे धीरे उसने गैदरिंग में जाना, लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया क्योंकि उसे लगने लगा कि लोग उसे जज करेंगे। सोचिए अल्फाज कितना गहरा असर छोड़ देते हैं। एक और एग्जाम्पल, एक लड़की ने सिर्फ इसलिए डिप्रेशन फेस किया क्योंकि जिससे वो ऑनलाइन बात करती थी, इमोशनली कनेक्टेड थी, उस लड़के ने उसे ब्लॉक कर दिया। शायद दूसरों के लिए बहुत छोटी बात है। साइबर बुलिंग भी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। आज लोग स्क्रीन के पीछे छुपकर दूसरों का मजाक बना देते हैं। किसी का जिस्म, स्किन कलर, पहनावा या पर्सनैलिटी पर कमेंट्स करना लोग नॉर्मल समझने लगे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि उनके अल्फाज किसी को जहनी तौर पर कितना हर्ट कर सकते हैं। कई लड़कियां सिर्फ एक नेगेटिव कमेंट की वजह से अपना एतमाद खो देती हैं। कुछ लोग डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। एक और दर्दनाक चीज़, झूठे तसल्लियाँ, झूठे ताल्लुकात और रिश्ते जो जज्बाती लगाव हैं। ऑनलाइन दुनिया में लोग बहुत जल्दी जज्बाती हो जाते हैं। कई लड़कियाँ इमोशनल सपोर्ट और तवज्जो के लिए वर्चुअल रिलेशनशिप्स पर डिपेंड हो जाती हैं। जब कोई उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं देता तो वो टूट जाती हैं, और जब कोई उन्हें इम्पोर्टेंस देता है तो वो खुद को इम्पोर्टेंट महसूस करती हैं। ये जज्बाती लगाव इंसान को ज़हनी तौर पर कमज़ोर बना देता है। प्राइवेसी और सेफ्टी का मसला भी बहुत अहम है। आजकल हर चीज़ ऑनलाइन शेयर करना एक ट्रेंड बन चुका है। लोग अपनी ज़ाती ज़िंदगी, हर लम्हा और हर एहसास दुनिया के सामने रख देते हैं, लेकिन हर ऑनलाइन इंसान काबिल एतमाद नहीं होता। फेक अकाउंट्स, हैरेसमेंट्स, ब्लैकमेलिंग

0: महफूज रखें। आजकल फैमिली रिलेशनशिप्स भी मुतासिर हो रहे हैं। एक ही घर में रहते हुए लोग जज्बाती तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। फैमिली में एक साथ बैठकर भी हर शख्स एक दूसरे से बातें नहीं करता, अपने अपने फ़ोन में मसरूफ होते हैं। रियल कॉन्वर्सेशंस कम हो गई हैं। लोग एक दूसरे को महसूस करने के बजाय सिर्फ ऑनलाइन अपडेट्स देखते रहते हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाली बात यह है कि आज का यूथ अपनी असली पहचान से दूर होता जा रहा है। वो ऑनलाइन दुनिया में इतना खो गया है कि कभी कभी उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो असल में कौन है। वो दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते करते अपनी ओरिजिनलिटी को खो देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिजिटल दुनिया पूरी तरह बुरी है। अगर बैलेंस के साथ की जाए तो ये तालीमी, आगाही और मौक़ों का बहुत अच्छा ज़रिया बन चुकी है। मसला टेक्नोलॉजी नहीं है, इम्बैलेंस है। मसला ये है कि हम वर्चुअल दुनिया को असल ज़िंदगी से ज़्यादा अहमियत देते हैं। हमें यह समझना होगा कि हर मुस्कुराती हुई तस्वीर के पीछे खुशी नहीं होती, हर परफेक्ट चेहरे के पीछे कॉन्फिडेंस नहीं होता, और हर वायरल इंसान इमोशनली स्ट्रांग नहीं होता। बहुत से लोग ऑनलाइन सिर्फ इसलिए खुश दिखते हैं क्योंकि वो अपना दर्द दुनिया को नहीं दिखाना चाहते। मैं ख़ास तौर पर लड़कियों से ये कहना चाहूँगी कि खुद को किसी ऑनलाइन स्टैंडर्ड से कंपेयर मत करें। आपकी वैल्यू किसी फिल्टर, लाइक्स या फॉलोअर्स से डिसाइड नहीं होती है। आपका किरदार, आपका दिल, आपकी सोच और आपकी मेहरबानी ही आपकी असली खूबसूरती है। खुद को एक्सेप्ट करें। अपने जहनी सुकून को ऑनलाइन वैलिडेशन के लिए सेक्रीफाइस मत करें। डिजिटल दुनिया से ज़्यादा अपनी रियल ज़िंदगी को अहमियत दें। फैमिली के साथ वक्त गुजारें, अपनी हॉबीज़ को वक्त दें और सबसे अहम, खुद के साथ कनेक्शन मजबूत बनाएं। वालिदैन को भी ये समझना होगा कि सिर्फ फ़ोन छीन लेने से मसला हल नहीं होता। आज के नौजवान को जज्बाती सपोर्ट और सेहतमंद कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। जब एक बच्चा जज्बाती तौर पर खुद को सुना गया महसूस करता है तो वो वर्चुअल दुनिया पर गैर सेहतमंद इंतज़ार नहीं करता। आखिर में बस इतना कहना चाहूँगी कि ऑनलाइन दुनिया एक आईना है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर आईने में दिखने वाली चीज़ सच हो। असल खूबसूरती फिल्टर्स में नहीं होती, असल एतमाद फॉलोवर्स में नहीं होता, और असल सुकून मोबाइल स्क्रीन के अंदर नहीं बल्कि इंसान के अंदर होता है। आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ रियल होने की ज़रूरत है। अपनी जहनी सेहत, अपने जज्बात और अपनी पहचान का ख्याल रखें, क्योंकि अगर इंसान अंदर से टूट जाए तो दुनिया की कोई भी तवज्जो उसे शिफा नहीं दे सकती।
1: सामीन इकराम, अभी आप इशत चौधरी से ये मालूमाती तकरीर सुन रहे थे। मौजू था डिजिटल दुनिया और हम। लीजिए अब समाप्त कीजिए गुलाम अली की आवाज़ में हसत मोहानी का।

0: वाह क्या बात है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। तो सामीन, वाकई इस गज़ल को सुनकर आप भी अपने उन यादों में ज़रूर खो गए होंगे, जिन यादों को आप सोचते हैं और सोच करके मुस्कुराते हैं, ख्याल करते हैं। तो आइए सामीन, हम अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से तक पहुँच चुके हैं और आखिर में नवाए शायर के तहत लीजिए समात कीजिए डॉक्टर खान रिजवान से उनका कलाम।
1: गज़ल का मतलब पेश खिदमत है। देखिए कि अपनी हस्ती का मुझको इदराक हुआ, अपनी हस्ती का मुझको इदराक हुआ, धोखा खाकर मैं भी कुछ चालाक हुआ। अपनी हस्ती का मुझको इदराक हुआ, धोखा खाकर मैं भी कुछ चालाक हुआ। कोई मुझको मरने से कब रोक सका, वक्त मेरा आया और किस्सा पाक हुआ। फिर देखिए कि क़ैद रहा मैं कुछ ऐसा अपने घर में, क़ैद रहा मैं कुछ ऐसा अपने घर में, भीड़ में भी तन्हाई का इदराक हुआ। भीड़ में भी तन्हाई का इदराक हुआ। और ये शेर कि मैं तो पुरानी कदरों का था परवरदा, मैं तो पुरानी कदरों का था परवरदा, लेकिन रफ्ता रफ्ता यूं बेबाक हुआ, लेकिन रफ्ता रफ्ता यूं बेबाक हुआ। कोई कब पुरसाने हाल किसी का हुआ, कोई कब पुरसाने हाल किसी का हुआ, किस्से दर्द को सुनकर मैं नमनाक हुआ। कौन किसी का कब सुनता है ए रिजवां, कौन किसी का कब सुनता है ए रिजवां, किस्से दर्द सुनाकर मैं नमनाक हुआ। अपनी हस्ती का मुझको इदराक हुआ, धोखा खाकर मैं भी कुछ चालाक हुआ। और एक गज़ल का मतलब देखिए कि जी चाहता है उसको खुदा कर दिया जाए, जी चाहता है उसको खुदा कर दिया जाए, फिर उसको ज़माने से जुदा कर दिया जाए। जी चाहता है उसको खुदा कर दिया जाए, फिर उसको ज़माने से जुदा कर दिया जाए। और ये शेर की आवाज़ किसी और को दूँ और वो सुन ले, आवाज़ किसी और को दूँ और वो सुन ले, जी करता है नाम उसका सदा कर दिया जाए, जी करता है नाम उसका सदा कर दिया जाए, मैं अपने मुकाबिल जो कभी ढूंढने निकला, मैं अपने मुकाबिल जो कभी ढूंढने निकला, फिर सबने कहा उसको मेरा कर दिया जाए। मैं अपने मुकाबिल जो कभी ढूंढने निकला, फिर सबने कहा उसको मेरा कर दिया जाए। रिजवां मेरी राहों में न आना के मुझे खुद, रिजवां मेरी राहों में न आना के मुझे खुद, गुम करदा तलब गारे अना कर दिया जाए, गुम करदा तलब गारे अना कर दिया जाए। आवाज़ किसी और को दूँ और वो सुन ले, जी करता है नाम उसका सदा कर दिया जाए। एक गज़ल के चंद अशआर देखें, मतलब है कि तेरे दयार में ये कैसे लोग आते हैं, तेरे दयार में ये कैसे लोग आते हैं, शिकम की भूख मिटाने को सर झुकाते हैं। तेरे दयार में ये कैसे लोग आते हैं, शिकम की भूख मिटाने को सर झुकाते हैं। सितम ज़रीफ ज़माने के हैं ये परवरदा, सितम ज़रीफ ज़माने के हैं ये परवरदा, जभी तो लोगों पे हंस हंस के जुल्म ढाते हैं। सितम ज़रीफ ज़माने के हैं ये परवरदा, जभी तो लोगों पे हंस हंस के जुल्म ढाते हैं। हमें तो कोई शिकायत नहीं है गैरों से, हमें तो कोई शिकायत नहीं है गैरों से,

हमारे दोस्त ही हमको बहुत रुलाते हैं। हमारे दोस्त ही हमको बहुत रुलाते हैं, ये कैसे लोग हैं तर्के अना की खातिर जो। फिर देखिए कि कैसे लोग हैं तर्के अना की खातिर जो, वक़ारे आदमियत खाक में मिलाते हैं। ये कैसे लोग हैं तर्के अना की खातिर जो, वक़ारे आदमियत खाक में मिलाते हैं। और ये शेर की मुनाफिकत की सिफत रास आ गई उनको। फिर देखिए कि मुनाफिकत की सिफत रास आ गई उनको, मुनाफिकीन से वो हाथ अब मिलाते हैं, मुनाफिकीन से अब हाथ वो मिलाते हैं। और एक गज़ल के दो तीन शेर देखें, मतलब यूँ है कि मैंने अपने ख्वाब उछाले पानी में, मैंने अपने ख्वाब उछाले पानी में, जीने के असबाब उछाले पानी में, जीने के असबाब उछाले पानी में, ख्वाब महल के उरियां जिस्म सराए से। फिर देखिए कि ख्वाब महल के उरियां जिस्म सराए से, तहजीबो आदाब उछाले पानी में, ख्वाब महल के उरियां जिस्म सराए से, तहजीबो आदाब उछाले पानी में। और ये शेर के जिस्म के अंदर रूह बहुत बेचैन हुई, जिस्म के अंदर रूह बहुत बेचैन हुई, तब जाकर कम ख्वाब उछाले पानी में, जिस्म के अंदर रूह बहुत बेचैन हुई, तब जाकर कम ख्वाब उछाले पानी में, कर्ब ने कितना मुश्किल जीना कर डाला, कर्ब ने कितना जीना मुश्किल कर डाला, वक्ते सहर गिरदाब उछाले पानी में, कर्ब ने कितना मुश्किल जीना कर डाला, वक्ते सहर गिरदाब उछाले पानी में, हद से ज़्यादा बेताबी जब बढ़ने लगी, हद से ज़्यादा बेताबी जब बढ़ने लगी, दर्दे दिले बेताब उछाले पानी में, हद से ज़्यादा बेताबी जब बढ़ने लगी, दर्दे दिले बेताब उछाले पानी में, मैंने अपने ख्वाब उछाले पानी में, जीने के आदाब उछाले पानी में। एक गज़ल के चंद अशआर और देखें कि गम कदे में रहते हैं, दुख छुपाए फिरते हैं, दिल भी कांप उठता है खुल के मुस्कुराने में, दिल भी कांप उठता है खुल के मुस्कुराने में। और ये शेर देखें कि लोग हंस पड़े एक दिन और फिर लगे रोने, लोग हंस पड़े एक दिन और फिर लगे रोने, था लिखा हुआ सब कुछ ज़िस्त के फसाने में, कह रहे हो तुम जिसको वक्त का सिकंदर है। शेर देखें कि कह रहे हो तुम जिसको वक्त का सिकंदर है, बेज़मीर इंसान है आज के ज़माने में, ये भी देखा है रिजवां लोग टूट जाते हैं, ये भी देखा है रिजवां लोग टूट जाते हैं, रिश्ते मोहब्बत को उम्र भर निभाने में, ये भी देखा है रिजवां लोग टूट जाते हैं, रिश्ते मोहब्बत को उम्र भर निभाने में, रिश्ते मोहब्बत को उम्र भर निभाने में। के देखें कि ज़मीं से आसमां तक कोई इस्तियारा नहीं, ज़मीं से आसमां तक कोई इस्तियारा नहीं, किसी के हम नहीं हैं और कोई हमारा नहीं, किसी के हम नहीं हैं और कोई हमारा नहीं। और ये शेर देखें कि भंवर बदन से कुछ इस तरह हम उलझ बैठे, भंवर बदन से कुछ इस तरह हम उलझ बैठे, निकल के जाएं किधर कोई भी किनारा नहीं, निकल के जाएं किधर कोई भी किनारा नहीं। और ये शेर की उसी को ख्वाबे हवस में है देखती आँखें, उसी को ख्वाबे हवस में है देखती आँखें, हमारे पास कोई और माह पारा नहीं, हमारे पास कोई और माह पारा नहीं। और ख़ास तौर से ये शेर कि वो चाहता है कि हम दस्तरस में उसकी रहें। शेर देखिए कि वो चाहता है, वो चाहता है कि हम दस्तरस में उसकी रहें, किसी का होके रहें ये उसे गवारा नहीं, किसी का होके रहें ये उसे गवारा नहीं, वजूदे जाके सिवा मिल्कियत नहीं कुछ भी,
इसी सबब से मेरा कोई गोश

0: बंटवारा नहीं, वजूदे जा के सिवा मिल्कियत नहीं कुछ भी, इसी सबब से मेरा कोई गोशवारा नहीं। चलो के करते हैं तख्लीक एक नई दुनिया, चलो के करते हैं तख्लीक एक नई दुनिया। कोई नसीब का अपने यहाँ सितारा नहीं, कोई नसीब का अपने यहाँ सितारा नहीं। उसी को ख्वाबे हवस में है देखती आंखें, हमारे पास कोई और माह पारा नहीं।
1: सामीन इकराम, अभी आप समाप्त कर रहे थे खान रिजवान से उनका ये कलाम। तो सामीन, यकीनन आज आप इस प्रोग्राम अक्से अदब से महजूज हुए होंगे। आपको ये भी बताते चले कि इस प्रोग्राम को तरतीब दिया था इंतज़ार सैफी ने। तो सामीन, इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और प्रोग्रामों के साथ, कुछ और मौजूआत के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान शाहनवाज हाशमी को प्रोग्राम ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर 4 बजने को है। लीजिए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल की अधिकतम बढ़ोतरी सूर्यमुखी के बीजों के लिए की गई है। इसके बाद 557 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि कपास के लिए और 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि तिल के लिए की गई है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया है। एडापड़ी के पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। भाजपा विधायक और पीएमके समेत 5 विधायक तटस्थ रहे। डीएमके और अन्य गठबंधन सहयोगी दलों ने प्रस्ताव में भाग नहीं लिया और विधानसभा से वॉकआउट किया। एसपी वेलुमणि के नेतृत्व वाली AIADMK ने सरकार का समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने बहुमत साबित करने का प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया था। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया NR कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया NR कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए नसिमयम ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष, प्रदेश अध्यक्ष VP रामलिंगम और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनकी हाल की यात्राओं के दौरान लागू की गई थी। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। विद्यार्थी रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं।

नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा कारोबार में जून अनुबंध के तहत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग और किदांबी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग शीट्योंग को हराया, जबकि मालविका ने कनाडा की वेन यू झांग और देविका ने जापान की नात्सुकी निदाइरा को हराया। पुरुष सिंगल्स में के श्रीकांत ने सिंगापुर के लो किन यू को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आयुष शेट्टी, थारुन मन्नेपल्ली, उन्नति हुड्डा, तन्वी शर्मा और अनमोल खरब को हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: assembly. The motion to prove majority was brought by Chief Minister in the assembly. AIADMK, led by SP Velumani, supported the government. In his speech after winning the motion of confidence, Chief Minister Joseph Vijay assured that his government will definitely protect the welfare of the minorities and work for the welfare of the people. Gold and silver prices today witnessed a sharp surge of up to 6%. In the futures market at the multi-commodity exchange, gold for the June contract was trading nearly 6% higher at 1,62,597 rupees per 10 grams, while silver for the July contract was trading around 6.4% higher at 2,96,821 rupees per kilogram, according to latest reports. The government has raised the import duty, including cess, on gold and silver from 6 to 15%. The Central Board of Secondary Education, or CBSE, today announced the Class 12 board exam results. Students can check their results on the official website, DigiLocker and Umang app by mentioning their roll number. This year, CBSE Class 12 exams were conducted between February 17 and April 10, 2026. IMD has predicted heatwave conditions over Gujarat, Maharashtra and West Madhya Pradesh till tomorrow. The weather agency has forecast hot and humid weather over coastal Karnataka for the day. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru will take on Kolkata Knight Riders in Raipur at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर शाम के 4:10 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। खोए हुए व्यक्ति का नाम काजल, डॉटर ऑफ अवनीश, इनकी उम्र है 22 वर्ष, ये महिला हैं। शरीर की बनावट आँख, कान, नाक और चेहरा मध्यम है और चेहरे की जो बनावट है वो गोल है। कद 5 फीट 2 इंच है। ये घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। इनके बारे में किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी प्राप्त हो तो कृपया हमें इस पते पर सूचित करें। SHO थाना, इकोटेक Phase 3, गौतम बुद्धा नगर। खोए हुए व्यक्ति का नाम साहिल, उम्र 18 वर्ष, ये पुरुष हैं। इनकी माताजी का नाम है अमीना। शरीर की बनावट औसत है, रंग गोरा है। कद 5 फुट 5 इंच है। इन्होंने काले रंग के कपड़े पहन रखा है। अंतिम बार इनको देखा गया है ये घर से काम के लिए बोलकर बिना बताए कहीं अपने ग्राम हल्दौनी से कहीं चले गए हैं। इनके बारे में भी किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो, आपको कोई सूचना देनी हो तो आप हमें इस पते पर सूचित कर सकते हैं। SHO थाना, इकोटेक Phase 3, गौतम बुद्धा नगर। खोए हुए व्यक्ति का नाम आदेश, उम्र 35 वर्ष, ये पुरुष हैं। शरीर की बनावट एक हरा मजबूत बदन है। कद 5 फीट 6 इंच है। इनको अंतिम बार अपने घर हल्दौनी में देखा गया था और ये तारीख था 17/12/2025 को। सुबह ड्यूटी के लिए निकले थे और उसके बाद वापस नहीं आए। इनके बारे में किसी भी प्रकार की आपको जानकारी प्राप्त हो तो हमें इस पते पर सूचित करें। SHO थाना, इकोटेक Phase 3, कमिश्नरेट, गौतम बुद्धा नगर। गुमशुदा का नाम नीलम, उर्फ ज्योति, डॉटर ऑफ लाखन, इनकी उम्र है 30 वर्ष, ये महिला हैं। शरीर की बनावट आँख, नाक, कान औसत है। कद करीब 5 फुट है। इनको अंतिम बार

0: 21/12/2025 को ग्रैंड अजनारा सोसाइटी सेक्टर 74 नोएडा में देखा गया है। इनके बारे में किसी भी प्रकार की अगर जानकारी प्राप्त हो तो हमें इस पते पर सूचित करें। SHO थाना, सेक्टर 113 नोएडा, गौतम बुद्धा नगर। और प्रार्थी का पूरा पता है, गुमशुदा व्यक्ति का जो पूरा पता है वो है तिमारपुर, नई दिल्ली का है। तो अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो हमें अवश्य सूचित करें। खोए हुए व्यक्ति का नाम काजल, काजल कुमारी, डॉटर ऑफ राजू कुशवाहा। इनकी उम्र है 24 वर्ष, ये महिला हैं। शरीर की बनावट सामान्य है, कद 5 फीट 2 इंच है। इनको अंतिम बार देखा गया है 12/12/2025 को, अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी। निवासी हैं ये व्रज विहार छपरौला, थाना बदलपुर, गौतम बुद्धा नगर की। इनके बारे में किसी भी प्रकार की अगर जानकारी प्राप्त हो तो कृपया हमें इस पते पर सूचित करें। SHO थाना, तिमारपुर, गौतम बुद्धा नगर। खोए हुए व्यक्ति का पूरा नाम भूमिका, डॉटर ऑफ ब्रह्म। इनकी आयु 16 वर्ष है, ये महिला हैं। शरीर की बनावट रंगोरा, लंबा चेहरा और हृष्ट पुष्ट शरीर है इनका। बाएं हाथ पर टैटू का निशान है। कद 5 फुट 2 इंच है। ये घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। इनके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो तो हमें इस पते पर सूचित करें। SHO थाना, DLF Phase 3, गुरुग्राम। खोए हुए व्यक्ति का पूरा नाम योगेश सिंह। इनकी उम्र है 30 वर्ष, ये पुरुष हैं। शरीर की बनावट रंग सांवला, गोल चेहरा। माथे पर चोट का निशान है। कद 5 फीट 6 इंच है। और इनको अंतिम बार यू ब्लॉक DLF Phase 3 गुरुग्राम में देखा गया है। इनके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आपको प्राप्त हो तो कृपया हमें इस पते पर सूचित करें। DLF Phase 3 गुरुग्राम। खोए हुए व्यक्ति का नाम कंचन, पुत्री सुरेंद्र शर्मा। आयु 18 वर्ष है, ये महिला हैं। शरीर की बनावट आँख नाक कान, कद औसत, रंग गोरा। कद इनका 5 फिट है। और इनके बारे में अगर किसी भी प्रकार की जानकारी देनी हो तो हमें इस पते पर सूचित करें। और ये ग्राम जलपुरा से बिना बताए अपने घर से कहीं चली गई हैं। तो अगर आपको इनके बारे में किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो तो हमें इस पते पर सूचित करें। SHO थाना, इकोटेक Phase 3, गौतम बुद्धा नगर, नोएडा। इसी के साथ ही खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुईं।
1: मैं हूं आपका जलदाता, ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहां धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देते। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं? क्या लिखूं अपना दर्द? अब तो कलम में बस बूंदे ही बची है।

0: Search DHR under the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, has invited applications from eligible officers for scientist posts on deputation, including short-term contract basis, in its Health Technology Assessment Attached Office. Interested candidates can apply within 30 days from the publication of this advertisement in the Employment News. For details, kindly refer to the website, that is at www.dhr.gov.in. The Office of the Registrar General and Census Commissioner, India, under the Ministry of Home Affairs, is inviting applications for 6 posts of senior translator on deputation or absorption basis in New Delhi and other data collection officers, DCOs. The posts are in level 7 as per the 7 CPC. Eligible candidates must apply through proper channel within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. For details, kindly refer to the website, and the official website is www.censusindia.gov.in.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय नई दिल्ली में निदेशक इंजीनियरिंग का एक पद रिक्त है, जिसे प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है। आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक अर्हता, अनुभव आदि संबंधी विवरण पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात www.shipmin.gov.in पर करियर लिंक के अंतर्गत मंत्रालय में रिक्ति लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है। इच्छुक एवं पात्र अधिकारी अपना आवेदन इस पते पर भेज सकते हैं। अवर सचिव प्रशासन पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, कमरा संख्या 439, परिवहन भवन 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। अंडमान लोक निर्माण विभाग अंडमान एवं निकोबार प्रशासन में प्रतिनियुक्ति के आधार पर 3 वर्ष की अवधि के लिए अधीक्षण अभियंता की नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। केवल 1 पद पर रिक्ति उपलब्ध है और पद 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है। आवेदन पत्र मुख्य अभियंता कार्यालय APWD निर्माण विभाग श्री विजयपुरम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र अंडमान और निकोबार प्रशासन तथा APWD की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है, जिसका पता है andamannicobar.gov.in तथा apwd.and.nic.in। मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। समूह महाप्रबंधक उत्पादन, समूह महाप्रबंधक परियोजना, महाप्रबंधक गुणवत्ता, महाप्रबंधक अनुसंधान एवं विकास तथा महाप्रबंधक मानव संसाधन। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.midhani-india.in। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। लोक अभियोजक 1 पद नई दिल्ली के लिए, आशुलिपिक श्रेणी 1 और निजी सहायक कुल 4 पद, जिनमें से 1 पद भोपाल तथा 1 पद कोलकाता के लिए रहेगा, जबकि 2 पद नई दिल्ली के लिए रहेंगे। उच्च श्रेणी लिपिक 1 पद भोपाल मध्य प्रदेश के लिए, आशुलिपिक श्रेणी 3 2 पद जिनमें से 1 पद नई दिल्ली के लिए और 1 पद मुंबई के लिए है, उपारक्षी वन रक्षक 1 पद चेन्नई और चेन्नई क्षेत्र, ड्राइवर 1 पद कोलकाता तथा 1 पद चेन्नई के लिए। संपूर्ण विज्ञप्ति और विवरण मंत्रालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं, जिसका पता है moef.gov.in। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए आवेदक श्री संजीव कुमार गुप्ता

0: सहायक निदेशक प्रशासन वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ब्यूरो मुख्यालय से ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। ईमेल का पता है adadm@wccb.gov.in। फोन नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 0112086273 तथा मोबाइल नंबर है 9415911667। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।
2: अभी आप सुन रहे थे रोजगार समाचार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़। टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: शाम के 4:30 होने को है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम परिक्रमा।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
0: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बज चुके हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। तो श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। तो परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुजतबा। हेलो सायरा।
2: हेलो जया, हाउ आर यू?
0: आई एम फाइन
2: एंड होप ऑल लिसनर्स आर आल्सो डूइंग फाइन। और वेलकम टू आवर लिसनर्स, आदाब नमस्कार, अ वेरी गुड इवनिंग, बिकॉज वी हैव कम विद अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा, वेयर ऑफ कोर्स वी हैव नेम्ड द शो बिकॉज वी डू परिक्रमा ऑफ द कंट्री। देखेंगे हम लोग के जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वट इंटरेस्टिंग स्टोरीज दे हैव टू शेयर विद अस। एंड ऑफ कोर्स जया हैज ऑलरेडी टोल्ड यू वॉट टू लुक फॉरवर्ड टू अमंग अदर थिंग्स। So let's start with the headlines first, Jaya.
0: जी, तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद के शपथ ली।
2: सेंटर एंड स्टेट्स इंटेंसिफाई फ्यूल सेविंग मेजर्स फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर मोदीज अपील अमिड ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस ट्रिगर्ड बाय द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट।
0: CBSE ने कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम घोषित किए।
2: Gold silver prices jump over 6% after government hiked import duty to around 15%.
0: मौसम विभाग ने कहा इस साल मानसून जल्द ही आने की संभावना।
2: And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru to take on Kolkata Knight Riders in Raipur this evening. एंड जया, हस्बी दस्तूर हम लोग शुरुआत करते हैं परिक्रमा की अपने स्पेशल सेगमेंट डेटलाइन इंडिया से, इन विच वी टेक अ लुक एट सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड आवर टुडेज टॉपिक इज विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। वेल, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नोटिफाइड द कमेंसमेंट ऑफ द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण और VBG रामजी एक्ट 2025 अक्रॉस ऑल रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री विद इफेक्ट फ्रॉम द 1st of July दिस ईयर। With coming into force of the VBG Ramji Act, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act or MGNREGA stands repealed from the same date. This marks a historic transition in India's rural development framework and ushers in a new era of integrated, future-ready and productivity-oriented rural transformation aligned with the national vision of Viksit Bharat at 2047. The commencement of the act marks a historic transition from the earlier framework of Mahatma Gandhi NREGA towards a modern rural development architecture that combines livelihood security, durable asset creation, technology-enabled governance, convergence-driven planning, and climate resilience.
0: बिल्कुल सायरा, और ये अधिनियम हर वित्तीय वर्ष में

0: ने हर उस ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के वेतन रोजगार की कानूनी गारंटी देता है, जिसके वयस्क सदस्य बिना किसी खास हुनर वाले शारीरिक काम को करने के लिए अपनी मर्जी से आगे आते हैं। इस बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण परिवारों की आमदनी, आजीविका की सुरक्षा, गांव के स्तर पर बुनियादी ढांचे के निर्माण और टिकाऊ ग्रामीण विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही इसका मकसद एक ऐसा टिकाऊ और उत्पादक ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना है जो जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, ग्रामीण आजीविका, स्थानीय आर्थिक विकास और जलवायु से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने की क्षमता को मजबूत करे। समय के साथ बढ़े हुए सामाजिक सुरक्षा कवच, बेहतर भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी, ज्यादा वित्तीय समावेशन और आजीविका के साधनों में विविधता के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था में काफी बदलाव आया है और इन बदलावों को देखते हुए ही मौजूदा ग्रामीण रोजगार ढांचे की आज की जरूरतों और उम्मीदों के साथ साथ विकसित भारत एट 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ढालने के लिए उसमें जरूरी सुधार करने की जरूरत है।
1: That's right, Jaya. And in furtherance of this objective, it is proposed to strengthen the livelihood guarantee framework by enhancing the statutory employment guarantee from 100 days to 125 days in a financial year. The enhanced guarantee is intended to support the accelerated pace of rural development, provide greater income security, and empower rural households through expanded employment opportunities. Accordingly, it has been enacted, it has enacted a new legislation titled the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen, or VBG Ramji Act, to establish a future-ready rural development framework that integrates livelihood security with productivity and asset creation, livelihood guarantee and workers security as well.
0: बिल्कुल। और अगर हम इस अधिनियम की विशेषता की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसमें विशेष बात यह है कि इसके तहत सभी ग्रामीण परिवारों के लिए हर वित्तीय वर्ष में वैधानिक रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है और इस बढ़ी हुई गारंटी का उद्देश्य यही है कि आजीविका सुरक्षा को मजबूत किया जाए, आय में स्थिरता लाया जाए, ग्रामीण उपभोग को बढ़ावा दिया जाए और कमजोर परिवारों को अधिक आर्थिक मजबूती प्रदान की जाए। इस रूपरेखा को रोजगार भी सम्मान भी यानी कि सम्मान के साथ रोजगार के सिद्धांत पर तैयार किया गया है और इसका उद्देश्य केवल मजदूरी वाला रोजगार देना ही नहीं है बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि ग्रामीण श्रमिक ऐसे टिकाऊ और उत्पादक सार्वजनिक संपत्तियों के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग ले जो गाँव के दीर्घकालिक विकास में योगदान देती हो।
1: एंड जय, इफ आई मे आस्क यू अ क्वेश्चन, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मजदूर या किसान के बारे में आप सोचिए तो नेचुरली किसका ख्याल आता है, किसी मेल का?
0: ऑब्वियसली।
1: बट अगर आप थोड़ा सा गहराई से सोचें विद अगर इंस्टेंटली ना रिस्पॉन्ड करें तो आप देखेंगी या ऑब्जर्व करेंगी दैट कितनी सारे किसान और मजदूर एक्चुअली महिलाएं होती हैं
0: जी।
1: बाहर भी इफ यू सम कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन फॉर एग्जाम्पल एंड इफ यू जस्ट पॉज योर कार और व्हीकल एंड जस्ट ऑब्जर्व द कंस्ट्रक्शन साइट यू वुड सी दैट समटाइम्स ऑलमोस्ट हाफ एंड समटाइम्स इवन मोर वर्क फोर्स कंप्राइजेस ऑफ फीमेल वर्कर्स। सो इन ऑर्डर to promote the participation of women workers, a key provision has been incorporated in the act. At work sites where five or more children below the age of five are present, one woman worker will be appointed to take care of the children and will be paid at the prescribed wage rate. So this is very important because obviously at construction sites, for example, you cannot have creches, right? But it's a very novel idea that among those female workers, one woman would be taking care of the children and she would be counted as, she would be given the daily wage according to that, right? So this is a very, very good initiative, I would say, which would enhance women participation in the workforce, isn't it?
0: बिल्कुल बिल्कुल सायरा। और हमने कई बार देखा भी है कि किस तरह से महिलाएं अपने कंधों पे, पीठ पे बच्चों को लेकर काम कर रही होती
1: yes.
0: हैं, ईंटें ढो रही होती है। तो ये चीजें देख करके ही सरकार ने फिर इसके अलावा ये भी सुनिश्चित किया है कि श्रमिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दुर्घटना की स्थिति में मुफ्त चिकित्सा उपचार का अधिकार भी प्रदान किया जाए और यदि अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है तो उनके रहने, उपचार, दवाओं और मजदूरी दर के आधे के बराबर दैनिक भत्ते की व्यवस्था भी की जाए। मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामलों में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के प्रावधानों के अनुसार अनुग्रह सहायता दे होगी और इस प्रकार ये अधिनियम कार्यस्थल पर सुरक्षा, संवेदनशीलता और सामाजिक सुरक्षा का एक व्यापक ढांचा सुनिश्चित करता है।
1: So this transition from Mahatma Gandhi

0: उस समय मजदूर इस एक्ट के प्रावधानों के तहत मुआवजा भी ले सकते हैं। एक्ट में आगे यह भी प्रावधान है कि जहां मस्टर रोल बंद होने की तारीख से 15 दिनों के अंदर मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है, वहां मजदूरी चाहने वाले लोग मस्टर रोल बंद होने के 16वें दिन के बाद हर दिन की देरी के लिए बकाया मजदूरी का 0.05% की दर से मुआवजा पाने के हकदार होंगे। और इन प्रावधानों का मकसद मजदूरी वितरण में जवाबदेही को मजबूत करना और मजदूरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है।
1: That's right. Well, under the Viksit Bharat Jiranji Act 2025, the scope of work has been significantly expanded and aligned with the goal of Viksit Bharat at 2047. Work is structured into four major thematic areas: water security, core rural infrastructure, livelihood-related infrastructure, and works to mitigate extreme weather events. This enables a more outcome-oriented and cohesive approach in implementation.
0: जी, और कामों को जो विषय आधारित प्राथमिकता देने की व्यवस्था इसलिए है क्योंकि यह सुनिश्चित हो सके कि रोजगार का हर दिन टिकाऊ और उत्पादक ग्रामीण बुनियादी ढांचा बनाने में योगदान दे। जैसा कि हमने शुरुआत में भी बात की थी कि सभी ग्रामीणों को इस तरह का काम दिया जाएगा जिससे पूरे गाँव का विकास सुनिश्चित हो सके। तो जल सुरक्षा से जुड़े कामों में सिंचाई सहायता, भूजल पुनर्भरण संरचनाएं, जल संभर विकास, जल निकायों द्वारा जीर्णोद्धार, वकीकरण और वर्षा जल संचय संरचनाएं शामिल होंगी और इनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय तक जल सुरक्षा को मजबूत बनाना होगा। मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे के कामों में ग्रामीण सड़कें, सार्वजनिक भवन, स्कूली बुनियादी ढांचा, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वच्छ प्रणालियां, नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ा बुनियादी ढांचा, आवास से संबंधित काम और विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले काम शामिल होंगे। इससे बुनियादी सुविधाओं और सार्वजनिक सेवाओं तक लोगों की पहुंच बेहतर होगी।
1: That's right, Jaya. And to wrap up, let's give a gist or that livelihood-related infrastructure shall include rural markets, storage infrastructure, food processing units, cold storage facilities, livestock infrastructure, fisheries infrastructure, compost units and skill development centers. These interventions are expected to strengthen local livelihoods, diversify rural income and support agro-based economic activities. Through this thematic approach, rural employment is directly linked with productive asset creation, local economic development and resilience building. These works will ensure employment generation, value addition, expansion of agro-based industries and improved service availability, thereby bringing stability to the rural economy and diversifying income sources.
0: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या कुछ खास है।
1: Well, we are starting our journey of Parikrama from the state of Goa. Well, on the occasion of International Nurses Day, Goa's Raksha Parvatkar has been honored with the National Florence Nightingale Award 2026 by President Draupadi Murmu for her outstanding contribution to the nursing profession. More details from our correspondent.
2: The award was presented during a ceremony at Rashtrapati Bhavan in New Delhi. Raksha Parvatkar, who serves as ward in charge and ward sister at Goa Medical College and Hospital, has completed 39 years of dedicated service in nursing. The National Florence Nightingale Award includes a certificate, medal and a cash prize of 1 lakh rupees. It recognizes exceptional service and commitment in healthcare. Speaking at the event, President Draupadi Murmu praised nurses and healthcare workers for their compassion, dedication and service to nation, especially during challenging situations. Union Health Minister Jagat Prakash Nadda said this year's International Nurses Day theme, Our Nurses, Our Future, Empower Nurses, Save Lives, highlights the vital role nurses play in strengthening the country's healthcare system and national progress. For Parikrama, Nikhil Upadhyay for Akashwadi News, Padji.
0: और श्रोताओं, अब आपको लिए चलते हैं झारखंड के पलामू जिले के घने जंगलों और ऐतिहासिक किलों के बीच, जहां की एक कहानी ने सात समंदर पार फ्रांस के कांस फिल्म फेस्टिवल तक का सफर तय किया है। फिल्म पेड़ चलता है ने न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है।
3: पलामू टाइगर रिजर्व की वादियों
4: Under the Bharat Innovates 2026 initiative, Union
3: पलामू टाइगर रिजर्व की वादियों और बेतला के ग्रामीण इलाकों की मिट्टी से उपजी एक फिल्म अब विश्व सिनेमा के सबसे बड़े मंच कांस के मार्शे ड्यू फिल्म फेस्टिवल

0: जयपुर में 14 जून को प्रदर्शित होने जा रही है। निर्देशक देवादित्य बंदोपाध्याय की ये फिल्म जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण संरक्षण की एक अनूठी थ्रिलर है। वे कहते हैं कि झारखंड की मिट्टी से उपजी इस फिल्म का विश्व सिनेमा के सबसे बड़े मंच पर पहुंचना राज्य के लिए गौरव की बात है।
1: हमारी फिल्म पेड़ चलता है, इस फिल्म की प्रीमियर होने जा रही है मार्शेड्यू कांस फिल्म फेस्टिवल में। इसके लिए हम लोग बहुत खुश है। सब लोग इस जर्नी को तय करने में, जो लोग हमारे साथी थे, पूरा टीम, एक्टर्स से लेके टेक्नीशियन तक, और जो भी हमारे झारखंड के थिएटर ग्रुप के साथी है, जिन लोगों का बहुत बहुत मेहनत काम आया, झारखंड के हर एक अधिकारी लोगों से लेके साधारण गांव के लोगों तक, सबका मैं बहुत अंतर से आभारी हूँ। इस फिल्म को बनाने में उनका बहुत मदद मिला।
0: फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्वाभाविकता है। इसमें पलामू टाइगर रिजर्व, शाहपुर किला और गारू के ग्रामीण परिवेश को इतनी खूबसूरती से पिरोया गया है कि दर्शक प्रकृति से जुड़ाव महसूस करते हैं। इस प्रोजेक्ट से जुड़े स्थानीय लेखक और टीम सदस्य साकेत चटर्जी इस यात्रा को ऐतिहासिक मानते हैं।
2: फिल्म पेड़ चलता है का सिलेक्शन कांस फिल्म महोत्सव के ऑनलाइन कैटेगरी में प्रीमियर की जाएगी उसकी, और संध्या 7 बजे 14 जून को इसे दिखाया जाएगा। ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। खास करके हम लोग जो पलामू के कलाकार इस फिल्म से जुड़े हैं, वो तो सपना में नहीं सोचे थे कभी कि ऐसा भी संभव है। और आप सब से अनुरोध होगा कि ये फिल्म को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। अब कैसे ये आगे आपके सामने आएगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल हम कांस में डूबे हुए हैं। इसकी जो एक महक आ रही है अभी तक वो फिल्म महोत्सव की, वो बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा है हमारे लिए। बहुत खुश हैं हम, और आगे और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे।
0: वीरेंद्र सक्सेना और प्रमोद पाठक जैसे अनुभवी कलाकारों के साथ साथ स्थानीय प्रतिभाओं से सजी ये 100 मिनट की फिल्म पर्यावरण और इंसान के अटूट रिश्ते को दर्शाती है। निश्चित रूप से फिल्म पेड़ चलता है कि ये सफलता झारखंड के उभरते फिल्मकारों के लिए प्रेरणा का एक नया स्रोत बनेगी। रांची के समाचार कक्ष से कुंदन वर्मा के साथ परिक्रमा के लिए मैं महविश रहमान।
3: एंड नाउ फ्रॉम झारखंड वी गो टू Mumbai. Well, we recently observed National Technology Day and celebrated the power of innovation, scientific excellence and technology for inclusive and sustainable development, underscoring the significance of saving and nurturing the environment. As we move rapidly towards development, IIT Bombay has come up with a one-of-its-kind technology to capture carbon and convert it into useful chemicals. Very innovative. Let's hear more from our Mumbai correspondent.
4: Under the Bharat Innovates 2026 initiative, Union Minister of Education Dharmendra Pradhan recently inaugurated the Integrated Carbon Capture and Utilization Plant at IIT Bombay. It is India's first end-to-end carbon capture, utilization and storage field laboratory pilot at IIT Bombay. Explaining these complex sounding concepts to us in the simplest words, we have with us Professor Dr. Vikram Vishal from the Department of Earth Sciences at IIT Bombay.
5: It's indeed an interesting project that we have been working for last several years, which captures carbon dioxide either from air to the high concentration sources from the industry's effluent gases. Essentially, we need to cut down our carbon dioxide footprint and carbon dioxide emissions that happen from the country. So what we have done is an innovative technology which captures CO2 from such sources of emissions and converts it into useful chemical product, largely calcium carbonate, sodium soda ash and baking soda, which can also have a valuable demand in the market. So there is a waste to wealth kind of an opportunity that comes with this facility. So this is a sort of a pilot demonstration facility on the IIT Bombay campus to demonstrate how CO2 can be captured from different sources and converted into useful chemicals.
4: The event also witnessed the commencement of geological CO2 sequestration scientific drilling. Let us dive deeper into this technology with Dr. Vikram Vishal.
5: It's a very interesting concept that when we capture huge amounts of carbon dioxide, we cannot convert into product that is still marketable at the scale of emission that is happening. So then we look at putting the carbon dioxide where it came from, the sources, the fossil fuels under the ground. So we capture the carbon dioxide and pump it into the subsurface formations, which is called as geological carbon sequestration. So we are drilling India's first well on the IIT Bombay campus that will be injecting carbon dioxide, essentially for monitoring the fate of injected carbon dioxide. So we know where it migrates, how it moves. So we can build modern technologies and techniques for monitoring the fate of injected carbon dioxide on a field laboratory basis. So this will give confidence to the stakeholders in India that we can capture carbon dioxide and we can store in geological formations in the subsurface in the country.
4: In India, any innovation has to be complemented by economic viability. We often tend to pit technology and the environment against each other. But examples like these show us that the two can be brought together.

0: together, and if done with the right spirit, they indeed go hand in hand towards a sustainable future. For Parikrama, this is Ankita Apte from Mumbai.
1: And now we go up north to Leh. Well, the sacred relics of Lord Tathagat Buddha have been in Leh since the 29th of last month. People from all regions of Indonesia have visited the relics in large numbers, offering their reverence. Several programs were organized at various locations. Let's hear a report.
2: तथागत भगवान बुद्ध की पवित्र अवशेष को लद्दाख के नए जिले संस्कार में दो दिन के लिए लोगों के दर्शन करवाने के बाद आज सुबह अवशेष को वापस ले लाया गया। इन्हें धर्मा सेंटर में रखा गया है, जहां हजारों भिक्षु भिक्षुनियां विशेष प्रार्थना के लिए एकत्रित हुए हैं। ये वार्षिक मुल्लम छिन्मो का भी हिस्सा है। यहाँ पाँच दिन का आयोजन होता है, जिसमें विश्व शांति के लिए प्रार्थनाएं की जाती है। लद्दाख के सभी क्षेत्र के लोगों ने बड़े श्रद्धा और आस्था के साथ अवशेष की दर्शन की है। भगवान बुद्ध की अवशेष जो कि लद्दाख में अभी है, इसी दौरान अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें योग ध्यान स्वस्थ शिविर अंतर धार्मिक संवाद और आध्यात्मिक आयोजन शामिल है। हर शाम भारत भर के और स्थानीय कलाकारों द्वारा संस्कृति कार्यक्रम पेश किए जा रहे है। भारत और देश से कई नेता भी तथागत भगवान बुद्ध की अवशेष के दर्शन के लिए ले आए थे। इन पवित्र अवशेषों के दर्शन का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया था। 15 मई को अवशेष को वापस दिल्ली ले जाया जाएगा। परिक्रमा के लिए ले से मैं दस्कित डोलवा।
3: अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। तो शुरुआत करते हैं आईपीएल क्रिकेट से, जहां आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है।
1: And in Finland Open Badminton, India begins with a positive start, with PV Sindhu and Kidambi Srikanth advancing to the pre-quarterfinals in Bangkok. Two-time Olympic medalist PV Sindhu defeated Chinese Taipei's Tang Xiao Tang in straight games in just 33 minutes. The six-seeded Indian will next face Denmark's Emily Schultz in the round of 16. Former World Championship silver medalist Kidambi Srikanth also registered a convincing victory. Srikanth beat Singapore's Lo Kian Yu in a rematch of the 2021 World Championships final. The former Thailand Open champion will now take on Chinese Taipei's Su Li Yang in the next round. And if we talk about some business news, well, benchmark domestic equity indices rose marginally today after a volatile trading session, snapping a four-day losing streak. The Sensex advanced 50 points to close at 74,609, while Nifty added 33 points to settle at 23,413.
3: अब हम याद करेंगे उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
4: In today's episode, we remember the freedom fighter and former president of India, Fakhruddin Ali Ahmed, who was born on the 13th of May 1905 in New Delhi.
5: Fakhruddin Ali Ahmed was the son of an army doctor from Assam. Ahmed joined the Indian National Congress when he met Jawaharlal Nehru in 1925 and jumped into the freedom struggle. In 1942, he participated actively in the Quit India movement, for which he was arrested and sentenced to 3.5 years of imprisonment.
4: After independence, Fakhruddin Ali Ahmed was elected to the Rajya Sabha in 1952 and thereafter became Advocate General of the Government of Assam. He was also elected to the Assam Legislative Assembly for 2 terms. He was twice elected to Lok Sabha, first in 1967 and again in 1971. As a cabinet minister, he held diverse portfolios relating to food and agriculture, cooperation, education, industrial development and company laws.
5: Fakhruddin Ali Ahmed served as the 5th President of India from 1974 till his death on the 11th of February 1977, when he collapsed in his office while preparing to attend his daily namaz. All India Radio News pays tribute to the nationalist.
4: We also remember Gandhian freedom fighter V.R. Krishnan Eruthachan, who died on the 13th of May 2004. A prolific writer in both

0: Malayalam and English, Krishnan was the founder general secretary of Cochin State Praja Mandalam, the political arm of the Congress Party in the erstwhile Cochin State before independence, and also the founder editor of the Dinabandhu newspaper. He converted the Congress Party into a truly mass-based party in his region. V.R. Krishnan Eluthachan was born in Avinisheri, Thrissur on the 25th of April 1909. He got inspired to join the freedom struggle after meeting Mahatma Gandhi in Thrissur in 1925 with the aim to end the sovereignty of Cochin King and to form a responsible government. Praja Mandalam was formed on the 9th of February 1941 with Eluthachan as founder general secretary. In January 1942, Praja Mandalam decided to conduct the first annual meeting at Irinjalakuda. Diwan A.F.W. Dixon banned it due to the resentment caused towards the king by the activities of Praja Mandalam.
1: हम याद कर रहे हैं भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी कार्यकर्ता, प्रतिष्ठित उर्दू कवि और पत्रकार रह चुके मौलाना हसरत मोहानी को आज उनकी पुण्यतिथि है। इतिहास में उनका योगदान और उनका व्यक्तित्व बेहद बेमिसाल रहा है। देश को झकझोर देने वाला सुप्रसिद्ध नारा मौलाना हसरत मोहानी ने ही लिखा था, इनकलाब जिंदाबाद, जिसे बाद में शहीद भक्त सिंह ने जन जन में लोकप्रिय बनाया, और गुलाम अली द्वारा गाई गई बेहद लोकप्रिय गजल चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है भी मूल रूप से हसरत मोहानी की ही लिखी हुई।

0: एक सच्चे सूफी संत थे जो इस्लाम के कट्टर अनुयायी होने के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के भी परम भक्त थे। वे हर साल मथुरा और वृंदावन जाते थे और उन्होंने कृष्ण की भक्ति में कई खूबसूरत कविताएं भी लिखी हैं, जिसका एक अंश है कि मथुरा की नगर है आशिकी का, दम भरती है आरजू इसी का, हर जर्रा इसर जमीने गोकुल, दारा है जमाले दिलबरी का। तो हजरत साहब कहते हैं कि मथुरा प्रेम और भक्ति का शहर है, गोकुल की धरती का हर एक कण आकर्षण से भरा है और कृष्ण की बांसुरी की हर धुन अमर जीवन का संदेश है।
1: We are also remembering Shukanto Bhattacharya today, a Bengali revolutionary poet known as Young Nazrul or Kishore Bidrohi Kavi, for his rebellious stance and opposition against the British Raj, the Empire of Japan, other Axis powers, and also the Second World War. While his poetry was not much studied during his career, he became one of the most popular poets of the 20th century and Bengali literature after his death.
2: Ranar chuteche. তাই ঝুমঝুম ঘণ্টা বাজছে রাতে, রানার চলেছে খবরের বোঝা হাতে, রানার চলেছে রানার, রাত্রির পথে পথে চলে কোনো নিষেধ জানে না মানার, দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছুটে রানার, কাজ নিয়েছে সে নতুন খবর আনার, রানার রানার জানা অজানার।

0: हम याद कर रहे हैं भारतीय अंग्रेजी साहित्य के सबसे महान और लोकप्रिय उपन्यासकारों में से एक आर के नारायण को। उनका पूरा नाम रासीपुरम कृष्णास्वामी अय्यर नारायण स्वामी है। मालगुडी डेज उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानियों का संग्रह है, जिस पर दूरदर्शन का बेहद लोकप्रिय धारावाहिक बना।
1: एंड जैसे ही ये ट्यून सुनते हैं ना, वी ऑल आर ट्रांसपोर्टेड बैक, यू कैन से, इन अ सी ऑफ नॉस्टैल्जिया टू दोज लवली डेज व्हेन स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स यूज्ड टू रिगेल अस विद देयर स्टोरीज।

0: श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए जया और सायरा को परिक्रमा का ये अंक यहीं समाप्त करने का। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ग्रेड ए के धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपये प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपये प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपये प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपये प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: तो फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इम्पोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने 144 विधायकों के समर्थन के साथ विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाली AIADMK ने सरकार का समर्थन किया। एडापड्डी के पन्नी सामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना DMK के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। भाजपा विधायक और PMK समेत 5 विधायक तटस्थ रहे। DMK और अन्य गठबंधन सहयोगी दल मतदान में शामिल नहीं हुए। पुदुचेरी में ऑल इंडिया NR कांग्रेस नेता N रंगास्वामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया NR कांग्रेस के मल्लाड़ी कृष्णा राव और भाजपा के N नमसी वयम ने भी मंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की यात्राओं के दौरान लागू की गई। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने के प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देशभर के पेंशनभोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर ही निर्णायक समाधान प्रदान करना है। महाराष्ट्र में पुणे पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में एक महिला को हिरासत में लिया है। बेबवेवाड़ी इलाके से गिरफ्तार इस महिला को प्रारंभिक पूछताछ के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंप दिया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस वर्ष कुल 85.20% छात्र उत्तीर्ण हुए। छात्राओं का प्रतिशत 88.86 और छात्रों का प्रतिशत 82.13 है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ। निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 30,413 पर बंद हुआ। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु, मालविका बंसोड, देविका सिहाद, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इधर IPL क्रिकेट में रायपुर में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बेंगलोर जीत दर्ज कर

0: Decision has been taken in the wake of airspace curbs and high jet fuel prices. In IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru will take on Kolkata Knight Riders in Raipur this evening. The match will begin at 7:30 p.m. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रेस चैनल है। शाम के 5:10 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी।

0: कार्यक्रम लोकरंजनी सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। और मैं हूं आज आपके साथ प्रीति कमल,
1: और मैं हूं लोकेंद्र वर्मा।
0: और कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। और आज कार्यक्रम में
1: लोकगीत होंगे और लोक संगीत भी होगा, साथ साथ तो मनोरंजन भी कराएंगे अपने भाइयों का।
0: जी, तो पहले शुरुआत करते हैं
1: पूनम चौधरी की आवाज में ये लोकगीत से।
0: आइए सुनते हैं ये लोकगीत।

0: प्रीति बहन,
1: जी।
0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे पूनम चौधरी की आवाज में ये लोकगीत।
1: और आइए अब आपको सुनवाते हैं बबीता चौधरी की आवाज में ये अगला लोकगीत।

0: प्रीति बहन,
1: जी।
0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे बबीता चौधरी की आवाज में ये लोकगीत।
1: और आइए अब आपको सुनवाते हैं कृष्ण कुमार की आवाज में ये अगला लोकगीत।
2: अरे मनवा तेरे किले पे कौ दिन चोर अचान।

0: प्रीति बहन, अभी
1: जी
0: हमारे श्रोता सुन रहे थे पूनम चौधरी की आवाज़ में ये लोकगीत। और इसी के साथ आज का हमारा लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी यहीं संपन्न होता है। सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार। इस
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार
0: तुषार
1: पराशर,
0: और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 5:30 होने को हैं। आइए सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: मैं हूं नवीन कुमार शर्मा और आप सुन रहे हैं खेल और खिलाड़ियों से जुड़ा आपका पसंदीदा कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। मेरे साथ हैं विदुषी वत्स।
3: नमस्कार श्रोताओं, खुशखबरी है गुजरात के गांधीनगर से, जहां ज्ञानेश्वरी यादव ने एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत को पदक दिलाया है और इस नारी शक्ति से पूरा देश गर्व में।
2: हाँ बिल्कुल विदुषी, लगातार दूसरे दिन यहाँ भारत ने पदक जीता है। कल कोमल ने जिताया था और आज ज्ञानेश्वरी ने ये कमाल करके दिखाया है।
3: जी बिल्कुल, जी बिल्कुल।
2: तो आज जिन खेलों पर चर्चा करेंगे उसके बारे में हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे आप?
3: तो हम वेट लिफ्टिंग के चैंपियनशिप के बारे में तो बात करेंगे ही, जैसा कि आप जान चुके हैं। हम बात करेंगे क्रिकेट के बारे में भी, जहां बात होगी आईपीएल की। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराकर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी जगह बना ली है। वहीं आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप को है सिर्फ 30 दिन शेष। क्रिकेट से चलेंगे थाईलैंड ओपन बैडमिंटन की तरफ। बात करी जाएगी एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 अंडर 17 चैंपियनशिप की, जहां अंडर 17 में लक्ष्य फोगाट एकमात्र भारतीय फाइनलिस्ट के रूप में उभरे हैं।
2: हाँ बिल्कुल विदुषी, बात हॉकी की भी होगी, जहां भारतीय महिला हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। ये दौरा 26 मई से 30 मई तक होगा, जहां 4 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। उसके बाद न्यूजीलैंड में नेशंस कप भी होना है और वहां ट्रेनिंग और मैच का कंपटीशन का ये दौरा रहेगा और काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। बात ईस्ट बंगाल की होगी, जहाँ जिसने दूसरी बार इंडियन सुपर लीग का खिताब अपने नाम किया है। इसके अलावा दिल्ली प्रीमियर लीग पर भी चर्चा होगी, जहां रॉयल रेंजर्स ने दिल्ली एफसी को 1-0 से हरा दिया है।

गुजरात के गांधीनगर में चल रही एशियाई भारोत्तोलन में भारत ने लगातार दूसरे दिन पदक अपने नाम कर लिया। ज्ञानेश्वरी ने 53 किलो भार वर्ग में पदक अपने नाम किया। उन्होंने स्नेच में 88 किलोग्राम वजन उठाया और दूसरे स्थान पर रही यानी कि रजत पदक अपने नाम किया। यह उनका व्यक्तिगत श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। क्लीन एंड जर्क में 106 के श्रेष्ठ प्रयास के साथ कुल 194 के प्रदर्शन के साथ वह ओवरऑल कांस्य पदक अपने नाम करने में सफल रही। तो दो पदक ज्ञानेश्वरी ने भारत की झोली में डाल दिए। यह प्रदर्शन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय मानक में भी बेहतर प्रदर्शन किया है। इसके अलावा अगर आज के अन्य प्रदर्शन की बात करें तो भारत के ओर से राजा मुथु पांडी भी 65 भार वर्ग में उतरे थे। स्नेच में उन्होंने 126 का वजन उठाया था और हालांकि दूसरा प्रयास वो असफल हो गए थे 129 वजन उठाते समय, लेकिन तीसरे प्रयास में उन्होंने 129 किलो भार वजन उठा दिया था, लेकिन क्लीन एंड जर्क में शायद वो उतना बेहतर नहीं कर पाए और 164 के अपने श्रेष्ठ प्रयास से 293 अंक ही ले पाए। और जहां तक इसके पोडियम फिनिश की बात है 65 भार वर्ग के पुरुष के, तो यहाँ चीन ने स्वर्ण पदक जीता, कोरिया ने रजत, जबकि चीन के खाते में ही कांस्य पदक गया, यानी तीन में से दो पदक चीन के खाते में गए। और चीन के हे यूजी जिन्होंने गोल्ड जीता, क्लीन एंड जर्क में 329 के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाने में सफल रहे और उनका श्रेष्ठ प्रयास क्लीन एंड जर्क में 183 किलो रहा। बात तक बात राजा मुथुमांडी पार्टी की है, वो सातवें स्थान पर रहे 65 भार वर्ग में। तो बहरहाल शानदार प्रदर्शन किया भारत की ओर से ज्ञानेश्वरी ने। और कल जैसा हमने जिक्र किया था कि कोमल कहार ने 48 भार वर्ग में 177 किलो वजन उठाकर पदक दिलाया था। तो दो दिन में दो पदक भारत को मिल चुके हैं और आज जो मुकाबले खेले जाने हैं उनमें चारूपासी 65 भार वर्ग में, संजना 77 में, माई बार बाटिना देवी प्लस 86 यानी 86 भार वर्ग से अधिक, वेदाव्रत भराली 79 में, पर्व चौधरी 94, टीम आदवान 71,

0: अजय बाबू 79 और अभिषेक निपाने 88 किलोग्राम भार वर्ग में उतरेंगे और उनसे भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। जहां तक बात 65 भार वर्ग में महिला वर्ग की है, वहां बिंदिया रानी पदक की एक बड़ी उम्मीद है। महिलाओं में 53 भार वर्ग की बात करें तो ज्ञानेश्वरी यादव ने स्नेश में 3 प्रयासों में 257 किलो वजन उठाया। पहले प्रयास में उन्होंने 83 किलो, दूसरे में 86 और तीसरे में 88 किलो वजन उठाने में वह सफल रहीं। स्नेच में वह दूसरे स्थान पर थी और जिसमें 88 किलो का उन्होंने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। चीन की झाओ जिनलान ने स्नेच में 95 का श्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सफल रही। पहले प्रयास में 90, दूसरे में 93 किलो वजन उठाया और तीसरे में 95 की लिफ्ट उन्होंने की। क्लीन जर्क में चीन की झाओ ने 112, 117 और 121 वजन उठाया और पहला स्थान प्राप्त किया। वियतनाम की भी हुई कांस्य पदक जीतने में सफल रही। तो ये शानदार प्रदर्शन रहा, भारत को 2 दिन में 2 पदक मिल चुके हैं और वियतनाम की एच हुई जिनका श्रेष्ठ प्रयास करने में सफल रही अपना, लेकिन वो बेहतर उससे नहीं कर पाई, पोडियम में अपनी बेहतर पोजीशन नहीं हासिल कर पाई। दरअसल कोरिया की गियोंगकॉन्ग भी बड़ी दावेदार थी और लेकिन पहले प्रयास में 93 किलो को प्रयास में वे इंजर्ड हो गई थी और फिर दर्द के बीच भी हालांकि उन्होंने अपने 2 अंतिम प्रयास किए लेकिन वजन उठाने में विफल रही और 9 लिफ्ट के साथ उनका प्रदर्शन काउंट नहीं हुआ। भारत की कोयल बार तीसरे प्रयास में 84 किलोग्राम वजन उठाने में सफल रही लेकिन उनका एक प्रयास विफल हो गया था, ऐसे में उनकी पदक की दावेदारी पर असर पड़ा। अभी क्लीन एंड जर्क में और जो स्नैच में अन्य पुरुष और महिला वर्ग में भारत की कई खिलाड़ी जो हैं वो पदक की दावेदारी में हैं। देखना है कैसा प्रदर्शन रहा, लेकिन बहरहाल जो अभी तक जो 2 पदक आए हैं भारत की, लगातार दूसरे दिन हमने पदक लिया है। इस पर हमने बात की रेलवे के चीफ कोच वेटलिफ्टिंग के सुनील से और क्या कहा उन्होंने, आइए जानते हैं भारत के इस प्रदर्शन पर लगातार 2 दिन 2 मेडल।
1: परफॉर्मेंस अच्छी रही, स्नैच स्नैच तो उसने इम्प्रूवमेंट किया, स्नैच में तो आज उसने अपना बेस्ट किया है, लेकिन वो क्लीन जर्क में अपना टोटल क्लीन जर्क अच्छा नहीं कर पाई। आगे अच्छा करेगी वो, हमें उम्मीद है कि वो आगे आगे क्लीन जर्क भी अच्छा करेगी, जैसे स्नैच आज अच्छी की आगे क्लीन जर्क भी अच्छा करेगी, पूरी उम्मीद है हमें उस लड़की से।
2: तो सर 29 देश भाग ले रहे हैं,
1: जी
2: तो एक कड़ा कंपटीशन है, उसके बीच में ये प्रदर्शन आप किस तरह देखते हैं सर?
1: नहीं बहुत एशिया, हमारा वेट लिफ्टिंग का एशिया मेडल इसका मतलब वर्ल्ड में मेडल ओलंपिक के नजदीक, क्योंकि एशिया जितना भी गोल्फ कंट्री होती है वो सारा वेट लिफ्टिंग में बहुत स्ट्रांग है, और अब हमारा अगर यहाँ एशिया एशिया में 2 हमारे मेडल आए हैं तो इसका मतलब हमारी परफॉर्मेंस अप है और हम जो ना जब कॉमनवेल्थ में इस बार बहुत मेडल लेंगे, ओलंपिक के नजदीक रहेंगे और भी ज्यादा बच्चे हमारे।
2: हमें तैयारियों को भी अपने परख करने का मौका मिलता है, जो नए जो वेट लिफ्टर हैं उनके पास भी अपने प्रतिभा दिखाने का अवसर है
1: बहुत ज्यादा, बिल्कुल है। देखो अब अपने अपने अगर अपने देश में कमीशन हो रहा है तो यहाँ बहुत सारे बच्चे देख के इससे प्रेरणा लेंगे कि हम भी वेट लिफ्टर लिफ्टिंग करें, इतने इनको इतने प्लेयरों को देख के बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा, जो पुराने बच्चे भी हैं उनको भी उनके उनको देख के कुछ सीखने का मौका मिलेगा, टेक्निक भी और उत्साह भी जोश भी जो उनको दे उनका है वो अपने अपने अंदर ही, हमारे बच्चे भी उसको लेके अच्छा करेंगे। तो ये एशिया एशिया कमीशन हमारा भी डिप्टिंग बहुत टफ और बड़ा कमीशन होता है।
2: तो अगर महिला वर्ग की बात करें तो बिंदिया रानी भी हैं जो पदक की दावेदार हैं और उनसे भी उम्मीद की जा सकती है कि...
1: बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है, बिंदिया रानी भी बिंदिया रानी से पूरी उम्मीद है, अभी 6 बजे बिंदिया रानी का कमीशन स्टार्ट होगा।
2: तो आपको लगता है कि यहाँ एक थोड़ा घरेलू एडवांटेज भी है, यहाँ चीन के जो वेट लिफ्टर हैं उनका प्रदर्शन भी अच्छा और एक कड़ी चुनौती मिल रही है?
1: देखो मैंने अब आपको बताया ना, वेट लिफ्टर का एशिया बहुत बड़ा कमीशन है, बहुत बड़ी कड़ो चुनौती है, एक एक किलो से इक्वल इक्वल में और एक एक किलो से मेडल जाते हैं, तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी चुनौती है वेट लिफ्टिंग के, इंडियन वेट लिफ्टर के लिए बहुत बड़ी चुनौती है एशिया में मेडल लेना। और जो हमारे 2 बच्चों ने लिया है अब तक, आज तक हमारे 2 बच्चों ने लिया है जो मेडल, वो उनका बहुत बहुत ही नया एक हमें देखने को मिला है कि हमारे एशियन चैंपियनशिप में मेडल आ रहे हैं
2: अभी। और

वो बेहतर करने में सफल रहेंगे। जी हाँ बिल्कुल, वेटलिफ्टिंग से चलते हैं आप बैडमिंटन के कोर्ट की ओर विदुषी, और यहाँ भी भारत का प्रदर्शन जगमगा रहा है और पीवी सिंधु भारत की स्टार शटलर, उन्होंने जीत से शुरुआत की है और उसके अलावा किदांबी श्रीकांत भी जीत गए हैं। महिला वर्ग की अगर बात करें तो मालविका बंसोड़ ने अभी जीत हासिल की है, कनाडा की वाई जांग को हराया है, 3 गेमों का कड़ा मुकाबला चला और वहां जीतने में सफल रही। और इसके अलावा थाईलैंड मास्टर की विजेता देविका सिहाग ने भी जीत से शुरुआत की है। तो ये टूर्नामेंट बैंकॉक में चल रहा है। सिंधु ने चीनी ताइपे की तिंग तोंग सीयू तोंग को 21-9 21-12 से मात दी, सीधे गेम में एक शानदार जीत हासिल की उन्होंने। इसके अलावा दुनिया के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी श्रीकांत का नाम किदांबी ने सिंगापुर के 8वीं वरीयता प्राप्त लो किन यू को 21-14 21-15 से पराजित किया। श्रीकांत का सामना अब चीनी ताइपे के सू ली यांग से होगा। वहीं पुरुष एकल के अन्य मुकाबलों की बात करें तो भारत के आयुष शेट्टी को जापान के 6वीं वरीयता प्राप्त कोडाई नारोओका के खिलाफ 13-21 21-17 4-21 से कड़े मुकाबले में पराजय झेलनी पड़ी, जबकि तरुण मन्नेपल्ली जापान के ही कोकी वातनाबे से 12-21 16-21 से हार गए। महिला एकल में उन्नति हुड्डा और अनमोल खरब को भी हार का सामना करना पड़ा। उन्नति हुड्डा को पोर्नपावी चोचुवांग ने, जो कि दुनिया की 8वें नंबर की खिलाड़ी हैं, उन्हें उन्नति हुड्डा को 21-11 17-21 16-21 से हराया। और अनमोल खरब को चीन की चेन यूफेई ने 21-19 13-21 18-21 से मात दी। लेकिन ये तो थे शुरुआत के मुकाबले। उसके बाद अब जो शाम का सत्र है वहाँ भारतीय शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। लक्ष्य सेन ने जीत हासिल की है, उन्होंने सिंगापुर को जिया हैंग चेन को 21-16 21-17 से पराजित किया है और अब प्री क्वार्टर में पहुंच गए हैं। जहां तक बात देविका सिहवाग की है, थाईलैंड मास्टर की विजेता देविका सिहवाग जीत से शुरुआत की है और थाईलैंड में टूर्नामेंट उन्हें खास रास आता है। और जो शुरुआत की है उन्होंने जापान की नातासुकी को 21-9 13-21 21-15 से हराया है और प्री क्वार्टर में प्रवेश कर लिया है। प्री क्वार्टर में अब उनके सामने थाईलैंड की खिलाड़ी होंगी। और जहां तक बात मालविका बंसोड़ की है, उन्होंने भी अच्छी शुरुआत की है, कनाडा की वाई जैंग को 13-21 26-24 और 21-13 से उन्होंने पराजित किया है। और अब जो मुकाबले खेले जाने हैं, यहाँ जहाँ भारतीय खेल प्रेमों की नज़र होगी वो ईशा रानी बरुआ का मुकाबला है, जो कि महिला एकल में चुनौती पेश कर रही हैं और उभरती हुई शटलर हैं। उनसे उम्मीद है कि वो जो सिंधु मालविका और देविका की जो जीत उन्होंने शुरुआत की है उस सिलसिले को और आगे बढ़ाएं।

0: विदुषी, क्यों ना अब बात महिला क्रिकेट की करें, क्योंकि महिला क्रिकेट के लिए भारतीय टीम कड़ी तैयारी कर रही है। वर्ल्ड कप बिल्कुल मुहाने पर है और उसके लिए तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण में चल रही हैं। क्या बताना चाहेंगी श्रोताओं को?
1: जी हाँ, बिल्कुल। महिला क्रिकेट के सबसे बड़े महासंग्राम के शुरू होने में अब सिर्फ 30 दिन शेष हैं। जी हाँ, आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 का 10वां संस्करण इस बार इंग्लैंड और वेल्स कर रहे हैं, जो हो रहा है 12 जून से 5 जुलाई तक। जैसे जैसे ये टूर्नामेंट करीब आ रहा है, दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बार का टूर्नामेंट कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है। पहली बार इसमें 12 टीमें हिस्सा लेंगी और कुल 33 मुकाबले खेले जाएंगे। इससे पहले संस्करणों में केवल 10 टीमें रही हैं, इस बार 12 होंगी। मौजूदा चैंपियन न्यूजीलैंड की वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम अपने खिताब का बचाव जरूर करने के लिए उतरेंगी, जबकि बाकी टीमें उन्हें चुनौती देने के लिए तैयार हैं। टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला 12 जून को बर्मिंगम में होने वाला है। इस मैच में मेजबान इंग्लैंड का सामना श्रीलंका की टीम से होगा। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें खास तौर पर रहेंगी 14 जून को होने वाले मैच में, जब इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने होंगी। सेमीफाइनल मुकाबले 30 जून और 2 जुलाई को होने वाले हैं द ओवल में, जबकि सेमीफाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में होगा। अब बात टूर्नामेंट की थोड़ी आगे प्रारूप की करें तो 12 टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है और हर ग्रुप में 6 टीमें होंगी। अब इसका महत्व ये है कि हर टीम अपने ग्रुप की बाकी सभी टीमों के खिलाफ मुकाबला खेलेगी। इसके बाद प्रति

0: एक ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, यानी ग्रुप चरण का हर मैच बेहद अहम होगा क्योंकि एक भी हार आगे की राह मुश्किल बना सकती है। भारत ग्रुप एक में है, जहां भारत के साथ हैं ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नीदरलैंड्स जैसी मजबूत टीमें। वहीं ग्रुप दो की बात करें, उसमें है इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड और स्कॉटलैंड भी। यहां हमारे पास एक डेब्यूटेंट भी है। इस बार नीदरलैंड्स वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम पहली बार टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। भारतीय टीम पर इस बार सबकी खास नजरें होंगी। हाल ही में जिस तरह भारतीय महिला टीम ने वनडे मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर पूरे देश में उत्साह की लहर दौड़ा दी है, उसी जोश, उसी आत्मविश्वास को अब T20 विश्व कप के मंच पर भी देखने की उम्मीद जारी है। कप्तान हरमनप्रीत कौर की टीम का लक्ष्य बिल्कुल साफ है, पहली बार महिला T20 विश्व कप जीतकर इतिहास रचना है। तो श्रोताओं, अब इंतजार बस 30 दिनों का है।
1: बिल्कुल विदुषी, क्रिकेट की बात को जारी रखते हैं और बात करते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच हुए पहले टेस्ट मैच की। और यहाँ बांग्लादेश ने पहली बार अपने घर में पाकिस्तान को टेस्ट मैच में पराजित कर दिया है। पांचवें और अंतिम दिन कल 104 रन से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पराजित किया। बांग्लादेश के 268 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान 163 रन पर सिमट गया। नाहिद राणा ने अपने कैरियर का श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 40 रन देकर 5 विकेट लिए। तस्कीन अहमद के खाते में 2 विकेट आए। इस जीत से बांग्लादेश को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में भी फायदा मिला है, क्योंकि टीम पाकिस्तान से ऊपर छठे स्थान पर आ गई है। पाकिस्तान 7वें पर है, भारतीय टीम 5वें स्थान पर है। बांग्लादेश का ये जो छठे स्थान पर पहुंची है, वो 8वें से छठे स्थान पर पहुंची है और उसका अंक प्रतिशत 16.67 से बढ़कर 44.44 हो गया है। पाकिस्तान की जहां तक बात है, वो 5वें से 7वें स्थान पर लुढ़क गई है। भारतीय टीम 5वें स्थान पर है और बांग्लादेश ने 3 मैच खेले हैं, 1 जीत, 1 हार और 1 ड्रॉ है उसके खाते में। पाकिस्तान के जो अब तक उन्होंने 3 मैच खेले हैं विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के चक्र में, 1 जीत और 2 हार उसको मिली हैं। भारत जो ने अभी तक इस चक्र में 9 मैच खेले हैं, 4 जीत हैं, 4 हार हैं और 1 ड्रॉ है। शीर्ष पर ऑस्ट्रेलिया है, जिसके 8 मैचों में 7 जीत हैं और 1 मैच उसने हारा है। न्यूजीलैंड 3 में से 2 जीत और 1 ड्रॉ के साथ दूसरे पायदान पर चल रहा है। अंतिम 9वें स्थान पर वेस्टइंडीज है, जिसने 8 में से अपने 7 टेस्ट मैच गंवाए हैं। बात हॉकी की करते हैं तो महिला हॉकी टीम, भारतीय जो टीम है उसका दौरा है 26 मई से 30 मई तक ऑस्ट्रेलिया का, और जहां 26, 27, 29 और 30 मई को मुकाबले खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड में दरअसल FIH नेशंस कप होना है और उससे पहले ये मैच तैयारियों के लिहाज से काफ़ी अहम है। साथ ही ये FIH प्रो लीग में फिर से प्रवेश पाने के लिए भी एक मौका है। पिछले साल भारतीय टीम रेलीगेट हो गई थी। भारतीय टीम यहाँ न केवल कंपटीशन खेलेगी बल्कि यहाँ ट्रेनिंग भी हासिल करेगी और दिग्गज कोच टाइका टेकिया, जो कि ड्रैग फ्लिकर के मास्टर रहे हैं, उनसे स्पेशल कोचिंग भी लेगी। और ये क्लिनिक जो ट्रेनिंग का है, ये पर्थ और ऑकलैंड में आयोजित किया जाएगा। विदुषी, क्यों ना बात हॉकी से फुटबॉल के मैदान की ओर चलें?
0: जी हाँ, बिल्कुल, भारतीय महिला फुटबॉल से आ रही है एक बड़ी खबर। इंडियन वुमेन्स लीग में जहां ईस्ट बंगाल FC ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया है। कोलकाता में खेले गए मुकाबले में ईस्ट बंगाल ने नीता फुटबॉल एकेडमी को 2-0 से हराकर 2 मैच बाकी रहते ही चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। मैच की शुरुआत से ही ईस्ट बंगाल ने दबदबा बनाए रखा। टीम को पहला गोल 25वें मिनट में मिला, जब सौम्या ने शानदार स्कूप शॉट लगाकर टीम को बढ़त दिलाई। इसके बाद 65वें मिनट में सौम्या ने एक और बेहतरीन गोल दागते हुए स्कोर 2-0 कर दिया और टीम की जीत लगभग तय कर दी। पूरे मुकाबले में ईस्ट बंगाल ने गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा, जबकि नीता फुटबॉल अकादमी प्रभावशाली वापसी नहीं कर सकी। तो जैसा कि जाहिर है, 2 गोल करने वाली सौम्या को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंक तालिका में ईस्ट बंगाल अब 33 अंकों के साथ शीर्ष पर है।
1: विदुषी, IPL के मुकाबले चल रहे हैं और यहाँ प्लेऑफ की रेस जो है वो बहुत काफी कुछ तय हो गया है, और आरसीबी जैसी टीम है उसका मुकाबला है आज केकेआर के साथ, वो भी है, उसका भी आज मुकाबला काफी रोमांचक होने की संभावना है। लेकिन कल जो मुकाबला हुआ वहां गुजरात टाइटंस का कैसा प्रदर्शन रहा?
0: जी हाँ, अगर बात करें कल हुए मैच की, तो कल था मैच नंबर 56 जिसमें गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की और इसी के साथ अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर कब्जा जमा लिया है। अहमदाबाद में खेले गए इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने हर विभाग में दमदार प्रदर्शन किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए, जबकि उस सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी टीम महज 86 रन पर 14.5 ओवर में सिमट गई। गुजरात की यह लगातार 5वीं जीत रही जिसने टीम को अंक तालिका में सबसे ऊपर पहुंचा दिया। बल्लेबाजी गुजरात की तरफ से सबसे अच्छी संभाली साई सुदर्शन ने, जिन्होंने 44 गेंदों में 61 रन बनाए, 5 चौके और 2 छक्के उसमें शामिल थे। उनका साथ दिया वॉशिंगटन सुंदर ने, जिन्होंने 33 गेंदों पर 53 रन बनाए, उनकी पारी में 7 चौके और 1 छक्का शामिल था। दोनों बल्लेबाजों के बीच चौथे विकेट के लिए 60 रन की अहम साझेदारी हुई जिसने गुजरात को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। इसी पर क्या प्रक्रिया रही गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल की, क्या प्रतिक्रिया रही हेड कोच की हसन राइजर्स हैदराबाद की, ये सब हम अभी आपको सुनाते हैं।
2: Yeah, definitely. Like you spoke on the toss, you know, teams batting first have won.
3: Worked out fine.
2: Yeah, worked out for us pretty nicely. But I think we bowled very well. You know, 170 on this kind of a wicket, we always knew it's going to be tricky. If we bowl well, we'll always be in the game. Yes, we spoke about, you know, if we get anywhere close to 160, 170, I think it's going to be, it won't be easy for them, especially with our bowling attack. So that was the chair in the middle. But also, I think the way Sai and Washi batted, you know, getting us close to 170. It looked difficult to reach there, but and also the way we bowled in the power play, we have been bowling pretty well in the power play. So kudos to both of our bowlers. Honestly, it's all about, you know, still being consistent, still trying to be as ruthless as we can. And you know, we play the kind of cricket, you know, we are not the kind of a team that play a particular style or brand of cricket. We want to be the team that, you know, sees the wicket, assesses the condition. If it's a batting first 240 wicket, go for it, you know. But it's also important to assess if the wicket is not that easy to get those 170, 180 runs. That's better than getting 140, 150.
1: गुजरात के साई किशोर ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा,
4: We felt the wicket was a little damp. It was seeming a lot. So the talk within the dressing room was that 170 is a par score. So it's a very good score if we bowl well in the power play. I think to get to 170, Nishant Sindhu batted with intent in the middle overs. Sai Sudarshan played very well. Washi finished it very well. To top it up, the fast bowlers bowled really well in the power play. So 170 in the end felt like a lot of runs. To be fair, the wicket was pretty even. It was seeming a lot even when SRH bowlers were bowling. So that is where I think batsmanship comes into play. I think Sai Sudarshan played a wonderful innings, even though he was not striking at a higher strike rate in this wicket. I think he took his percentage and played wonderful cricket.
1: Sunrisers Hyderabad ki Daniel Vittori ka manna tha ki,
5: obviously really good performance by GT. They put us under a lot of pressure with the ball, and we knew coming into this just how difficult that opening pair were, and they set it up so well. So whilst we're satisfied at the halfway mark, we knew coming up against their bowling lineup and the fact that they had 5 seamers plus Rashid was always going to be a challenge, and didn't get the start we wanted, and they were able to capitalise the whole way through, and their bowling was brilliant. You've gone through everything. Look, I think they're a formidable team, and I think they definitely have their own style, but I think they can adapt too. I think when they need to score the 220s, the 230s, there's absolutely no reason why they can't. So I think they play the conditions exceptionally well, and these conditions in particular where they're well suited, and I think mainly for us it's coming up against that bowling lineup, and they were very.
0: जी हाँ, ये आपने सुना कल के मैच के बारे में। अब बात कर लेते हैं आज के मैच के बारे में जो होने वाला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। आज ये मैच होने वाला है शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। अंक तालिका की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस समय 11 मैचों में से 14 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद है। हाल ही में मुंबई इंडियंस पर मिली 2 विकेट की रोमांचक जीत ने टीम का आत्मविश्वास और बढ़ाया है। अगर आज आरसीबी जीत दर्ज करती है तो वह एक बार फिर रैंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर सकती है और प्लेऑफ में टॉप टू में जगह बनाने की दिशा में कदम बढ़ा सकती है। वहीं दूसरी ओर

0: कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए यह मुकाबला बिल्कुल सर्वाइवल के लिए है। सीजन की खराब शुरुआत के बाद टीम ने लगातार 4 जीत दर्ज कर शानदार वापसी की है। फिलहाल केकेआर 9 अंकों के साथ 8वें स्थान पर है और प्लेऑफ की उम्मीदें बनाए रखने के लिए टीम को अपने बाकी सभी मुकाबले जीतने होंगे। अगर दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो अब तक दोनों के बीच बिल्कुल 36 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से केकेआर ने 20 मैच जीते हैं जबकि आरसीबी को 15 मुकाबलों में जीत मिली है और एक मुकाबला बेनतीजा रहा। यानी इतिहास कोलकाता के पक्ष में जरूर है लेकिन मौजूदा फॉर्म आरसीबी के साथ दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ आपको पॉइंट्स टेबल बता दे आईपीएल का, तो सबसे पहले स्थान पर कल के मैच के बाद गुजरात टाइटंस, दूसरे पे आरसीबी है, तीसरे पे उनका स्कोर पॉइंट्स टाई है हैदराबाद के साथ, चौथे स्थान पर है पंजाब, पांचवे पे सीएसके चेन्नई, छठे पे राजस्थान, सातवें पे दिल्ली, आठवें पे केकेआर, नवे पे मुंबई और सबसे नीचे एलएसजी। अब
1: हाँ बिल्कुल, गुजरात 16 अंकों के साथ टॉप पर चल रही है और प्ले ऑफ के लिए उसकी दावेदारी काफ़ी मजबूत है और आरसीबी भी आज अगर जीत हासिल कर लेती है तो उसकी दावेदारी और पुख्ता हो जाएगी।
0: अब बात करते हैं बॉक्सिंग के बारे में, जहां एशियन बॉक्सिंग अंडर 17 अंडर 15 चैंपियनशिप चल रही है ताशकंद में, जहां पे अंडर 17 लड़कों का दिन चुनौतीपूर्ण रहा उनके सेमीफाइनल्स में। उज्बेकिस्तान में लक्ष्य फोगाट एकमात्र फाइनलिस्ट के रूप में उभरे जबकि 4 अन्य मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल मुकाबलों के बाद कांस्य पदक पक्के किए। 75 किलो वर्ग में लक्ष्य फोगाट ने दमदार प्रदर्शन करते हुए कोरिया के सेउंगमिन ली को सर्वसम्मत 5-0 के फैसले से हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई। अन्य सेमीफाइनल मुकाबलों में 46 किलो में नरेंद्र ने उज्बेकिस्तान के अबुदुल्ला से 0-5 से हार गए, 50 किलो में यश यादव हार गए, वहीं 54 किलो में निवेश पाल को उज्बेकिस्तान के मुक्केबाज के खिलाफ 0-5 से हार का सामना करना पड़ा। एक करीबी मुकाबले में 70 किलो में नमन भी 2-3 से हार गए। एक फाइनलिस्ट और 4 कांस्य पदक पक्के होने के साथ भारतीय अंडर 17 लड़कों की टीम फाइनल में मजबूत प्रदर्शन के साथ समापन जरूर करना चाहेगी। अब अगर नजर डालें फाइनल के मुकाबलों में, जहां भारत के युवा मुक्केबाज स्वर्ण पदक जीतने के इरादे से रिंग में उतरेंगे, तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये मुकाबले अंडर 15 फाइनल होगा 14 मई सुबह 11 बजे ताशकंद समय पे, जो भारत के हिसाब से है 11:30। वहीं अंडर 17 फाइनल्स होने वाले हैं 15 मई सुबह 11 बजे, जो भारतीय समय के अनुसार होगा 11:30।
1: अमितोषी, अब दिल्ली प्रीमियर लीग जो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टेडियम में खेली जा रही है उस पर करते हैं चर्चा।
2: बात दिल्ली प्रीमियर फुटबॉल लीग की, जहां रॉयल रेंजर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दिल्ली एफसी को 1-0 से पराजित किया और पहले हाफ में ही ये गोल कर लिया था। और हमने मुलाकात की आकाशवाणी के लिए तुषार, जो कि स्कोरर रहे रॉयल रेंजर्स के इकलौते गोल के लिए। तो आपके गोल से टीम जीती है तुषार, कितनी खुशी है?
3: मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि 3 पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था टॉप 5 में आने के लिए और मैंने स्कोर किया, मुझे चांस मिला, तो मैं बहुत खुश हूँ कि हम टॉप 5 में भी अब आ चुके हैं। सो आगे के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अगले मैचेस, तो हम आगे फोकस करेंगे।
2: तो अगर बात टेबल की करें तो गढ़वाल हीरो से एक अच्छी टसल चल रही है।
3: हाँ, हम अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं और हम टेबल टॉप भी कर रहे हैं, तो हम अब टेबल टॉप करेंगे और टॉप 5 में हैं, तो आगे हमारे लिए अच्छे मैच होंगे।
2: पहले हाफ में गोल कर लिया था तो शुरुआती बढ़त का एक फायदा मिला,
3: हमारे कोच ने जो स्ट्रेटजी बनाई थी उसके हिसाब से हम सेकंड हाफ में खेले और हमने अपनी लीड को बना के रखा, उस हिसाब से हम आगे बढ़ते रहे और फिर हमने जीत हासिल करी।
2: अगला मैच किससे है और क्या, लेकिन हाफ में इंजरी काफ़ी हुई।
3: अगले मैच में गढ़वाल डायमंड से हमारा मैच है, वो मैच हमारे लिए जीतना इंपॉर्टेंट है, वो भी हमारे लिए 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आज का मैच इंपॉर्टेंट था, हम जीते, 3 पॉइंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। हमारे लिए 3 खेल के आ रहे, इसलिए प्लेयर्स थोड़े ज़्यादा टायर्ड है, हम अच्छा खेल रहे हैं तो हम आगे भी अच्छे खेल।
2: ऑल द बेस्ट तुषार। और उसके बाद हमने टीम के कप्तान बिजॉय से मुलाकात की और जानना चाहा, टीम ने आज अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा है और टॉप पर चल रही है।
4: सेकेंड हाफ में हमने चांसेस बनाने की कोशिश करी बट उससे ज़्यादा टफ हमें गोल बचाना था ताकि हम आगे टॉप 5 में पहुँच सके और हमने वो अच्छे से किया।
2: सेकंड हाफ में दिल्ली एफसी ने भी काफ़ी जोर मारा और बड़ा एक अच्छा एक का मुकाबला हुआ, उन्होंने बराबरी के लिए काफ़ी अच्छे प्रयास किए।
4: जी हाँ, बट हमें
1: तो घड़ी की सुइयां अब हमें ज़्यादा अनुमति प्रदान नहीं कर रही हैं, तो कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे यानी नवीन कुमार शर्मा और
0: विदुषी वत्स को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
5: खेल खिलाड़ी। खेलों का आईना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,400 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नॉन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 5,000 रोजगार सृजित होगा। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को भी सशक्त करेगी। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव CV जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने वांछित नार्को आतंकवादी इकबाल सिंह उर्फ शेरा को गिरफ्तार कर लिया है। लंबे राजनयिक और कानूनी प्रयासों के बाद पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण में सफलता हासिल की गई है। 2020 से फरार इस आतंकवादी को पाकिस्तान समर्थित नार्को आतंकी मामले में गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। IPL क्रिकेट में रायपुर में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट

0: हिंदी वार्ता कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे कृष्ण कुमार यादव का काव्य पाठ।
1: एक मेरी कविता है पॉलिस। इसमें एक आज का जो समाज है और आज के समाज में कई बार जो बच्चों के साथ जो विडंबना है उसको महसूस करिएगा। साहब पॉलिश करा लो, साहब पॉलिश करा लो, एकदम चमाचम कर दूंगा। देखता हूँ उसकी आंखों में, वहाँ मासूमियत नहीं बेबसी है। देखता हूँ उसकी आंखों में, वहाँ मासूमियत नहीं बेबसी है। करा लो ना साहब कुछ खाने को मिल जाएगा, करा लो ना साहब कुछ खाने को मिल जाएगा। सुबह ही पॉलिश किया जूता उसकी तरफ बढ़ा देता हूँ, सुबह ही पॉलिश किया जूता उसकी तरफ बढ़ा देता हूँ। जूतों पर तेजी से फिरने लगे हैं उसके हाथ, जूतों पर तेजी से फिरने लगे हैं उसके हाथ। फिर कंधों से रुमाल उतार जूतों को चमकाता है। हो गया साहब, उसकी खाली हथेली पर 5 का सिक्का रखता हूँ, उसकी खाली हथेली पर 5 का सिक्का रखता हूँ। सलामी ठोक आगे बढ़ जाता है। सामने खड़े ठेले से कुछ पूड़ियाँ खरीद ली हैं उसने, सामने खड़े ठेले से कुछ पूड़ियाँ खरीद ली हैं उसने। उन्हीं गंदे हाथों से खाने के कौर को मुँह में डाल रहा है, उन्हीं गंदे हाथों से खाने के कौर को मुँह में डाल रहा है। और तमाम वादों के बीच मैं देश के भविष्य का यह चेहरा देखकर अस्तब्ध हूँ, मौन हूँ। एक दूसरी कविता है मेरी, माँ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा प्यारा सा बच्चा गोद में भर लेती है बच्चे को, चेहरे पर नजर न लगे। मेरा प्यारा सा बच्चा गोद में भर लेती है बच्चे को, चेहरे पर नजर न लगे। माथे पर काजल का टीका लगाती है, माथे पर काजल का टीका लगाती है। कोई बुरी आत्मा न छू सके, बाहों में ताबीज बांध देती है मेरा प्यारा सा बच्चा। बच्चा स्कूल जाने लगा है, सुबह से ही माँ चुट जाती है चौके बर्तन में, कहीं बेटा भूखा न चला जाए। बच्चा स्कूल जाने लगा है, लड़कर आता है पड़ोसियों के बच्चों से, माँ के आंचल में छुप जाता है, अब उसे कुछ नहीं हो सकता। बच्चा बड़ा होता जाता है, बच्चा बड़ा होता जाता है, माँ मन्नतें मांगती हैं देवी देवताओं से, माँ मन्नतें मांगती है देवी देवताओं से बेटे के सुनहरे भविष्य की खातिर। बेटा कामयाबी पाता है, माँ भर लेती है उसे बाहों में, पर अब तो बेटा नजरों से दूर हो जाएगा, नजरों से दूर हो जाएगा। फिर एक दिन आता है शहनाइयाँ गूंज उठती हैं, फिर एक दिन आता है शहनाइयाँ गूंज उठती हैं। माँ के कदम आज जमीन पर नहीं, माँ के कदम आज जमीन पर नहीं। कभी इधर दौड़ती कभी उधर दौड़ती, कभी इधर दौड़ती कभी उधर दौड़ती, बहू के कदमों का इंतजार है उसे। आशीर्वाद देती है दोनों को एक नए जीवन की शुरुआत के लिए, आशीर्वाद देती है दोनों को एक नए जीवन की शुरुआत के लिए। माँ सिखाती है बहू को परिवार की परंपराएं और संस्कार, माँ सिखाती है बहू को परिवार की परंपराएं और संस्कार। बेटे का हाथ बहू के हाथों में रख बोलती है, बेटे का हाथ बहू के हाथों में रख बोलती है, बहुत नाजों से पाला है इसे अब तुम्हें ही देखना है, बहुत नाजों से पाला है इसे अब तुम्हें ही देखना है। माँ की खुशी भरी आंखों से आंसू की एक गर्म बूंद गिरती है बहू की हथेली पर, माँ की खुशी भरी आंखों से आंसू की एक गर्म बूंद गिरती है बहू की हथेली पर। मेरा प्यारा सा बच्चा गोद में भर लेती है बच्चे को। एक कविता है मेरी बच्चों पर ही, बच्चे की निगाह। इस कविता में आप देखेंगे कि बच्चों का मन कितना पवित्र होता है और कितना व्यापक होता है। कभी देखो समाज को बच्चे की निगाहों से, कभी देखो समाज को बच्चे की निगाहों से। पल भर में रोना पल भर में खिलखिलाना, अरे आज लड़ाई हो गई, शाम को दोनों गले मिल रहे हैं एक दूसरे को चूम रहे हैं। भीख का कटोरा लिए फिरते बूढ़े चाचा की दशा देखी नहीं गई, भीख का कटोरा लिए फिरते बूढ़े चाचा की दशा देखी नहीं गई। माँ की नजरें चुरा कर अपने हिस्से की दो रोटियां दे आता है उसे। कभी देखो समाज को बच्चे की निगाहों से। दिवाली है, ईद है,

0: दिवाली है, ईद है, अपनी मंडली के साथ मिठाइयाँ खाए जा रहा है। दिवाली है, ईद है, अपनी मंडली के साथ मिठाइयाँ खाए जा रहा है। क्या फ़र्क पड़ता है कौन हिंदू है कौन मुसलमान। सड़क पर कुचल जाता है एक आदमी, सड़क पर कुचल जाता है एक आदमी, लोग देखते हुए भी अनजान हैं। सड़क पर कुचल जाता है एक आदमी, लोग देखते हुए भी अनजान हैं। पापा पापा गाड़ी रोको, देखो उन्हें क्या हो गया। पापा पापा गाड़ी रोको, देखो उन्हें क्या हो गया। कभी देखो समाज को बच्चे की निगाह से। छत पर देखा एक कबूतर घायल पड़ा है, छत पर देखा एक कबूतर घायल पड़ा है, उठा लाता है उसे, जख्मों पर मलहम लगाता है। कबूतर उन्मुक्त होकर करके उड़ता है, कबूतर उन्मुक्त होकर उड़ता है। बच्चा जोर से तालियां बजाकर उसके पीछे दौड़ता है, बच्चा जोर से तालियां बजाकर उसके पीछे दौड़ता है, मानो सारा आकाश उसकी मुट्ठी में है। कभी देखो समाज को बच्चे की निगाहों से। एक कविता आज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना चाहूँगा, बिखरते शब्द, और आज के दौर में शब्दों के साथ क्या हो रहा है उसको आप इस कविता के माध्यम से महसूस कर सकेंगे। बिखरते शब्द। शंकर जी के डमरू से निकले डमडम अपरंपार शब्दों का अनंत संसार, शंकर जी के डमरू से निकले डमडम अपरंपार शब्दों का अनंत संसार। शब्द हैं तो सृजन है, शब्द हैं तो सृजन है, साहित्य है, संस्कृति है, पर लगता है शब्द को लग गई किसी की बुरी नज़र, पर लगता है शब्द को लग गई किसी की बुरी नज़र। बार बार सोचता हूँ लगा दूँ एक काला टीका शब्द के माथे पर, बार बार सोचता हूँ लगा दूँ एक काला टीका शब्द के माथे पर। उत्तर संरचनावाद और विखंडनवाद के इस दौर में, उत्तर संरचनावाद और विखंडनवाद के इस दौर में शब्द बिखर रहे हैं, हावी होने लगा है उन पर उपभोक्तावाद। शब्द बिखर रहे हैं और हावी होने लगा है उन पर उपभोक्तावाद। शब्दों की जगह अब शोरगुल हावी है, शब्दों की जगह अब शोरगुल हावी है। एक अन्य कविता है रिश्तों का अर्थशास्त्र। आज के दौर में जिस हिसाब से रिश्ते बदल रहे हैं उन भावों को इसमें व्यक्त किया गया है। रिश्तों के बदलते मायने, रिश्तों के बदलते मायने अब वे एहसास नहीं रहे, रिश्तों के बदलते मायने अब वे एहसास नहीं रहे, बन गए अहम की पोटली। ठीक अर्थशास्त्र के नियमों की तरह, त्याग की बजाय मांग पर आधारित, हानि और लाभ पर आधारित, शेयर बाजार के उतार चढ़ाव की तरह दरकते रिश्ते, शेयर बाजार के उतार चढ़ाव की तरह दरकते रिश्ते, ठीक वैसे ही जैसे किसी उद्योगपति ने बेच दी हो घाटे वाली कंपनी, ठीक वैसे ही जैसे किसी उद्योगपति ने बेच दी हो घाटे वाली कंपनी बिना समझे किसी के मर्म को। वैसे ही टूटते हैं रिश्ते आज के समाज में, वैसे ही टूटते हैं रिश्ते आज के समाज में, और एहसास पर हावी होता जा है अहम, एहसास पर हावी होता जाता है अहम। एक मेरी कविता है, चूंकि मैं अंडमान निकोबार में जो है लगभग 2 साल रहा हूँ और वहाँ के आदिवासियों को मुझे नज़दीक से देखने का मौका मिला है, तो इस कविता पर गौर करिएगा। अंडमान के आदिवासी, अंडमान के आदिवासी सभ्यता से कोसों दूर, अंडमान के आदिवासी सभ्यता से कोसों दूर, द्वीपों पर अलग थलग पड़े तीर भाले से करते शिकार प्रकृति के सहवास में, द्वीपों पर अलग थलग पड़े तीर भाले से करते शिकार प्रकृति के सहवास में। चौंकाती है हराहट, चौंकाती है हराहट, खड़े हो जाते हैं हिरनों की तरह कान, कोई आ रहा है उनकी दुनिया में सभ्यता का जामा पहने, कोई आ रहा है उनकी दुनिया में सभ्यता का जामा पहने, बचते हैं वे इस सभ्यता के आवरण से, बचते हैं वे इस सभ्यता के आवरण से, खुश हैं अपनी छोटी सी दुनिया में प्रकृति के आगोश में, खुश हैं अपनी छोटी सी दुनिया में प्रकृति के आगोश में। आखिरकार घुसने लगे हैं सभ्यता और संस्कृति के पहरुए, आखिरकार घुसने लगे हैं सभ्यता और संस्कृति के पहरुए उनकी प्राकृतिक दुनिया में, पर डर और संकोच के बीच स्वीकार लेते हैं वे इसे, पर डर और संकोच के बीच स्वीकार लेते हैं वे इसे। सभ्यता व संस्कृति का यह संक्रमण कुछ दिन तो अच्छा लगता, सभ्यता व संस्कृति का यह संक्रमण कुछ दिन तो अच्छा लगता, पर आहिस्ता आहिस्ता इसकी आड़ में घुसने लगती हैं बुराइयां।
1: हिंदी वार्ता कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कृष्ण कुमार यादव का काव्य पाठ। प्रस्तुति सहयोग

0: SP मध्ये सर्वाधिकं द्वाविंशत्यधिकषट्शतं रूप्यकाणि प्रति क्विण्टल् वृद्धे सूर्यमुखी बीजानां कृते अनुशंसितं। तदनन्तरं सप्तपञ्चाशदधिकपञ्चशतं रूप्यकाणि प्रति क्विण्टल् कर्पासस्य कृते, 500 रूप्यकाणि प्रति क्विण्टल् तिलस्य कृते च अनुशंसितमस्ति।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: प्रिया श्रोतार, संस्कृत वार्ता संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन भू अंगारस्य तथा लिग्नाइट गैसिफिकेशन परियोजनायाः प्रोत्साहनाय 37,50,000,000,000 रूप्यकाणां वित्तीय व्ययस्य योजना अनुमोदिता। प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् इयं योजना भारतस्य अंगारस्य लिग्नाइट गैसिफिकेशन इत्यस्य च कार्यक्रमं गतिप्रदानाय प्रमुखं पदाक्षेपमस्ति। श्री वैष्णवः अवदत् यत् योजनायाः अन्तर्गतं 3,00,000,000,000 रूप्यकाणां अपेक्षित निवेशः भविष्यति।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: तमिलनाडु राज्ये सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे तमिलगा वेट्रिकझगम दलस्य सर्वकारेण तमिलनाडु विधानसभायां बहुमत परीक्षणं विजितम्। 44,100 विधायकाः पक्षे मतदानं कृत्वा सभायां स्पष्टं बहुमतं प्रदर्शितवन्तः। अत्रांतरे 22 विधायकाः विश्वासप्रस्तावस्य विरुद्धं मतदानं कृतवन्तः। कार्याचरणावधौ प्रमुखः विपक्षिदलं DMK विधानसभा सदनात् बहिरागच्छत्। सद्यैव समाप्तेः विधानसभा निर्वाचने तस्य दलेन केवलं 88 आसनानि प्राप्तानि आसन्। तमिलनाडोः राज्यपालेन राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकरवर्येण विजयाय सदने बहुमतं साधयितुम् आज्ञापितमासीत्। अखिलभारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस दलस्य नेता एन रंगासामी अद्य पुदुचेरी राज्यस्य मुख्यमंत्री रूपेण पंचमं वारं शपथ ग्रहणं कृतवान्। लोकनिवासे आयोजिते समारोहे पुदुचेरी नगरस्य उपराज्यपालः के कैलासनाथन वर्यः पदस्य गोपनीयतायाः च शपथ ग्रहणं कारितवान्। दलस्य मल्लादी कृष्णरावः भाजपेति दलस्य एन नमशिवायं च अस्मिन् समारोहे मंत्री रूपेण शपथं स्वीकृतवन्तः। भारत ऋतु विभागेन अद्य राजस्थान राज्ये उष्णतरंगस्य कृते रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतनायाः सूचना प्रसारिता। गुजरात राज्ये, महाराष्ट्रे, पश्चिम मध्य प्रदेशे च श्वः यावत् उष्णतरंगस्य स्थितिः भवितुम् अर्हति। अपि च अद्य हिमाचल प्रदेशे, उत्तराखण्डे च ओलावृष्ट्या सह वर्षायाः संभावना विद्यते। अद्य दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब इत्येतेषु प्रदेशेषु विद्युत सहित वृष्टिः, तीव्र वायुवेगः च भविष्यति इति भारत ऋतु विभागेन पूर्वानुमानितम्। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा द्वादशी कक्षायाः परीक्षा परिणामाः प्रसारिताः। छात्राः आधिकारिक वेबसाइट डिजिलॉकर इत्यत्र, उमंग ऐप इत्यत्र च स्वानुक्रमान् प्रविश्य परिणामं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अस्मिन् वर्षे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा द्वादशी कक्षायाः फरवरी मासस्य 17 दिनांकतः अप्रैल मासस्य 10 दिनांकपर्यन्तं लक्षोपलक्ष छात्राणां कृते परीक्षा आयोजिता। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनः एकवारम्। पश्चिमेशिया संघर्षेण उद्भूतस्य वैश्विक ऊर्जा संकटकालस्य मध्ये प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिना आवाहनस्य अनन्तरं केन्द्रराज्ययोः ईंधन संरक्षणस्य उपायाः तीव्राः जाताः। केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन 14 खरीफेति ग्रैष्मिक सस्यानां

0: न्यूनतम समर्थन मूल्यं स्वीकृतम्। तमिलनाडुराज्ये सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे टीवी के सर्वकारेण सहज बहुमतेन सक्षिपरीक्षणं विजितम् इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: कार्यक्रम ग्राम संसार सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को
1: राम
0: नमस्कार।
1: राम।
0: और देखिए, जिस माध्यम से हम बात कर रहे हैं, यानी कि रेडियो, और या रेडियो यानी कि आकाशवाणी, और ये हमारा माध्यम इतना सशक्त है और इतना पुराना है, जिसकी वजह से हमारा और हमारे श्रोताओं के साथ एक अनूठा नाता
1: बिल्कुल
0: है ना? क्योंकि हमारा जो भी कार्यक्रम होता है, वो जितनी भी हम जानकारी देते हैं, वो हमारे लिए जो माध्यम बनता है, वो ये रेडियो ही बनता है।
1: बिल्कुल
0: गांव देहात में हम जो अपनी बात पहुंचाते हैं, हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे जो ग्रामीण भाई हैं, वो ये रेडियो का कार्यक्रम सुनते हैं, और उन्हें कई बार ऐसी जानकारियाँ मिलती हैं जो हमारी सरकारी योजनाओं से जुड़ी रहती हैं, और साथ में जो हमारा लोक संगीत होता है, वो भी उसका आनंद हमारे इसी रेडियो के माध्यम से ही सुनते हैं।
1: बिल्कुल प्रीति बहन।
0: और मैं इसलिए भी ये बात करना चाहती हूँ कि भाई, आकाशवाणी का जो समय है, वो बहुत पुराना है, हमारा जो नाता है बहुत पुराना है। और जो कहते हैं ना कि आज जो हम इस खास दिन पर जो बात कर रहे हैं, हमारे आकाशवाणी को पूरे 90 वर्ष हो चुके हैं।
1: हाँ
0: और ये सिर्फ एक रेडियो नहीं है, बल्कि हमारे गांव की, हमारे देहात की आवाज़ है, किसानों का साथी, लोक संस्कृति का रखवाला, और आम लोगों का एक हमसफर बनकर रहा है
1: बिल्कुल
0: हमेशा,
1: बिल्कुल
0: है ना? और जब गांव देहातों में बिजली भी नहीं होती थी, और टीवी भी नहीं होता था, मोबाइल का नामो निशान तक नहीं था, तब एक ये मात एकमात्र ये रेडियो ही हुआ करता था, जो हर घर की पहचान हुआ करता था। सुबह होते ही लोग रेडियो खोल देते थे, और कहीं खेती बाड़ी की बातें सुनाई दे रही हैं, कहीं लोक गीत गूंजते थे, तो कहीं देश दुनिया की खबरें। और आकाशवाणी की जो बात है, वो गांव की चौपाल से लेकर खेत खलिहान तक किसानों और श्रोताओं को जोड़ने का काम किया करती थी। और अभी भी बदस्तूर आज भी ये काम जारी है। और जैसा कि अभी हमने 5:10 पर कार्यक्रम किया था लोकरंजनी,
1: हाँ
0: उसका जरिया भी हमारा ये रेडियो ही बना, जो लोगों के दिलों में बसा हुआ है।
1: बिल्कुल प्रीति बहन। इसके साथ साथ हम अपने भाइयों को, जैसे कि आपने बताया कि जो हमारा माध्यम है रेडियो ही रहा है, और अब इस कार्यक्रम में हम देखिए हमारा जो अब ग्राम संसार कार्यक्रम चल रहा है उसमें गांव की ज़िंदगी का आईना रहा है। इसमें गांव की जो तरक्की, शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई, सामाजिक जागरूकता की बातें होती हैं, बड़े ढंग से लोगों को पहुँचाई जाती हैं।
0: बिल्कुल
1: गाँव के लोग इस कार्यक्रम को सुनकर नई बातें सीखते हैं और अपने जीवन में बदलाव लाते हैं।
0: जी।
1: देखिए प्रीति बहन, पहले बहुत कठिन सफर था, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें बदलाव हुआ है। और अगर हम इसकी कृषि जगत की भी बात करें, जो हमारा अगला कार्यक्रम है उसमें देखिए खेती किसानों में बहुत बड़ा योगदान देती है। किसानों को नई फसल, नए बीज, मौसम की जानकारी, खाद और सिंचाई के तरीके, पशुपालन और सरकारी योजना की जानकारी रेडियो के जरिए मिलती रही है।
0: जी
1: जब किसान खेत में काम करता था तब रेडियो उसका साथी बनकर उसके साथ चलता था। आकाशवाणी ने किसानों को सिर्फ जानकारी ही नहीं दी बल्कि उनका हौसला भी बढ़ाया है।
0: और सबसे ख़ास बात बताऊं लोकेंद्र भाई, कि जो आकाशवाणी है, उसकी सबसे बड़ी अगर ताकत है, तो वो इसकी सादगी है
1: हाँ
0: और अपनापन रहा है।
1: बिल्कुल
0: और कहें, अगर बात अगर हम भाषा की करें, तो ये भाषा एक ऐसी भाषा रही है रेडियो की, हमारे आकाशवाणी की, जो जन जन से जोड़ने का काम करती आई है,
1: हाँ
0: और एक ऐसी भाषा जो आम आदमी की बहुत ही जो आम आदमी बहुत ही सहजता से, सरलता से समझ सके। गांव के बुजुर्ग हों या फिर शहर का नौजवान हो, हर कोई इससे जुड़ा ही रहता है,
1: बिल्कुल
0: और एक महसूस करता है कि हमारी ही बात हो रही है। और शायद यही कारण है कि आज 90 साल होने के बाद भी रेडियो की आवाज़ लोगों के दिलों में जिंदा है। अब मैं आपको ना एक वाकया बताती हूँ,
1: हाँ
0: जो कहते हैं ना

0: एक का एक व्यक्तिगत भी एक अनुभव होता है रेडियो को लेकर के। तो हम भी बताते हैं कि जब जब टीवी नहीं हुआ करता था तो रेडियो एक ऐसा माध्यम रहता था, लोग साइकिल चला रहे हैं तो भी रेडियो चल रहा
1: रेडियो
0: है।
1: बिल्कुल
0: घर में कई बार ऐसा होता था, कुछ कार्यक्रम जो हम आज सुनते हैं वो तब भी, जैसे हवा महल कार्यक्रम है,
1: बिल्कुल
0: वो एक छोटा एक नाटक है, जो नाटक की जो शैली थी उसी को ही लोग मनोरंजित हो जाते थे सुनने के बाद। तो ऐसा
1: और प्रीति
0: मतलब
1: उस टाइम ऐसा होता था जो हमारे किसान भाई बहन इन कार्यक्रम का इंतजार करते थे कि वो कार्यक्रम आए, उससे
0: बिल्कुल
1: हमें नॉलेज मिले, जानकारी मिले, हमारे उसको हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करें,
0: जी।
1: तो उसका एक वो उसका बहुत बेसब्री से इंतजार करते थे।
0: और मैं तो कहती हूँ कि जो हम गांव देहात की बात करते हैं, आज भी गांव देहात में कई ऐसे लोग हैं जो कई कार्यक्रमों को बहुत पसंद करते हैं। जैसे कि जैसे अभी महिलाओं का एक प्रोग्राम आता है, उसमें क्या होता है कि कुछ खाने पीने की रेसिपी की बातें होती हैं, तो वो भी जो हमारे श्रोता हैं आज के युग में भी, मतलब जहाँ ये क्या नाम से कि मोबाइल भी हैं, इंटरनेट की सुविधा बहुत ज़्यादा हो गई है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन उनके जो उनकी ज़िंदगी में जो रेडियो का जो एक स्थान बना था वो आज भी वैसा का वैसा ही है।
1: बिल्कुल। तो ये तो रही है हमारे भाइयों के लिए जानकारी, और अब अपने भाइयों को सुनवाते हैं ये रागनी। कलाकार हैं लेखराज और किस्सा है रामायण से।

0: तो अभी आपने लेखराज से सुनी, रामायण के किस्से से ये रागिनी। और लोकेंद्र भाई, कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैं कुछ कह रही हूँ और सामने वाला सुन नहीं रहा है,
1: बिल्कुल।
0: और कई बार ये लगता है कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है कि मेरी बात सुनी नहीं,
1: हाँ
0: है ना। तो ये भी समझना चाहिए कि कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग किसी समस्या का शिकार हो चुके होते हैं और अननेसेसरी उन्हें ये पता ही नहीं होता कि कोई तकलीफ है उन्हें, किसी तरह की समस्या से वो गुजर रहे हैं, और उसका उनको अंदाज़ा भी नहीं होता है।
1: बिल्कुल प्रीत बहन।
0: तो ऐसी ही हम आज एक बातचीत लेकर आए हैं, जिसमें डॉक्टर रामानुज बंसल हैं, जो कि पूर्व नाक कान गला विशेषज्ञ हैं, लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल नई दिल्ली में। और विषय रहेगा कि जो बहरेपन की जो समस्या है, उससे क्या हम बचाव कर सकते हैं और कैसे हम आसान तरीके से समझ सकते हैं। और इनसे बातचीत कर रहे हैं कबल किशोर, आइए सुनते हैं ये बातचीत।
2: दोस्तों नमस्कार। आजकल खासकर शहरों में गाड़ियों में, मशीनों में, कल कारखानों में या लाउड स्पीकर आदि के चलते शोर शराबा बढ़ गया है, और इसीलिए बात को सुनने समझने में परेशानी होती है, दिक्कत होती है। तो किसी बात को, किसी आवाज़ को सुनने में, समझने में अपनी श्रवण शक्ति यानी कान का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी होता है। जब श्रवण दोष से कम सुनाई देता है या बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है तो ऐसा क्यों होता है, हमें लगता है इसका इलाज क्या है, क्या यह बहरापन है? चलिए, इन सब बातों के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल नई दिल्ली में काफी लंबे समय तक सेवाएं दे चुके डॉक्टर रामानुज बंसल जी से। आप ENT विशेषज्ञ हैं डॉक्टर साहब। ये जो कम सुनना या
1: हाँ
2: फिर
1: जी,
2: ना सुनना या फिर कई बार हियरिंग लॉस हो जाना, इसके क्या लक्षण, हम इसके बारे में किस प्रकार से पता करेंगे कि ये इसे कम सुनाई देता है?
1: अगर हम एज वाइज लें तो जैसे बच्चा पैदा होता है, नवजात शिशु होता है, अगर बच्चा पैदा होने के समय रोता नहीं है, अगर रोता नहीं है तो इसका मतलब उस नवजात शिशु को सुनाई की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो उसका रोना बहुत जरूरी है, क्योंकि रोने से ही उसके लंग्स से ऑक्सीजन ब्रेन में जा रही है और जो कान को सप्लाई होती है। तो एक तो छोटे बच्चों में तो ये, दूसरा ये है कि जब बच्चे को अगर हम ताली मारेंगे नवजात शिशु को, तो वो अपना कान सिर घुमाता है, ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को सुनाई दे रहा है नहीं।
2: यानी कि
1: अगर
2: आकर्षित होता है।
1: आकर्षित, अगर आप जोर जोर से ताली बजा रहे हैं और या झुंझुना बजा रहे हैं और बच्चे का ध्यान उसकी तरफ है ही नहीं, वो अपनी धुन में ही कहीं देख रहा है, इसका मतलब बच्चे को सुनाई की कमी हो सकती है। इसी तरह बच्चा जब स्कूल जाने लगता है तो स्कूल में कई बच्चे हैं जो कि आगे बैठना चाहते हैं, वो उनको पीछे से सुनाई नहीं देता, वो पहले छठी बेंच पे बैठ रहे थे, धीरे धीरे वो आगे आने लगते हैं, वो चाहते हैं कि हम फ्रंट बेंच पे बैठे हैं। इससे टीचर को शक हो जाना चाहिए कि कहीं बच्चे को सुनाई की कमी तो नहीं है। अगर सुनाई की कमी है तो बच्चा कम सुनेगा, तो नेचुरली जब टीचर के पास होगा तो उसको अच्छा सुनाई देगा। इसी तरह घर पे जब बच्चा होता है तो उसके माँ बाप अगर देखते हैं कि बच्चा जैसे टीवी देख रहा है तो टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज कर देता है, या हमारी जो आवाज़ें आपस में हम बातें कर रहे हैं वो उसको सुनाई नहीं दे रही है, मतलब वो अपनी कहीं धुन में मस्त है, तो इसका मतलब है कि बच्चे में सुनाई की कमी हो सकती है।
2: तो डॉक्टर साहब, जो अडल्ट होते हैं उनके
1: बिल्कुल,
2: बारे में हम कैसे पता करें कि उनके कान ठीक हैं या नहीं हैं?
1: हाँ, एडल्ट में ये है कि 55 साल के बाद में हमारी सुनने की जो नस है उसमें भी वृद्धावस्था का परिवर्तन होने लगते हैं। इस कंडीशन को हम प्रेस बायकुसिस कहते हैं। ये आप कह सकते हैं कि जो सुनने की नस है वो कमजोर होने लगती है, और इसका आमतौर पे ये एक तरह का परमानेंट हियरिंग लॉस है जिसमें कि हियरिंग एड लगाई जाती है। आपने देखा होगा काफ़ी वृद्ध लोग जो होते हैं वो हियरिंग एड लगा के घूम रहे होते
2: जी
1: हैं, क्योंकि वो एक नॉर्मल प्रोसेस है जो एज की वजह से हो रहा है, और इसके साथ में कई बार उनको सीटियों की आवाज़ भी आने लगती है कान में, इसको टिनिटस बोलते हैं। जब भी हमारे कान में सुनाई की कमी होगी तो आप ये सोच लीजिए कि साथ में सीटियाँ बजना ऑलमोस्ट 80% में होना ही होना है,
2: जी
1: तो
2: जी
1: उससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस सीटी बजने के और भी कारण हो सकते हैं जिनके लिए MRI CT स्कैन उनकी जरूरत पड़ सकती है, बट आमतौर पे अगर कोई 70 साल का आदमी है जिसको सुनाई कम दे रहा है तो उसमें सीटी बज सकती है।
2: तो डॉक्टर साहब, ये CSOM जो होता है ये किस प्रकार का लक्षण है ये?
1: CSOM एक्चुअली क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया होता है, ये कान का बहना, यानी कान जब बहने लगता है, कान में छेद हो जाता है, तो उसको हम क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं, CSOM। ये दो तरह का होता है, एक तो होता है सेफ टाइप का, जैसे कान के पर्दे में छेद हो गया
2: जी हाँ
1: वो सेफ टाइप का, क्योंकि उससे आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। दूसरा होता है

0: अनसेफ टाइप का। अनसेफ टाइप में क्या होता है, पर्दे के ऊपर की जो कान की हड्डी है वो गलने लगती है, क्योंकि कान जो है हमारा बेसिकली तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक्सटर्नल ईयर जो कि कान का रास्ता है जिसमें कि मैल जमता है
1: जी,
0: उसके बाद मिडल ईयर होता है जिसमें तीन छोटी हड्डियां हैं बॉडी की, मेलियस इनकस स्टेपिस, वो पर्दे के पीछे होती हैं, और ये आवाज़ बाहर से आवाज़ आ रही है वो पर्दे से होती हुई इन हड्डियों के थ्रू अंदर इनर ईयर में जाती है, वहाँ से आवाज़ नसों के थ्रू ब्रेन तक जाती है।
1: जी डॉक्टर साहब,
0: अब आप ये समझिए कि जो कान की जो हमारी ये मिडिल ईयर है उसकी छत के ऊपर ब्रेन पड़ा हुआ है हमारा, जिसको टेम्पोरल लोब बोलते हैं।
1: जी
0: तो आप समझिए कि अगर कान की हड्डी गल रही है तो वो एकदम ब्रेन के कॉन्टैक्ट में है, तो इसीलिए इसका इलाज ऑपरेशन के द्वारा जल्दी से जल्दी होना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए।
1: जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब इन सब के कारण क्या हो सकते हैं, बच्चों में, वृद्धावस्था में, या फिर जो युवक युवतियों में?
0: देखिए, कान बहने का सबसे बड़ा एक आम कारण तो यह है कि जो हमारे घर में, अगर मैं पहले सेफ टाइप का लेता हूँ, पर्दे में छेद हो गया, पर्दे में छेद का क्या, स्कूल में बच्चा जाता है उसको टीचर ने थप्पड़ मार दिया, अब थप्पड़ मारने से कान के पर्दे में बच्चे के छेद हो सकता है।
1: जी
0: इसी तरह कान में लोग तिल्लियाँ डालते रहते हैं, माचिस की तिल्ली डाल ली, कुछ भी डाल लिया साफ़ करने के लिए, मैल
1: जी
0: खुजली
1: हाँ
0: होती है क्योंकि वैक्स जमा होगा तो खुजली होगी,
1: जी
0: वो तिल्लियाँ डाल देते हैं। जो कान का हमारा छेद दिख रहा है
1: जी
0: उसके
1: हाँ
0: 1 इंच अंदर पर्दा है, अगर हमने 24 मिलीमीटर के अंदर कोई भी चीज़ डाल दी तो आप समझिए पर्दे में छेद होना ही होना है। तो इसीलिए कान में कभी भी तिल्ली या कोई भी चीज़ नहीं डालनी चाहिए कान के मैल को साफ़ करने के लिए। एक और कारण होता है कि अगर आपके सपोज किसी शोर में जाते हैं जहाँ बहुत तेज़ आवाज़ है, जैसे दिवाली के ऊपर पटाखे बज रहे हैं या और कोई ऐसा मौका है जिसमें बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, तो उससे भी कान के पर्दे में छेद हो सकता है, और छेद होने से कान के पीछे की जो हड्डी है वो भी अपनी जगह से हिल सकती हैं, जिसमें कि ऑपरेशन करने की नौबत आ सकती है।
1: तो डॉक्टर साहब आजकल देखा जाता है कि क्योंकि सबके पास मोबाइल है और सबके पास ईयर लीड और उसके बाद में ये हेडफोन वगैरह सब रहते हैं, हमेशा आप देखते होंगे कि लोग अपने कानों में ईयर लीड लगा करके तेज़ आवाज़ में सुनते रहते हैं या फिर हमेशा लगा ही रहता है,
0: लगा ही रहते
1: तो
0: हैं।
1: क्या इसके कारण भी हियरिंग लॉस हो सकता है?
0: सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो कान में मैल बन रहा है, वैक्स जिसको
1: जी
0: बोलते हैं, उसकी अगर हम कान को बिल्कुल नहीं छेड़ें तो वो वैक्स अपने आप बाहर आ जाता है, मगर जब हम कान में ईयरबड से सफाई करने की कोशिश करते हैं कि मैल निकाल लें तो वो वैक्स को हम और अंदर पुश कर देते हैं। तो इसलिए अपने आप कभी भी कान में कोई तिल्ली डाल के वैक्स निकालने की कोशिश ना करें, नहीं तो वैक्स अंदर चला जाएगा। अच्छा, ईयर प्लग लगाने से क्या होता है कि जो वैक्स बाहर आना चाहिए वो रुक जाता है वहाँ पर, तो इससे क्या होता है अंदर कान के मैल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और उससे कई बार कान के जो एक्सटर्नल ईयर है उसकी वॉल में डैमेज भी हो सकता है, और इम्पैक्टेड वैक्स जब इकट्ठा होता रहेगा तो वो बहुत हार्ड हो जाएगा,
1: जी
0: उसकी वजह से आपके कान में दर्द भी हो सकता है और हियरिंग लॉस तो होना ही होना है आपके।
1: जी डॉक्टर साहब, कई बार ये भी देखा जाता है कि जो मेडिसिन्स वगैरह सब यूज़ करते हैं, कई बार कानों में मेडिसिन्स वगैरह सब डाल देते हैं अपने तरीके से, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, तो
0: बिल्कुल।
1: क्या उससे भी ये हियरिंग लॉस होने की या फिर खराब होने की चांसेस होते हैं?
0: देखिए, कई ज़्यादातर लोग जो डालते हैं सेल्फ मेडिकेशन, उसमें वो सरसों का तेल डाल लेंगे गर्म करके, या प्याज या लहसुन इनका जो अत्र होता है वो डाल लेते हैं। आप एक्चुअली जो कैनाल है उसमें आप इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत डैमेज हो सकता है, क्योंकि हमारी जो एलोपैथिक की टेस्ट बुक्स हैं उसमें इन तरह के चीज़ों का कोई मेंशन नहीं है
1: जी
0: कि इनसे क्या क्या डैमेज हो सकते हैं, बट हो सकता है कि कोई केमिकल इनमें हो जिसकी वजह से आपका पर्दे में भी डैमेज हो सकता है, हो सकता है पर्दा फट जाए। तो हम इन चीज़ों को रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप कान में तेल डालें या कोई भी किसी भी पदार्थ का पदार्थ डालें। मार्केट में बहुत सारी प्रिपरेशंस आती हैं जो मैल को सॉफ्ट कर देती हैं, और आप वो सुबह शाम डालिए 5-6 दिन तो वो मैल अपने आप सॉफ्ट होकर बाहर निकल जाएगा।
1: जी डॉक्टर साहब, कई बार ये भी देखा जाता है कि सोते वक्त या कभी किसी वक्त कुछ कीट पतंगे वगैरह से घुस जाते हैं,
0: हाँ
1: तो क्या उसके कारण भी हियरिंग लॉस हो सकता है?
0: बिल्कुल, कीट पतंगा कान में घुस गया है, जैसे कान खुजूरा घुस जाए तो कई बार वो पर्दे को डैमेज करके कान के मिडिल ईयर में भी जा सकता है।
1: जी हाँ,
0: तो इस समय ये है कि अगर आपके कोई कीड़ा चला गया है वो नेचुरली बहुत दिक्कत करेगा कान में, अब आपके पास कोई दवाई नहीं है कुछ नहीं है, तो आप फिर कोई तेल ऑयल डाल सकते हैं कान के अंदर, जैसे सरसों का तेल हो गया, कोई भी जो अवेलेबल ऑयल हो उसको डाल के लेट जाइए थोड़ी देर, उससे क्या होगा कि जो जानवर अंदर घुसा है उसको ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है तो वो डेड हो जाएगा। तो डेड होने से फिर आप कान को वापस टेढ़ा कर लीजिए, और वो हो सकता है जो ऑयल डाला है उसमें मिक्स होकर बाहर आ जाए, अगर नहीं आता है तो फिर आप डॉक्टर को दिखा लीजिए ENT के।
1: डॉक्टर साहब, क्या वर्टिगो यानी कभी कभी चक्कर आने की समस्या वगैरह भी होती है, तो क्या इसके कारण भी हियरिंग लॉस हो सकता है, कान खराब हो सकते हैं?
0: नहीं, वर्टाइगो की वजह से चक्कर नहीं आते, बट देयर कोई काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिनमें हियरिंग लॉस भी होता है, जैसे मीनियस डिसीज एक बहुत कॉमन चीज़ है, या एकॉस्टिक न्यूरोमा है, या आपके कई बार सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से चक्कर आना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। एक ऐसी प्रॉब्लम होगी मतलब उसमें तो फिर ENT स्पेशलिस्ट उसको चेकअप करेगा कि अगर हियरिंग लॉस भी हो रहा है और वर्टाइगो भी आ रहे हैं, इसका मतलब पेशेंट को इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, और ENT डॉक्टर को दिखा के इसका प्रॉपर चेकअप कराना चाहिए। जब तक कि कोई 70 साल का आदमी है जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी है, प्रेस

0: एग्रेसिव भी है, यानी हियरिंग लॉस भी उसका उम्र की वजह से कम हो गया है, तो उनको कई बार चक्कर आ जाते हैं इसकी वजह से। बट हियरिंग लॉस की वजह से आमतौर पर चक्कर नहीं आता, उसका कारण इन्वेस्टिगेट करना पड़ता
1: सब डॉक्टर सब इतने सारे लक्षण और कारण हो जाते हैं, तो इसके लिए किस प्रकार से हमें जांच करनी चाहिए, डॉक्टर के पास हमें कब जाना चाहिए?
0: देखिए, डॉक्टर के पास में सबसे ज़रूरी है, जैसे मैंने बताया, अनसेफ टाइप का CSM, यानी अगर आपके कान के पर्दे के ऊपर की जो हड्डी है वो गल रही है, आपको कैसे पता चलेगा मेरा पर्दे में छेद है या हड्डी गल रही है? तो उसके लिए बड़ा सिंपल है, अगर आपके कान से मवाद पीले रंग का आ रहा है और बहुत कम मात्रा में आता है, बदबूदार, तो इसका मतलब आपके कान की हड्डी गलने के चांस हैं। अगर आपके कान से सफ़ेद रंग का मवाद आता है, जब भी जुकाम होता है या गला ख़राब होता है और कान बहने लगता है, तो इसका मतलब हो सकता है आपके पर्दे में छेद है। आमतौर पर जिन लोगों को बार बार जुकाम होता रहता है, गला होता है, उनके कान के पर्दे पे भी असर पड़ता है। अगर आपकी नाक बंद रहती है किसी भी वजह से, आपकी हड्डी टेढ़ी है नाक की, या साइनस की प्रॉब्लम है, या पॉलिप्स हैं, तो वो आपके कान पे भी असर डाल रही है, क्योंकि वो जो ट्यूब कनेक्ट कर रही है नाक के पीछे के हिस्से को कान से, वो ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से पर्दे में छेद होने का भी डर रहता है और कान की हड्डी गलने का भी खतरा है उसमें।
1: डॉक्टर साहब, इसमें किस प्रकार की जांच की जाती है?
0: इसमें सुनवाई की अगर किसी को कमी है, तो हम इसमें प्योर टोन ऑडियोमेट्री करते हैं, मगर अगर कोई नवजात शिशु है, जैसे कोई 2 महीने का है या 6 महीने का है, तो उसमें हम फिर बैरा टेस्ट करते हैं, जो कि एक कंप्यूटराइज टेस्टिंग होती है, इसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। इसमें बच्चे को सुला के, तो सिर पे इलेक्ट्रोड लगा के कंप्यूटर से टेस्टिंग की जाती है कि बच्चे को किस तरह का हियरिंग लॉस है और कितना हियरिंग लॉस है, सिवियरिटी टाइप ऑफ हियरिंग लॉस।
1: तो डॉक्टर, इसमें सीटी स्कैन भी किया जाता है?
0: सीटी स्कैन तो हम तब करते हैं अगर हमें लग रहा है कि कोई, जैसे मीनियस डिसीज है, या कोई हमें ट्यूमर लग रहा है ब्रेन में, CP एंगल का कोई ट्यूमर है, हमें लग रहा है हड्डी गल रही है, तो उसमें हम CT कराते हैं, HRCT टेम्पोरल बोन कराते हैं, ये देखने के लिए कि कान की हड्डियाँ कितनी गल रही हैं। मतलब हाँ, उसमें यह है कि जब हम ऑपरेशन करने के लिए जाएंगे, तो हम मेंटली प्रिपेयर रहते हैं और मरीज को भी बता सकते हैं कि भाई हम आपका ऑपरेशन करना है, आपके कान की 2 हड्डी गली हुई है, ताकि मरीज को पता रहता है मेरे को क्या प्रॉब्लम है ना।
1: डॉक्टर साहब, जब कारण लक्षण इस सब के बारे में पता चल जाता है, उसके बाद हम इलाज पे आते हैं, तो इलाज किस प्रकार होने चाहिए? क्या सबका तो अलग अलग इलाज ही है?
0: अगर आपके कान के पर्दे में छेद है, तो उसके लिए हम टिम्पेनोप्लास्टी करते हैं, यानी पर्दे का ऑपरेट जो छेद है उसको हम रिपेयर कर देते हैं एक नए पर्दे से।
1: डॉक्टर
0: ठीक
1: साहब,
0: है,
1: एक नए पर्दे से जब रिपेयर कर देते हैं, तो क्या उसकी जो लॉन्ग लास्टिंग है वो किस प्रकार होती है?
0: वो जो हम पर्दा बनाते हैं वो मरीज के ही शरीर का हिस्सा होता है, ये नहीं कि
1: अच्छा,
0: किसी और मरीज का हिस्सा हमने डाल दिया, तो उस मरीज के हिस्से से ही हम एक ग्राफ्ट लेके उससे रिपेयर कर।
1: तो
0: ठीक
1: इसमें
0: है,
1: क्या प्लास्टिक सर्जरी वगैरह भी होती है क्या
0: नहीं नहीं
1: इसमें?
0: ये सब ऑपरेशन जो है माइक्रोस्कोप में होते हैं या एंडोस्कोप से होते हैं। इसी तरह अगर कान की हड्डी गल रही है, तो उसमें मैस्टॉइड सर्जरी की जाती है, जो
1: जी
0: कि बेहोश करके की जाती है, और उसमें सारी गली हुई हड्डी को निकाल के, क्योंकि हमारा एम ये होता है कि पेशेंट की लाइफ को सेव करना है। सबसे पहले पेशेंट की लाइफ सेव होनी चाहिए, उसके बाद उसका कान से मवाद आना रुकना चाहिए और उसकी हियरिंग इम्प्रूवमेंट करना, ये हमारे एम्स
1: सर। सब
0: उसमें।
1: ये कॉकलियर इम्प्लांट क्या चीज़ होता है, क्या
0: हाँ,
1: चीज़ होती है, और इसमें किस प्रकार के काम होते हैं?
0: कॉकलियर इम्प्लांट एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो कि हियरिंग इम्प्रूवमेंट के लिए बनाई गई है। आमतौर पे जिन लोगों को हियरिंग लॉस है इतना ज़्यादा कि हियरिंग एड से उनको फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, तो उसमें हम एक ऑपरेशन के द्वारा कॉकलियर इम्प्लांट करते हैं। नॉर्मली जैसे मैंने बताया, नवजात शिशु होते हैं, उनको सुनाई नहीं दे रहा है, हियरिंग लॉस है, कंप्लीट हियरिंग लॉस है, तो उसमें हम कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी की जाती है। इसमें एक इशू बस ये है कि कॉकलियर इम्प्लांट जो होते हैं वो उनकी कॉस्ट फैक्टर है, ये सब कुछ लाख के होते हैं एक्चुअली, तो इसलिए यह है कि गवर्नमेंट फंडिंग के द्वारा ही नॉर्मली हम करते हैं, गवर्नमेंट से फंड लेके इन कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी की जाती है। बट अगर सपोज कोई एडल्ट आदमी है जिसमें इसको किसी वजह से उसको हियरिंग लॉस हो जाता है,
1: जी हाँ
0: तो उसमें भी हम कॉकलियर इम्प्लांट कर सकते हैं।
1: जी, डॉक्टर साहब, ये ऑडियोमेट्री किस प्रकार से आप इस्तेमाल करते हैं, क्या होता है इसमें?
0: ऑडियोमेट्री एक हियरिंग लॉस असेसमेंट के लिए प्योर टोन ऑडियोमेट्री करते हैं, इससे हमें एक तो डिग्री पता चल जाती है कितना हियरिंग लॉस है, उसकी किस तरह का हियरिंग लॉस है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस है या नसों का हियरिंग लॉस है, तो हमें सारा उसकी सिवियरिटी एंड टाइप ऑफ हियरिंग लॉस पता चल जाता
1: तो डॉक्टर साहब, दवाओं के इस्तेमाल में हमें किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए?
0: है। दवाएं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि काफ़ी दवाइयां होती हैं जो कि कान की हियरिंग को अफेक्ट कर सकती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयां हैं, जैसे क्लोरोक्वीन होती है, ये जो मलेरिया में यूज़ की जाती हैं,
1: जी
0: इसी तरह कुछ डायरेटिक्स होते हैं, इसी तरह इंजेक्शन होते हैं जैसे जेंटामाइसिन, एमिकासिन, कुछ जो कि बहुत कॉमन यूज होते हैं, बट वो सब कान के लिए डैमेजिंग है।
1: तो डॉक्टर साहब,
0: तो
1: चलते चलते अब क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्या संदेश देना चाहेंगे जो हमारे सुनने वाले हैं उनको?
0: मेरा संदेश यही रहेगा कि आपका कान एक बहुत बड़ा भगवान की तरफ से उपहार है आपको, उसको
1: जी
0: संभाल के रखिए। संभालने के लिए ज़रूरी है, सबसे पहले तो शोर से बचें, कान में कभी भी कोई तिल्ली विल्ली ना डालें, अगर आपका कान बहरा है तो उसको लापरवाही ना बरतें, उसको फ़ौरन किसी डॉक्टर को दिखा के पता करें कि मेरे को किस तरह का प्रॉब्लम है कान में छेद है या कान की हड्डी गल रही है। अगर हड्डी गल रही है तो वो उसका फौरन इलाज कराना जरूरी है। इसी तरह अगर किसी को कान में मवाद आने की शिकायत हो, तो उसको कभी भी किसी नदी में या तालाब में नहाना नहीं चाहिए, और कान मैलियों से कान कभी साफ ना कराएं, क्योंकि क्योंकि वो कान मैल लिए जो होते हैं कान साफ करने के चक्कर में पड़ता

0: ही साफ कर देते हैं कई बार। इसी तरह दिवाली पे पटाखे, इस तरह की चीज़ें जो शोर करती हैं, उनसे बच के रहें,
1: यानी कि उनसे दूर रहें,
0: उनसे
1: और
0: दूर रहें।
1: जब कभी भी आपको कुछ परेशानी हो, कोई सुनने में दिक्कत हो, अच्छी तरह से सुनाई ना दे रहा हो या फिर कम सुनाई देता हो, लगता है कि आपको कुछ बहरापन सा महसूस हो रहा हो, तो आप इसकी नियमित जांच कराएं, डॉक्टर के पास तुरंत जाएं। तो अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखें और सावधानी पूर्वक दवाइयों का इस्तेमाल करें, नियमित जांच करते रहें, तो अपना कान यानी कि श्रवण की जो शक्ति, श्रवण शक्ति है, वो बिल्कुल सही रहेगा और सभी बातों को, सभी आवाज़ों को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी जानकारियाँ दी कान के विषय में, बीमारियों के विषय में, इलाज के विषय में, लक्षण के विषय में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रीति बहन,
1: जी
2: अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे जानकारी। जानकारी का विषय था नाक, कान, गले की समस्याओं से बचाव और उनके आसान तरीके, और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर रामानुज बंसल, जो कि पूर्व नाक, कान, गला विशेषज्ञ हैं, लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल और नई दिल्ली, और इनसे बातचीत कर रहे थे कमल किशोर। और देखिए, इन्होंने डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी, और हमारे भाइयों को भाई कान में अगर कोई भी समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, उसका ज़रा भी विलंब ना करेंगे। अगर दिक्कत होगी तो उसमें ही लोगों को ही परेशानी होगी।
1: बिल्कुल
2: और देखिए, होता क्या है प्रीतिमान, के कभी कभी जैसे कि आपको बार बार जुकाम हो रहा है, इसकी पहचान भी बता दें, कोई एलर्जी हो रही है, तो उसका भी आप तुरंत जाके डॉक्टर से सलाह लें और उसी के हिसाब से दवाई का सेवन करें। और आजकल युवाओं में देखा जा रहा है कि ईयरफोन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे भी
1: बिल्कुल
2: हमारे कान में बहुत सारी समस्याएं
1: समस्याएं
2: आ
1: हो
2: रही
1: रही
2: हैं।
1: हैं।
2: हमारे जो पर्दा है उसमें भी फटने का डर रहता है, क्योंकि तेज़ आवाज़ में सुनते हैं, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ही हानिकारक हैं।
1: और ये तो रही चलो कान से जुड़ी ही बात, जो कि बहुत ही ज़रूरी थी हमारे
2: हाँ
1: श्रोताओं को बताने के लिए। और अब हम बताते हैं कि हमारी जो सरकारी योजनाएं हैं वो किस तरह से लाभ पहुंचाती हैं हमारे ग्रामीण भाइयों बहनों को। तो
2: हाँ
1: ऐसी ही एक योजना है राष्ट्रीय आयुष मिशन, जो कि भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य देश में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों जैसे कि आयुर्वेद,
2: हाँ
1: योग, यूनानी, सिद्ध होम्योपैथी और सोवा रिगपा को बढ़ावा देना है और स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत ही मजबूत बनाना है।
2: बिल्कुल।
1: और बात करें अगर इसकी शुरुआत की, तो 2014 में हो गई थी इसकी शुरुआत, और इसका मुख्य उद्देश्य जो भी लोग हैं उन्हें बहुत सस्ती और सुरक्षित और पारंपरिक उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराना है, और
2: बिल्कुल
1: आयुष चिकित्सा पद्धति का विकास करना भी इसका एक मुख्य लक्ष्य है।
2: बिल्कुल प्रीति बहन, देखिए राष्ट्रीय आयुष मिशन के प्रमुख उद्देश्य भी हैं, वो भी बता देते हैं। आयुष अस्पतालों और औषधालयों का विकास करना है, ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष सेवाओं का विस्तार, औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन करना, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देना, आयुष डॉक्टरों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना है।
1: जी, और साथ में कहते हैं ना कि इस योजना के माध्यम से लोगों को ये भी जागरूक बनाना रहता है कि वो कैसे अपनी जीवन शैली को अच्छा बनाएं, जिससे
2: हाँ
1: कि अगर उनकी जीवन शैली जो है अगर सही होगी, तो अगर उनका खान पान सही होगा तो उन्हें छोटी मोटी बीमारियां होंगी भी नहीं। तो पहला उपचार तो हम यही कह सकते हैं कि वो अपनी सेहत का ध्यान रखें, समय पर खाना पीना खाएं और जो मौसमी फल हैं उनका सेवन करें, सब्जियों का, पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें, जिससे कि आपके शरीर में फाइबर जाए और अच्छे अमाउंट में आपको आयरन मिले। तो अगर आपके शरीर में हर चीज़ की प्रचुर मात्रा होगी तो शायद ही आप कभी बीमार पड़ेंगे।
2: बिल्कुल प्रीति बहन, देखिए कार्यक्रम घड़ी भी इशारा कर रही है कार्यक्रम के साथ हमें विदा लेने का। तो ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को राम
1: राम
2: राम,
1: राम।
2: और प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन

0: सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इम्पोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की यह पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंत्रिमंडल की मंजूरी से देश के करोड़ों किसानों को अपने उत्पाद के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। यह कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलोग्राम का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर IPL क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। फिलहाल बारिश के कारण टॉस में देरी हो रही है। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए यह मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि बेंगलुरु जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले हमारे सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: मेरे साथ हैं प्रीति
1: और मेरे साथ हैं लोकेंद्र वर्मा
0: और कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। और इस कार्यक्रम में जानकारी भी होगी और मनोरंजन भी होगा। प्रीति बहन
1: जी,
0: देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जिसमें से ये एक योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
1: जी।
0: और इसका मेन उद्देश्य है कि भाई पानी को किस तरह से सुनिश्चित करना है और किस तरह से उसका उपयोग करना है, उसके बारे में है ये योजना है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि हर खेत तक पानी पहुंचाना, हर खेत को पानी।
1: जी बिल्कुल, जैसे कि बोलते हैं कि हर बूंद का इस्तेमाल आपकी खेती बाड़ी के लिए हो, और ऐसी कई सारी तकनीकें हैं जिससे कि हर खेत को पानी मुहैया हो सके। पानी की बचत करते हुए अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है। और अगर हम बात करें सूक्ष्म सिंचाई तकनीक जैसे कि ड्रिप है और स्प्रिंकलर है, उसको भी बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। वर्षा जल का संरक्षण करना और जल संचयन को प्रोत्साहित करना भी इसी योजना का हिस्सा है। और कहते हैं ना कि जब आप पानी की बचत करते हैं तो हर खेत को पानी मुहैया हो पाता है, जिससे कि उत्पादन जो है उसमें बढ़ोतरी होती है। और जाहिर सी बात है कि अगर उत्पादन बढ़ेगा तो जो किसान है उसकी जो आय है उसको दुगुना करने का एक प्रयास भी सार्थक होगा।
0: बिल्कुल प्रीति बहन, जैसे कि इसके लाभ भी हम अपने किसान भाइयों को बता देते हैं। इसका पानी की, सबसे पहले पानी की बचत, फसल उत्पादन में वृद्धि, सिंचाई लागत में कमी, सूखे की स्थिति में राहत और आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग करना। तो ये तो रही योजना। और अपने भाइयों को कराते हैं मनोरंजन, सुनवाते हैं भजन। कलाकार हैं हरेंद्र नागर से।

ओ खुल गई है तकड़ी बेड़ी है, ओ जब प्रभु ने माया फेरी है, खुल गई है तकड़ी बेड़ी है, सब खुले ओ सब खुले।

0: तो अभी आपने सुना हरेंद्र नागर से ये भजन, और आइए अब आपको सुनवाते हैं कृषि समाचार दर्शन के तहत ग्रीष्मकालीन फलों की खेती पर जो हमारे अनुभवी किसान हैं उन्होंने क्या कहा, और ये बातचीत है संध्या गुप्ता की। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
1: नमस्कार, कृषि समाचार दर्शन में मैं संध्या आपका स्वागत करती हूँ। कृषि समाचार दर्शन के आज के अंक में उन किसान भाइयों के अनुभव जानने की कोशिश करते हैं जो ग्रीष्मकालीन फलों की खेती कर रहे हैं।
2: नमस्कार जी, मेरा नाम ब्रजेश है और डिस्ट्रिक्ट हाथरस के एक छोटे से गांव शहजादपुर से हूं मैं। हमारा 4 एकड़ का प्लॉट है और इस 4 एकड़ के प्लॉट के ऊपर करीब 70 बेल के पेड़ लगाए हैं। बेल के पेड़ लगाने के 2 मुख्य कारण थे, एक तो आध्यात्मिक कारण है, दूसरा जो है कि खेतों की मेड़बंदी इससे बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि इसका लाइफ स्पेन बहुत ज्यादा है। इस वजह से इसको खेत की मेड़ के ऊपर चारों तरफ हमने लगाया कि इसका फल गर्मियों में ही आता है। वात और पित्त की जो जितनी भी बीमारी है उसमें सब में ये बहुत अच्छा काम करता है। लू लग जाती है उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। इसकी अगर हम कमर्शियल की बात करते हैं और प्लांटेशन की बात करते हैं तो इसका डिस्टेंस एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में 12 से 15 मीटर का डिस्टेंस हम लेके चलते हैं। मैट के ऊपर होने की वजह से किसानों के लिए अतिरिक्त आय का भी स्रोत होता है। अब जैसे हमारे यहाँ पे 70 पौधे यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, साल में इसको जब बेचते हैं तो फल खरीदने वाले ठेकेदार हैं वो आते हैं खरीदने के लिए, तो प्रति पेड़ के हिसाब से हमें वो 1,500 रुपए देते हैं। तो हमारे 4 एकड़ की बाउंड्री से हमें 1,00,000 रुपए सालाना वो फ्री का हमको मिल जाता है। बाद बाकी जो उसमें क्रॉप लगाते हैं वो अलग बात होती है, क्योंकि हमारी गौशाला है तो यहाँ पे गायों को फल बच जाते हैं। उन फलों को हम गाय को प्रतिदिन 1 लीटर की करीब शरबत के रूप में, जैसे है ना, फल इकट्ठे करते हैं तो एक जगह पे उनको छिलके के समेत उसको कूट पीस लेते हैं और उसके बाद में 1-1 लीटर जो है गाय को हम पिलाते हैं, तो इनसे गायों का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। हार्डी क्रॉप माना जाता है इसको, और क्योंकि इसका लाइफ स्पेन बहुत लंबा होता है, इसकी लकड़ी बहुत सख्त होती है, तो नॉर्मली इसमें किसी तरीके की बीमारी आती नहीं है। फलों में कभी थोड़ा बहुत महसूस होता है तो उसके लिए कुछ फल झड़ने वाली बात होती है, तो उसमें बोरन वगैरह का स्प्रे कर देते हैं तो वो फल झड़ते नहीं है उससे। जहां तक पौधा फलत पे आने की बात होती है तो पहले जो पुरानी प्रजातियां थी उनमें

0: 7 से 8 साल लग जाते थे फलक पे आने के लिए, लेकिन अब कुछ नई वैरायटी आई हैं जिनमें 4 से 5 साल के अंदर फलत शुरू हो जाती है। हालांकि जो पहली फलत शुरू होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, पूरी फलत पे आने के लिए 7-8 साल तो कम से कम पौधे को लग जाते हैं। और फिर जितना वृक्ष बड़ा होता चला जाता है उतना ही इसका प्रोडक्शन बढ़ता है। और मेरे यहाँ पे लगे हुए लगभग 21 साल हो गए, तो 21 साल में भी मैं ये देख रहा हूँ निरंतर इसका प्रोडक्शन बढ़ता ही चला जा रहा है। ये जो है थोड़ा सा पका हुआ और थोड़ा सा कच्चा फल तोड़ के ले जाते हैं जिससे कि ये खराब ना हो, और फिर उसके बाद इसको अखबार में लपेट के रख देते हैं, तो इससे जो इसका क्लोरोफिल है वो न्यूट्रलाइज होके पीला फल पड़ जाता है और 2 से 4 दिन 5 दिन के अंदर फल पक जाता है, भारी फल होता है, कटीला वृक्ष होता है। पेड़ पे चढ़ के इसको तोड़ा जाता है, और जब पेड़ पे चढ़ते हैं तो फिर जैसे त्रिपाल या पल्ली जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं वो बना लेते हैं, तो 2 लोग उस पल्ली को पकड़ते हैं और ऊपर से उस फल को सीधे उस पल्ली के ऊपर या त्रिपाल के ऊपर डालते हैं जिससे फल को चोट ना लगे। तो ये एक एक पीस बड़ी सावधानी से तोड़ा जाता है और बहुत सावधानी से रखा भी जाता है। लगभग देश के हर एक स्टेट में ये फल आसानी से हो जाता है, क्योंकि ना तो इसे सर्दी का कोई प्रभाव पड़ता है और ना ही इस पे कोई एक्सेस गर्मी का प्रभाव पड़ता है। इसकी जड़ें बहुत दूर तक विस्तृत हो जाती हैं जिसकी वजह से इसको अतिरिक्त कोई भोजन पानी देने की आवश्यकता होती नहीं है। आपकी जो फसलें होती हैं उन्हीं से इसका पोषण भी होता रहता है। जैसे मुरब्बा या कैंडी वगैरह जो बनती है तो वो कच्चे फल की बनती है, तो वो फल जो है नवंबर दिसंबर लास्ट तक वो तोड़ लेते हैं उसको बिल्कुल कच्चा, और जिन लोगों को पका के तोड़ना होता है तो वो 1 अप्रैल के आसपास पे आके इसकी तुड़ाई शुरू करते हैं। इस वृक्ष की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसको ना कोई पशु डैमेज नहीं करता है। जो आजादपुर मंडी है वो बहुत बड़ी मंडी है, वहां पे बहुत अच्छी खपत होती है। इस समय पे बेल जो है प्रचुर मात्रा में मिलते भी हैं और पकते भी हैं यहाँ पे। इसका रेट रिटेल में अगर हम बात करते हैं तो 30 रुपए 40 रुपए से लेके 60-70 रुपए तक का इसका भाव रहता है, और किसान जो इसको बेचता है वो लगभग उसको 15 रुपए के आसपास 18 रुपए के आसपास का उसको भाव मिलता है।
1: मेरा नाम गगन सैनी, कस्बा कांधला, डिस्ट्रिक्ट शामली, उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ। बागवानी करता हूँ और मेरी अपनी नर्सरी भी है। मैं ग्रीष्मकालीन सभी फलों की खेती करता हूँ, जिसमें लोकाट, आड़ू, पीच और ये सहतूत हो गया, नाशपाती हो गई, ये मेरे मुख्य है। लोकाट हमारे पास काफी है और इसको तो बिल्कुल साधारण मौसम की जरूरत है। इसकी फ्लावरिंग तो सर्दी में आती है, स्टार्टिंग होती है, फल फ्रूट की शुरुआत होती है मार्च लास्ट में और ये मई के फर्स्ट वीक तक चलता है। इसकी सिंचाई जो है हमें फरवरी मार्च अप्रैल में ही जरूरत ज्यादा पड़ती है, बाकी ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती इसको, और ज्यादा निराई गुड़ाई की भी जरूरत नहीं होती, कोई रोग बीमारी भी नहीं आती। एक तरह से ये ऑर्गेनिक होता है। नई नई वेरायटी पे मैं काम करता हूँ, 50-60 साल तक ये चल जाता है, फैलाव भी काफी होता है इसका। 32 फिट पे रखते हैं, 32x32 पे। लोकाट में 3 बार फ्लावरिंग आती है, किसी भी फ्रूट के पेड़ में 3 बार फ्लावरिंग नहीं आती। पेड़ पे चटकी ही तोड़ना पड़ता है, छोटी छोटी टोकरियां होती हैं हमारी, उनमें अखबार लगा के ही तोड़ते हैं। बड़ा नाजुक फल है वैसे तो, ये हमारा 7 केजी का बॉक्स होता है, उसमें पैकिंग करके हम इसको सुपर मंडी, आजादपुर मंडी, दिल्ली भेजते हैं। आड़ू को हम मल्टी क्रॉप में लेते हैं, जैसे हम नाशपाती का बाग भी करते हैं, आड़ू का बाग भी करते हैं, तो इसके बीच में आड़ू की 10 या 12 साल की आयु होती है, जैसे ही लोकाट या नाशपाती लगाते हैं 32 फिट पे तो उनके बीच में पेड़ डालते हैं इसके। आड़ू एक ऐसा फ्रूट है ये प्लांटेशन के दूसरे साल ही फ्रूट देना शुरू कर देता है, और ये 3-4 साल बाद 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल तक पहुंच जाता है इसका फ्रूट भी, और मार्केट में भी रेट काफी अच्छे मिलते हैं। लोकाट की मेरे पास विशेष किस्म है, इसकी मार्केट दिल्ली में ही ज्यादा है। ये खट्टा मीठा भी फ्रूट होता है, एक हमारे पास मीठा मीठा, दो वेरायटी हमारे पास है। जो खट्टा मीठे वाली वेरायटी है उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है, पेड़ से टूटने के 10 दिन बाद भी खराब नहीं होगी। आड़ू मैंने एक ऐसी वेरायटी तैयार की है जो अप्रैल के फर्स्ट वीक में पक जाएगी, हर 10 दिन बाद आड़ू पकता रहेगा, इतनी तरह की वेराइटियां हैं, और 10 जून में जाके लास्ट होगा। हाँ, सैतूत ये एक सोचने का विषय है। सैतूत के मेरे पास 5-6 प्लांट हैं, पिछले 4-5 साल से तो हम ऐसे ही तोड़ के दिल्ली मंडी ले गए थे, तो इसकी इतनी डिमांड बढ़ी कि हम मजबूर हो गए, हमें बहुत प्लांटेशन करनी पड़ रही है, हर साल बढ़ा रहे हैं हम इसके प्लांट। 1000 रुपये केजी तक हमें इसका रेट मिल जाता है, हर जगह हो जाएगा सैतूत। सभी को सैतूत की तरफ भी विशेष ध्यान देना चाहिए, ये एक पैसे कमाने का बहुत बढ़िया साधन है। ये सर्दी में ही लगाया जाता है, दिसंबर के मंथ में इसकी प्लांटेशन की जाती है, और लगाने के दूसरे साल ये फ्लोटिंग शुरू कर देता है। मेड़ पर भी इसको लगा सकते हैं, बीच में भी खेती कर सकते हैं। कोई किसान बाग लगाने की कोशिश कर रहा है तो बाग के चारों तरफ भी लगा सकते हैं। एक पेड़ जड़ से लेके कम से कम 12-13 फिट तक फैलता है, 25-26 फिट का फैलाव हो जाता है इसका भी। 10-12 साल का है वो, 1 से 2 क्विंटल तक

0: आराम से देता है। जैसे शहतूत को हुआ, बिल्कुल एक एक करके तोड़ना पड़ेगा, आधा केजी की पैकिंग करते हैं प्लास्टिक की टोकरियों में, जालीदार टोकरियां जिससे वो खराब भी नहीं होता मार्केट तक जाने में। रोग बीमारी तो कुछ नहीं आती इसमें, शहतूत में भी कोई स्प्रे नहीं करते हैं, आड़ू में कोई स्प्रे नहीं करते, लोकाट के बेसत कोई स्प्रे नहीं करते हैं, नाशपाती है इसमें भी कोई स्प्रे नहीं करते हैं हम। नाशपाती में भी हमारे पास चार पांच वेराइटियां हैं, मुनाफा तो ये काफी अच्छा है। जैसे मेरे पास 4 एकड़ में ही है ये, तो इसमें 10-12 लाख रुपए की अर्निंग मेरी हो जाती है, बहुत लोगों को रोजगार मिलता है।
1: मेरा नाम पुनीत प्रताप सिंह है, गांव कीठौर फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ। लेकिन आलू के बाद मैं तरबूज भी लगाता हूँ, खरबूज भी लगाता हूँ। गर्मी वाली फसल है, गर्म जलवायु की, और इसमें बलुई मिट्टी ज्यादा कारगर रहती है, प्रोडक्शन ज्यादा अच्छा निकलता है। दो तरीके से लगाते हैं, एक तो पूरे खेत का पलेवा करते हैं, वो उठाने के बाद उसमें हम हाथ से सीड जगह जगह जगह जगह गड़वा देते हैं, एक निश्चित दूरी 2 से 3 फुट की दूरी होती है, उसमें गड़वा देते हैं। और उसी तरीके से जो खरबूज का सीड है वो भी हम गड़वा देते हैं। लेकिन दूसरा तरीका ये है, अगर जहाँ पर पानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो हम 5 से 6 फुट पर एक खेत में नाली बनाते हैं, और वो नाली के किनारे किनारे उन सीड को लगवा देते हैं, और उसके बाद हम उसमें पानी देते हैं, जिससे क्या है कि हमारी पानी की बचत भी हो जाती है। लेकिन इस बार जो मेरा क्षेत्रफल है वो तरबूज का भी लगभग 1.5 हेक्टेयर है और खरबूज का भी लगभग 1.5 हेक्टेयर है। जो काले कलर का जो तरबूज, हल्का सा अंडाकार जो आता है, ट्रांसपोर्ट के हिसाब से बहुत मजबूत रहता है वो, तो उसी सीड को हमने चुना। फल का वजन लगभग 3 किलो से लेकर के 5 किलो तक का होता है। वो भी हम पहले जो लगाते थे मिठास उसमें कम रहती थी, लेकिन अब जो हम सीड लगाते हैं वो उनकी मिठास भी बहुत अच्छी रहती है और मजबूत भी रहते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट में भी बड़ा आसानी रहती है और मार्केट में रेट भी बहुत अच्छा मिलता है। तरबूज को तो हम उसकी हार्वेस्टिंग एक साथ कर देते हैं, उसमें आसानी ज्यादा रहती है। खरबूज के लिए तो हमें डेली या एक दिन छोड़ के उसकी हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है। तरबूज की जो बेल होती है 3 से 4 फल बड़े साइज के होते हैं, बकाया 2 से 3 फल छोटे साइज के होते हैं, और उनका वजन मान के चलिए आप 2 किलो से लेकर के 5 किलो तक रहता है, लेकिन मार्केट में हमारा 3 किलो से लेकर के 5 किलो तक के जो पैसे होते हैं वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और खरबूज पर लगभग एक बिल पर 7 से 8 फल इतने आ जाते हैं। तरबूज की हार्वेस्टिंग तो हमको पूरे खेत में एक ही बार करते हैं, और पकने का जो समय है लगभग सेम रहता है, लेकिन खरबूज के जो पकने का जो समय है वो अलग अलग रहता है सबका। एक बार खेत में जब हमारा फल तैयार हो जाएगा तो लगभग 15 दिन तक हम हार्वेस्टिंग उसकी करेंगे। बादल हो जाते हैं, बारिश हो जाती है, पूरब वाली हवाएं चलती हैं, जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, उस समय इसमें कीड़ा और ब्लाइट आने की संभावना रहती है, उसकी रोकथाम के लिए हम उसमें दवा का छिड़काव करते हैं। जब मौसम ठंडा होता है उस समय हमारा फल भी ठंडा रहता है, तो उस समय हम उसको गाड़ी में लोड कर देते हैं, उसके बाद मार्केट तक जब पहुंचता है तो वो ठंडा रहता है। और खरबूज के लिए तो हमारी हार्वेस्टिंग ज़्यादातर शाम को होती है, वो भी 3 बजे से लेकर के और 5-6 बजे तक होती है, लेकिन हमारा जो खर्चा केवल सीड का रहता है और जो भी हम उसमें दवा लगाते हैं उसका रहता है, और निराई गुड़ाई होती है उसका रहता है। तरबूज का जो प्रति बीघा का जो खर्चा है 2,000 रुपये प्रति बीघा का आ जाता है, और खरबूज में सीड भी सस्ता आता है, उसका तो मान के चलिए आप केवल 1,000 रुपये प्रति बीघा का केवल खर्चा आता है ये फसल तैयार करने का। तरबूज के लिए जिस जमीन की और जिस पानी की जो जरूरत है, उसका पीएच जो है ना वो कम होना चाहिए, जमीन भी कम पीएच वाली होनी चाहिए। खरबूज के लिए अगर थोड़ा सा पीएच बढ़ा हुआ भी है, पानी का भी पीएच बढ़ा हुआ है, फिर भी फसल उसमें हो जाती है।
2: नमस्कार जी, मेरा नाम अरुण कुमार सैनी, गांव बघरा, जिला मुजफ्फरनगर। हमारे यहाँ लीची और आम और अमरूद की खेती है जी। जो हमारा बाग है 40-50 साल का हो गया, 20 बीघे लीची की खेती है, आम की जो खेत है वो भी 20 बीघे की करीब है। वैसे हर प्रकार की मिट्टी में हो जाए लीची तो, पर दो मिट्टी जो है इसके लिए विशेषकर जो है लाभकारी हो। जो हमारे यहाँ तो नर्सरी से पेड़ है, जो सरकारी नर्सरी थी अब वहाँ से पेड़ लाए थे हम, और वहाँ से नर्सरी से लाए थे हमने जो है 40x40 से पेड़ लगा रखे इस पे। और तो खैर गवर्नमेंट की स्कीम है बागवानी जो है उसके लिए जो है गवर्नमेंट अनुदान दे रही फ्री। कुछ पेड़ हमारे 10 बीघे के जो है वो 40 साल के करीब है, कुछ पेड़ जो हमने नए लगाए जो है वे करीब 10 साल के पेड़ हो गए। मान लिया खेत में जब पेड़ लगाने हैं

0: तो उसके लिए तैयारी करनी पड़े, 2 फीट का गड्ढा खोद ले, गोबर का खाद और उसे जो खुला छोड़ दें। और तब करीब हमने लगाए, बरसात के महीने में पेड़ लगाए हमने, पेड़ इसका मरता नहीं, सिंचाई की इसकी आवश्यकता जो पड़ती है वो जैसे फल चने के बराबर हो जा तो तब इसकी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, और करीब करीब 8 दिन में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। 16 किस्म होती है इसकी, पर हमारे यहाँ जो है 3-4 किस्म है। देहरादून जो लीची होती है वो देसी बोलते हैं जिसे, एक कलकत्ती के नाम से है, फिर एक चाइनीज है मुजफ्फरपुर के नाम से, एक शाही भी है हमारे यहाँ, एक भैंसवाल है, 3-4 किस्म हमारे यहाँ है। आकार सबका अलग अलग है, स्वाद अलग है, सब इनकम भी सबके अलग अलग है। और वैसे तो इनकम में जो है आपकी देहरादून में जो है लीची वो भी बेस्ट है। बीदाना के नाम से लीची है, जो उसके अंदर बीदाना का मतलब है बीज जो है लौंग की तरह का ही होगा, और वो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगा, मीठी लगा। ये उन्होंने भैंसवाल के नाम से, मोटा या आकार बहुत मोटी होगी लीची और उसमें गुद्दा ज्यादा होगा और बीज बहुत ही लौंग जैसा होगा, तो उसका भी स्वाद अलग है। वो मार्केट में जो है उसे भी पसंद बहुत करते हैं लोग। और इसकी जो है लगभग 20 दिन का ये फल है, 20 दिन में करीब करीब समाप्त हो रहा है। तो हमारे यहाँ से 10-12 किलोमीटर मुजफ्फरनगर है, 1 दिन पहले तोड़ाई करा, अगले दिन सेल कर रहे हैं उसे, तो कोई खराबी की कोई बात नहीं आती लीची की, और सेल बहुत बढ़िया मुजफ्फरनगर में। 1 क्विंटल तक लीची लग जा एक पेड़ पर, हमारे यहाँ 100-150 पेड़ है लीची के, पूछते नहीं क्योंकि डंठल बहुत इसका मजबूत हो। लीची में दवाई का जो है वो कम है, इसके अंदर जो है सिर्फ 1-2 स्प्रे हो गए हैं फंगिसाइड की, सुंडी की जो है 2-3 स्प्रे हो जाए तो वो भी सब कॉस्टली नहीं होती, तो इसलिए खर्च बहुत कम है। मतलब एक साधारण से एक पंडित ही ली और उसमें यह पैकिंग करा और भेज दिया, तो कोई खर्च की नहीं है, आवश्यकता नहीं है इसमें। जैसे आम आता है तो पेटी में भेजो उसको, उसको पकाओ, तो वो खर्च नहीं है इसके अंदर। सबसे पुराना जो हमारे क्षेत्र में बाग था वो हमारे यहीं था, लीची के टाइम पे 20-25 आदमी हमारे यहाँ था। पत्ते से ही तो उस लीची को तोड़नी पड़ती है, डंठल को थोड़ा पत्ता लेना पड़ता है उसके साथ में। संतुष्ट है, आम की अपेक्षा लीची बहुत इनकम का स्रोत है।
1: आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि समाचार दर्शन का यह अंक यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम संयोजक शिवनंदन लाल के साथ मैं संध्या आपसे विदा लेती हूँ, अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: तो अभी आपने सुना कृषि समाचार दर्शन के तहत ग्रीष्मकालीन फलों की खेती पर ये जो हमारे अनुभवी किसान थे उनसे बातचीत, और ये बातचीत कर रही थी संध्या गुप्ता। और अगर हम आप बताना चाहते हैं कि हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आपको, तो आप इसका फीडबैक दे सकते हैं। ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। और इसी के साथ हमारा कार्यक्रम आज का कृषि जगत यहीं संपन्न होता है। सुनने वाले हमारे सभी साथियों को
3: राम राम।
2: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। और श्रोताओं, अब वक्त हो चला है हमारे गजल और कव्वाली से भरा इस कार्यक्रम का, तो आइए शुरुआत में आपको सुनवाते हैं पंकज उधास की ये गजल।

श्रुतो पंकज उधास की गाई गज़ल अभी आपने सुनी, और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवा देते हैं पंकज उधास की ही आवाज़ में एक और गज़ल।

0: श्रोताओं, इसी के साथ गजल और कव्वाली का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वाहनों का कम उपयोग करने और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने की अपील की। दिल्ली सरकार लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। यह नीति राजधानी में माल ढुलाई और आपूर्ति प्रणाली को अधिक कुशल बनाएगी। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति पर बैठक की। इस नीति का उद्देश्य दिल्ली में वॉक टू वर्क अवधारणा का विकास करना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित किए। मुख्यमंत्री ने परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को बधाई दी।

0: राष्ट्रीय महिला आयोग और दिल्ली पुलिस ने महिला सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आवश्यकता अनुसार न्यूनतम वाहनों का उपयोग करने और कार पूलिंग तथा सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने की अपील की है। इसी पहल के अनुरूप श्रीमती गुप्ता ने आज दिल्ली मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने दिल्ली के लोगों से भी ऊर्जा संरक्षण के इस राष्ट्रीय प्रयास में शामिल होने का आग्रह किया। इसी क्रम में दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने आज दिल्ली परिवहन निगम की बस में यात्रा की। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर सिंह ने दिल्ली वासियों से सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने का आह्वान किया।
1: हम अपनी दिल्ली की जनता को ये अपील करते हैं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर अग्रसर हो, दिल्ली सरकार वचनबद्ध है बेहतर सुविधा देने के लिए। ट्रांसपोर्ट विभाग इसके ऊपर सजग रहेगा कि आप जितनी सुविधा देनी है उतनी सुविधा लास्ट माइल सुविधा पर दे सके, और उसी के ऊपर काम के लिए अपील भी कर रहे हैं।
0: मंत्री कपिल मिश्रा ने भी आज दिल्ली मेट्रो से यात्रा की। श्री मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर दिल्ली सरकार ऊर्जा संरक्षण के लिए संकल्पित है। उन्होंने दिल्ली की जनता से इस वैश्विक संकट के बीच ऊर्जा संरक्षण करने का आह्वान किया।
2: प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है उस आह्वान का पालन करते हुए ईंधन बचाना, ऊर्जा का संरक्षण करना, राष्ट्रीय जो हमारा कर्तव्य है उसका पालन करना, उसका आज मुख्यमंत्री जी ने भी संकल्प लिया है और सभी मंत्रियों को अधिकारी गणों को निर्देश भी दिया है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे, सार्वजनिक यातायात का इस्तेमाल करेंगे।
0: दिल्ली सरकार लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार यह नीति राजधानी में माल ढुलाई तथा आपूर्ति प्रणाली को अधिक कुशल, तेज और कम लागत वाला बनाने के साथ साथ व्यापार को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में माल परिवहन से होने वाली भीड़भाड़ को कम करना, प्रदूषण घटाना और राजधानी को एक आधुनिक, कुशल और पर्यावरण अनुकूल लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नीति के तहत शहर के बाहर परिधीय क्षेत्रों में शहरी समेकन एवं लॉजिस्टिक्स वितरण केंद्र विकसित किए जाएंगे, जहां बड़े स्तर पर आने वाले माल को एक स्थान पर एकत्र कर आवश्यकता के अनुसार शहर के भीतर भेजा जाएगा। इस नीति के अंतर्गत बाजार स्तर के गोदाम और सूक्ष्म पूर्ति केंद्र विकसित किए जाएंगे, जिससे सामान की अंतिम चरण तक डिलीवरी तेज और व्यवस्थित होगी। उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत अंतरदेशीय कंटेनर डिपो का भी आधुनिकीकरण किया जाएगा तथा लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर, ट्रक टर्मिनल और पार्किंग हब विकसित किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA के साथ ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति पर एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि इस नीति का उद्देश्य दिल्ली में वॉक टू वर्क यानी पैदल चलकर काम पर जाने की अवधारणा पर आधारित समुदायों का निर्माण करना है। उपराज्यपाल ने कहा कि यह नीति दिल्ली के शहरी परिदृश्य और क्षितिज को एक नया रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस नीति के अंतर्गत मेट्रो और RRTS स्टेशनों के आसपास उच्च घनत्व और मिश्रित उपयोग वाले क्षेत्रों का विकास किया जाएगा, जिससे यातायात की भीड़ में कमी आएगी, शहरी गतिशीलता बेहतर होगी और किफायती आवास की उपलब्धता में वृद्धि होगी। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों, कुलपतियों और निदेशकों के साथ आज एक बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दिल्ली के शैक्षणिक संस्थाओं को नवाचार, अनुसंधान और सामाजिक परिवर्तन के इंजन के रूप में विकसित होना चाहिए। उपराज्यपाल ने आज दिल्ली यातायात पुलिस के प्रस्तावों और अवसंरचना से जुड़े कामों की समीक्षा भी की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार परिवहन व्यवस्था को और आधुनिक, पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए कार्यरत है। श्री संधू ने गलत साइड ड्राइविंग, बिना अनुमति पार्किंग और भारी वाहनों के अवैध प्रवेश जैसी समस्याओं को मिशन मोड में हल करने की जरूरत पर बल दिया। इसके लिए उन्होंने एक व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार IEC और प्रवर्तन अभियान चलाने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले सभी

0: छात्र छात्राओं को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सहित पूरे देश के विद्यार्थियों ने अपने परिश्रम, अनुशासन और संकल्प के बल पर यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि जिन विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आए हैं, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन में हर अनुभव आगे बढ़ने, सीखने और स्वयं को और बेहतर बनाने का अवसर देता है। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने भी सफल विद्यार्थियों को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बैठक के बाद सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि यह योजना भारत की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: हरियाणा के नगर निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरियाणा की जनता और विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने एक बार फिर विकास की राजनीति और डबल इंजन सरकार के सुशासन को अपना समर्थन दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कीरोडिमल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने आज दिल्ली विधानसभा का दौरा किया। विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भ्रमण करने के लिए आए छात्रों का विधानसभा परिसर में मार्गदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने इतिहास, कार्यप्रणाली तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में विधानसभा की भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त की। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने आज जनकपुरी में एक जनसुनवाई के दौरान जनता की रोजमर्रा की समस्याओं को सुना। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि जनता की सभी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव एस कृष्णन ने नई दिल्ली में आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान एक IP कैटलिस्ट और डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। सम्मेलन का विषय है पेटेंट से उत्पाद तक इलेक्ट्रॉनिक्स और IT में IP व्यवसायीकरण में तेजी लाना। श्री कृष्णन ने कहा कि देश आज विकसित भारत की परिकल्पना की दिशा में नवाचार यात्रा के महत्वपूर्ण मोड़ पर है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग और दिल्ली पुलिस के बीच आज महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संस्थागत समन्वय मजबूत करने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक के दौरान आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने समन्वित और पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत संरक्षण अधिकारियों और पुलिस के बीच बेहतर तालमेल महिलाओं को समय पर सहायता और न्याय दिलाने के लिए बेहद आवश्यक है। दिल्ली के कंझावला इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक फैक्ट्री में आज सुबह आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन विभाग के अनुसार उन्हें इस घटना की सूचना सुबह लगभग 9:54 पर मिली। खबर लिखे जाने तक दमकल विभाग के उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी DB मुखर्जी के अनुसार विभाग की 28 गाड़ियां मौके पर काम कर रही थी। उन्होंने बताया कि अब तक बिल्डिंग में काम करने वाले किसी मजदूर के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।
2: हमारे कोई भी कर्मचारी जो है इंजर्ड नहीं हुए हैं। तक जो हमें सूचना मिली है कि बिल्डिंग के अंदर काम करने वाले कोई भी मजदूर या कोई भी व्यक्ति इंजर्ड नहीं हुआ है। बिल्डिंग जिस तरह से बनाई गई है उस हिसाब से देखा जाए तो बिल्डिंग सेफ नहीं है और आसपास की फैक्ट्रियों को बिल्कुल सेफ रखा हुआ है। किसी भी फैक्ट्री में जो

0: है, आग नहीं पहुंची है।
1: दिल्ली में मॉनसून से पहले जलभराव की समस्या से निपटने के लिए तैयारियां तेजी से चल रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि राजधानी के सभी बड़े ड्रेन से 76% गाद निकाल लिया गया है। आधुनिक मशीनों, लगातार निगरानी और समयबद्ध कार्रवाई के जरिए नालों की सफाई का काम तेजी से जारी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि 29 लाख मीट्रिक टन गाद हटाने के लक्ष्य में से अब तक 22 लाख मीट्रिक टन से अधिक गाद निकाली जा चुकी है। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। प्लैटिनम पर आयात शुल्क भी 6.4% से बढ़ाकर 15.4% कर दिया गया है। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। यह फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। एयर इंडिया ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं में यह कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। दिल्ली शिकागो मार्ग, मुंबई न्यूयॉर्क मार्ग, दिल्ली शंघाई, चेन्नई सिंगापुर और दो अन्य मार्गों पर अस्थायी रूप से उड़ानें कम की जाएंगी। महाराष्ट्र में पुणे पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में एक महिला को हिरासत में लिया है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि बिबवेवाड़ी इलाके से गिरफ्तार इस महिला को प्रारंभिक पूछताछ के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दिया गया है। मेडिकल कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 की परीक्षा इस महीने की 3 तारीख को हुई थी। पेपर लीक के आरोपों के कारण इसे कल रद्द कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 1998 में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए हैं। पुलिस ने तस्करी में शामिल दो मुख्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। तस्करी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक वाहन भी जब्त किया गया है। और अब दिल्ली में मौसम। राजधानी में आज सुबह के समय कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई, हालांकि दिन भर मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने की संभावना है। हालांकि कल का अधिकतम तापमान 40 से 38 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान 28 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वाहनों का कम उपयोग करने और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने की अपील की। दिल्ली सरकार लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। यह नीति राजधानी में माल ढुलाई और आपूर्ति प्रणाली को अधिक कुशल बनाएगी। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति पर बैठक की। इस नीति का उद्देश्य दिल्ली में वॉक टू वर्क अवधारणा विकसित करना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित किए। मुख्यमंत्री ने परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को बधाई दी। और राष्ट्रीय महिला आयोग तथा दिल्ली पुलिस ने महिला सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका।

सुधो चित्रा और साथियों की आवाज़ में अभी आपने सुना ये गीत, और साथ में श्रोताओं अब ये भी सोचिए ज़रा कि क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप किसी से मिले ही नहीं हों, लेकिन एक मुलाकात में ही आपका रिश्ता इतना गहरा हो गया हो जैसे कई वर्षों या जन्मों का रिश्ता हो। इस एहसास को महसूस कीजिए और सुनिए अगला गीत।

उम्मीदों से आगे की कहानी जब आप लिखने लगते हैं तो छोटी छोटी बातें और छोटे छोटे किस्से भी इतनी गहराई तक उतर जाते हैं मानो सागर भी छोटा पड़ जाए। और श्रोताओं, जब कुछ खास लिखकर आप अपनी यादों को संजोते हैं ना, तो फिर वो वक्त बीत जाने पर दिल से आवाज़ निकलती है कि ये तो उन दिनों की बात है।

ये उन दिनों की बात है। श्रोताओं, कई बार कई मौके ऐसे आते होंगे जब आप भी कोई किस्सा याद करते होंगे और बड़ी ही आसानी से कहते होंगे कि ये तो उन दिनों की बात है। कितना मज़ा आता है ना बीती बातों को जब हम याद करते हैं, गुदगुदी सी महसूस होने लगती है। ये यादें भी ठीक उसी तरह होती हैं जैसे बड़े होने पर बचपन की तस्वीरों को देखना। हम खुद को एक आईने में पाते हैं। खैर, बचपन हो या फिर बड़प्पन, हर वक्त कोई ना कोई तो हमारे पास ऐसा होता ही है जो दिल की बातें जानता ही है।

श्रोता आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका। आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवा देते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत।

अब दिल की बातें कौन जाने भला, वही ना जो आप संग साए की तरह रहता है और किस्से कहानियों को कहता है, सुनता है। यही तो वो खूबसूरत प्रेम कहानी होती है जिसे आप अपने हम सफर संग लिखते हैं, गुनगुनाते हैं। प्रेम कहानी में मज़ा तब और भी बढ़ जाता है जब आपका साथी आपसे कहे कि मुझे कुछ तुमसे है कहना। क्या कहना है तो चलिए सुन लेते हैं।

उदित नारायण और विभा शर्मा की आवाज़ में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। और श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं श्रेया घोषाल की आवाज़ में चीनी कम है फिल्म से लिया गीत।

श्रोताओं, ये जो कई सवाल है ना कि दुनिया ऐसी क्यों है, बातें हवा क्यों है, पूछिएगा अपने साथी से। और जानते हैं, कई सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब जब आपके पास ना हो तो फिर मीठी सी बात करने लग जाओ, क्योंकि ये जो मीठी मीठी बातें होती हैं ये तमाम सवालों का जवाब होती है। जी हाँ, कई सारे सवालों के जवाब मीठी सी बातों में ही छुपे होते हैं।

0: और श्रोताओं, सोल्जर फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत से भरा ये कार्यक्रम गीतमालिका अब संपन्न होता है। कुछ ही पलों में सुनिए समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।

0: मिट्टी।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपये प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
0: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नॉन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो एलएनजी इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी, इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। CBI ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। CBI इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों, विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
2: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क

0: संपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
1: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
2: श्री जॉर्ज ने बताया कि चार यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
0: चार यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
1: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
2: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से तीन भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
4: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
5: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड।
2: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि

0: अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95.70 रुपए पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet increases minimum support prices MSP of 14 kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests 5 persons in connection with NEET UG 2026 paper leak case. Raids continue in several states. Prime Minister Narendra Modi reduces his convoy size, prompting BJP chief ministers and other leaders to adopt austerity measures. West Bengal government decides to hand over recruitment scam probes to CBI, lifts all interstate restrictions on the movement of essential products. And in weightlifting, India's Ganeshwari Yadav bags a silver and bronze at Asian Senior Championships in Gandhinagar. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support price, MSP, of 14 kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has increased the MSP of kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. He said for the Kharif season, the estimated payout to the farmers will be 2,60,000 crore rupees. He said an estimated over 824 lakh metric tons of crops will be procured during

0: US President Donald Trump arrived in Beijing today for a high-stakes summit with his Chinese counterpart Xi Jinping. During their two-day talks beginning tomorrow, the two leaders are expected to discuss a range of critical issues, including the war involving Iran, US arms sales to Taiwan, trade and artificial intelligence, and tariff amid growing economic and technological rivalry between the world's two largest economies. The US president has brought along several top business and technology executives on his visit to China, underscoring the importance of economic and technological issues in bilateral relations. In weightlifting, India's Gyaneshwari Yadav bagged two medals, a silver and a bronze, at the Asian Senior Championships in Gandhinagar today. Gyaneshwari won a silver in the snatch section in the 53-kilogram category and then an overall bronze medal in the event with a combined lift of 194 kilograms. In Thailand Open Badminton, star shuttlers PV Sindhu, Lakshya Sen and Kidambi Srikanth progressed to the pre-quarterfinals of singles events in Bangkok. In women's singles, a two-time Olympic medalist PV Sindhu defeated Tung Siu Tong of Chinese Taipei 21-9, 21-12. She will take on Amalie Schultz of Denmark in the round of 16 tomorrow. Young Devika Sehag outclassed world number 26, Natsuki Nedera of Japan. She will meet Thai player Pichamon Opatniput. In another match, Malvika Bansod beat Wen Yu Tsang of Canada. She will meet Chan Yufei of China. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heat wave to severe heat wave conditions over West Madhya Pradesh and West Rajasthan for the next 2 days. East Rajasthan, Gujarat and Maharashtra are expected to reel under heat wave conditions tomorrow. The weather agency also predicted heavy to very heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya tomorrow. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet increases minimum support prices, MSP of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests 5 persons in connection with NETUG 2026 paper leak case. Raids continue in several states. Prime Minister Narendra Modi reduces his convoy size, prompting BJP chief ministers and other leaders to adopt austerity measures. West Bengal government decides to hand over recruitment scam probes to CBI, lifts all interstate restrictions on the movement of essential products. And in weightlifting, India's Gyaneshwari Yadav bagged silver and bronze at Asian Senior Championships in Gandhinagar. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। मरकजी काबीना ने मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफा किया है। काबीना ने कोयले और लिग्नाइट को गैस में तब्दील करने से मुताल्लिक 37,500 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों को फरोग दिए जाने को भी मंजूरी दी है। CBI ने नीट UG 2026 के पेपर लीक के सिलसिले में 5 अफराद को हिरासत में लिया है। मुख्तलिफ रियासतों में छापों की कार्रवाई जारी है। वजीर आजम ने मोदी ने अपने काफिले से गाड़ियों की तादाद को कम कर दिया है, जिसके बाद BJP के वज़राए आला और दीगर रहनुमाओं ने भी अखराजात को कम करने से मुतल्लिक इकदामात किए हैं। मगरबी बंगाल हुकूमत ने भर्ती के सिलसिले में घपलों की तहकीकात CBI को सौंपने का फैसला किया है। उसने ज़रूरी सामान की नकल व हमल पर सभी बैन रियासती पाबंदियां ख़त्म कर दी हैं। और वेट लिफ्टिंग में गांधीनगर में एशिया सीनियर चैंपियनशिप में भारत की ज्ञानेश्वरी यादव ने चांदी और कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। इख्तसादी उमूर से मुताल्लिक काबीना कमेटी ने मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफे को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मरकजी काबीना मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब करते हुए इत्तलात नशियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हुकूमत ने खरीफ फसलों की MSP में इसलिए इजाफा किया है ताकि किसानों को उनकी पैदावार की माकूल कीमत को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के लिए किसानों को दी जाने वाली तखमीना रकम 2,60,000 करोड़ रहेगी। उन्होंने कहा कि इस सीजन के दौरान 824 लाख

0: कहा कि अमेरिका में स्मिथसोनियन के नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट से चुराए गए तीन भारतीय नवादरात की वतन वापसी का मकसद भारत के सकाफती विरसे की हिफाजत है। नई दिल्ली में इन तारीखी नवादरात की वापसी के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब शेखावत ने कहा कि ये कोशिश अजायब घरों में अखलाकी उसूलों को मजबूत बनाने के लिए भारत के अज्म को जाहिर करती है।
1: ऐतिहासिक एंटिक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है, उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटिक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटिक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप चीन के अपने हमनसब शी जिनपिंग के साथ सरबराह मुलाकात के लिए आज बीजिंग पहुंचे हैं। कल शुरू होने वाली अपनी दो रोजा बातचीत के दौरान इम्कान है कि दोनों रहनुमा ईरान के साथ जंग, ताइवान को अमरीकी हथियारों की फरोख्त, तिजारत और मसनूई जहानत समेत अहम मामलों पर तबादले ख्याल करेंगे। दोनों रहनुमा दुनिया की दो सबसे बड़ी मईशतों के दरमियान महसूलात और बढ़ती इकतसादी और तकनीकी कशीदगी पर भी बातचीत कर सकते हैं। वेट लिफ्टिंग में आज गांधीनगर में एशियन सीनियर चैंपियनशिप में भारत की ज्ञानेश्वरी यादव ने दो तमगे जीते, जिसमें चांदी और कांसे का एक एक तमगा शामिल है। ज्ञानेश्वरी ने 53 किलोग्राम स्नैच जुमरे में चांदी का तमगा जीता और फिर मजमूई तौर पर 194 किलोग्राम का वजन उठाकर कांसे का तमगा अपने नाम किया। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत ने बैंकॉक में मुनाकिदा सिंगल्स मुकाबलों के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफा किया है। काबीना ने कोयले और लिग्नाइट को गैस में तब्दील करने से मुतालिक 37,500 करोड़ रुपये मालियत के प्रोजेक्टों को फरोग दिए जाने की भी मंजूरी दी है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 के पेपर लीक के सिलसिले में 5 अफराद को हिरासत में लिया है। मुख्तलिफ रियासतों में छापों की कार्रवाई जारी है। वजीर आजम मोदी ने अपने काफिले से गाड़ियों की तादाद को कम कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी के वज़राए आला और दिगर रहनुमाओं ने अखराजात को कम करने से मुतालिक इकदाम किए हैं। और वेट लिफ्टिंग में गांधीनगर में एशिया सीनियर चैंपियनशिप में भारत की ज्ञानेश्वरी यादव ने चांदी और कांसे का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है।
1: दुनिया की नब्ज पश्चिमी एशिया के तेल कुओं की धड़कनों से जुड़ी है। जब इन धड़कनों में युद्ध का शोर सुनाई देने लगे तो वैश्विक बाजार की सांसें फूलने लगती हैं। लाल सागर की लहरों से लेकर तेल के टैंकरों के बदलते रास्तों तक, आज एक बार फिर दुनिया ब्लैक गोल्ड यानी कच्चे तेल की अस्थिरता के मुहाने पर खड़ी है। जब हॉर्मुज की जलधारा में हलचल होती है तो दिल्ली, मुंबई और हर भारतीय शहर की सड़कों पर उसकी गूंज सुनाई देती है। लेकिन 2026 का भारत कल की तुलना में कहीं अधिक सजग है। आज हम केवल तेल के दाम गिरने का इंतजार नहीं करते, बल्कि ऊर्जा के नए विकल्पों और सामरिक भंडारों से अपनी सुरक्षा की दीवार ऊंची कर रहे हैं। नमस्कार, चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम एशिया संकट और ऊर्जा बाजार, उभरती चुनौतियों के बीच भारत की तैयारियों पर। आज के कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत पश्चिम एशिया के इस झटके को सहने के लिए तैयार है और कैसे हमारी एनर्जी डिप्लोमेसी वैश्विक राजनीति के नए समीकरण लिख रही है। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व सीएमडी ओएनजीसी के सुभाष कुमार और ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू।
3: थैंक्स।
1: सुभाष जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। और हम सब जानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है। जो इस समय हॉर्मुज की मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत की जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति है, जिसमें रूस, इराक और अमेरिका के बीच जो संतुलन भी है, कितना प्रभावी सिद्ध हो रही है?

0: तो आनंद जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। एक्चुअली आज के दिन में भारत जो है अपनी सप्लाई के लिए होर्मुज पे ओवरली डिपेंडेंट है। इनफैक्ट यदि हम तेल का देखें तो लगभग 80% से ऊपर वो होर्मुज से आता है और 40 से 50% तो गल्फ स्टेट से आता है। एलपीजी का भी इसी हिसाब से देखें तो लगभग सारी एलपीजी इस प्रॉब्लम से पहले गल्फ स्टेट से ही आती थी। तो अब इस हालात में एक्चुअली जो एनर्जी एक का चीज है, एक और एक एस्पेक्ट है कि इस क्षेत्र में, खाड़ी क्षेत्र में, ना केवल एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट है बट यहाँ पे लगभग 1 करोड़ इंडियंस भी रहते हैं और जो कि इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज रिमिट करते थे। तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए हैं उसमें उन्होंने जो क्रूड जो सोर्सिंग है वो डाइवर्सिफाई की है और इस डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी तरह मॉलिक्यूल्स पे की सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए अमेरिका, लैटिन अमेरिका, रशिया और अफ्रीका से भी तेल जो है इंपोर्ट किया है। तो ये जो सारा एक्शन है ये अभी तक काफी सक्सेसफुल रहा है क्योंकि यदि पूरा इफेक्ट इस डिसरप्शन का पड़ता तो शायद सिर्फ इसके भरोसे एक्चुअली इंडिया में तेल और तेल के प्रोडक्ट्स की किल्लत हो सकती थी।
1: पश्चिमी एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि रोजमर्रा के जीवन में वो कैसे बदलाव लाकर इस संकट के समय देश और सरकार को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या अपील की है।
2: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें, जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आएं। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें खाने के तेल, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा।
1: नरेंद्र जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी बात ऊर्जा की होती है और भविष्य की तरफ हम देखते हैं तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व यानी एसपीआर की भी चर्चा होती है और कई सारे मंत्रालय की तरफ से ये बयान दिया गया कि भारत के पास 74 दिन, 80 दिन, 60 दिन के आसपास का रिजर्व है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम विश्लेषण के नजरिए से देखें तो विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादूर में भारत ने जो अपने नए रिजर्व की खोज की है, क्या आपको लगता है कि अगर युद्ध लंबा चला तो भारत के लिए ये 3 सेंटर्स या कुछ और सेंटर्स एनर्जी शॉक से बचाने के लिए पर्याप्त हैं?
3: देखिए, हमको देखना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का साइज क्या है। आज हम दुनिया की अगर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो लार्ज इकोनॉमी, उनमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और किसी भी अर्थव्यवस्था का, खास तौर से अगर आप विकासशील अर्थव्यवस्था है जो भारत है, उसकी जो बैकबोन होती है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो ऊर्जा होती है। बिना ऊर्जा के अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ती है। और जब विकासशील अर्थव्यवस्था जैसी होगी, खासतौर से भारत जैसी, वहां ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती है। हमारे देश में तेल की खपत जो है वो लगभग 3.5% से 4% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, क्योंकि देश का विकास हो रहा है, क्योंकि प्रगति हो रही है, क्योंकि ज्यादा लोग जो है वो जो गरीबी से बाहर आ रहे हैं, मिडिल क्लास के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए उसकी खपत बढ़ रही है। हम आज की तारीख में लगभग 57 और 58 लाख बैरल तेल प्रतिदिन उसकी हमारे यहाँ खपत है, 5.8 मिलियन रफली बैरल्स पर डे। और उसका भारी मात्रा में लगभग 53 लाख बैरल हम आयात करते हैं लगभग 42 अलग अलग देशों से। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे सामने जो है दुविधा ये होती है, क्या हम जो विकास की गति है उसको रोकें, या वो लोग जिनको अभी भी और ऊर्जा की आवश्यकता है क्या उनको हम रोक सकते हैं, या किस हिसाब से हम ऊर्जा का इस तरह का प्रयोग करें जिससे कि हमारे को दिक्कत ना हो। जहां तक अब युद्ध जो है, ये भारत ने तो शुरू नहीं किया, जैसे जो कोविड था, कोविड की शुरुआत चाइना से हुई थी, ये युद्ध तो फारस की खाड़ी से शुरू हुआ है, खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो है सबसे बड़ी दिक्कत वहां से आ रही है। तो ऐसे में भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है, ऊर्जा का उपभोक्ता है, दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, और भारी तेजी से जो आगे बढ़ने वाली

0: व्यवस्था है, तो हमारे सामने चुनौती ये हो जाती है हम इसको कैसे देखें। जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की आपकी बात करी गई, स्ट्रेटेजिक रिजर्व इसलिए बनाए जाते हैं कभी कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए कि देश के अंदर जो तेल लाने में जो है डिस्ट्रप्शन हो जाए, मतलब विदेशों से तेल लाने में दिक्कत हो, तो हम उसका प्रयोग कर सकें। लेकिन हमारा इतना विशाल देश है और इतनी तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है कि हमारी जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जिनको SPRs बोलते हैं वो हैं, लगभग 25 से 28 दिन के रिजर्व हमारे पास वो है। इसके अलावा जो तमाम रिफाइनरीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो है ऑयल टैंक फार्म्स होते हैं, उनके अंदर भी हमेशा क्रूड ऑयल जो है और प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम उन दोनों को जोड़ लें तो हमारे पास 50 से लेकर के 55 दिन के रिजर्व तो होते हैं। और दूसरा ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर ऐसे अच्छे रिलेशंस हैं, खासतौर से जो तेल के निर्यातक हैं, ऊर्जा के निर्यातक हैं, कि वह हमने जो है कहीं ना कहीं से हम तेल का इंतजाम हो रहा है। और आज भी भारत उन गिने चुने देशों के अंदर है जहां पे पेट्रोल या डीजल की कहीं कोई किल्लत नहीं है, उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है।
1: जी
0: और दाम भी भारत में अगर आप देखें अन्य देशों के मुकाबले तो काफी हुए। तो चूंकि हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं, और दूसरी बात एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, चूंकि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल के उपभोक्ता हैं
1: जी
0: और दूसरे सबसे बड़े आयातक, हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी होती है टू सिक्योर सप्लाई। लेकिन जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, कुवैत हो गया, इराक, इनके लिए आवश्यक होता है भारत से अच्छे संबंध रखें, क्योंकि उनकी एनर्जी सिक्योरिटी डिमांड से ताल्लुक रखती है। और डिमांड कहाँ सबसे ज्यादा पैदा हो रही है, वो भारत में। पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड का लीडर आज कौन है, वो भारत है। तो वो भी भारत से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, इसलिए ये भी हमको सिक्योरिटी देता है। आपने जिक्र किया एनर्जी डिप्लोमेसी का, साथ में मैंने आपको ये बताया कि हिसाब से उनके लिए भारत एक हम बाजार है, इसलिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमारा अभी तक जो देखा जाए, अब बहुत लंबा युद्ध चलता है, डिस्ट्रप्शन बहुत बड़ा हो जाता है, वो तो भविष्य के गर्भ में है, उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आज के धरातल पे जब मैं देखता हूं, ठीक है, तैयारी हमको चाहिए, कंजर्वेशन हमको करना है, तेल को हमको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन पैनिक बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है।
1: जी बिल्कुल, आपने जिस तरफ चर्चा को आगे बढ़ाया कि भारत के पास अभी पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि भारत के पास आने वाले कुछ महीनों के लिए रिजर्व मौजूद हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements. I am amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35 or 36,000 metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
1: सुभाष जी, भारत सरकार लगातार कुछ नए प्रयोग कर रही है और इसी दिशा में आज कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया कि जो कोल गैसीकरण परियोजना है उसको बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत स्वच्छ कोयला उपयोग, ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता कम होगी। हम सब जानते हैं कि आज के समय में जब तेल बिल्कुल अस्थिर हो गया है, उसकी कीमतें और रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे में दूसरे विकल्पों पर हम ध्यान दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पहल को जो आज कोल गैसीकरण योजना को मंजूरी दी गई है?
3: जैसे कि तनेजा जी ने पहले ही बताया था कि भारत एक तेजी से विकसित होती हुई इकोनॉमी है और लगभग थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल और गैस का, तो इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी का है। और इकोनॉमी को यदि ग्रो करना है तो उसके लिए एक असेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो है एनर्जी। और लकीली इंडिया में कोयले के काफी विशाल भंडार हैं, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी पहल है कि हम कोल गैसिफिकेशन अपने इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं उसको किसी तरह इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मैनर में यूज कर पाए। बिकॉज कोल के साथ जनरली ये कहा जाता है कि उससे एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है, एमिशन रेट इज वेरी हाई, बट यदि कोल गैसिफिकेशन होता है इंस्टीट्यूट तो आपको ना तो बड़ी बड़ी खदानें खोदनी पड़ेंगी और ना ही उसका जो एमिशन है वो एक पॉइंट के बियॉन्ड जाएगा। इनफैक्ट उससे ये होगा आपको दोनों एक टाइमली एनर्जी भी मिल जाएगी और एमिशन लेवल जो है ग्रोथ के लिए जो इंडिया अगेन हैज कमिटेड टू कंफर्म विद द ग्लोबल कमिटमेंट्स टू फॉर ए क्लीन एनवायरनमेंट, तो उसको भी अचीव करने में एक सहायता मिलेगी। तो इंडिया को एक्चुअली चाहे वो बायोफ्यूल हो चाहे वो

0: उसके लिए ये सब तरह के साधन, और यदि डोमेस्टिक हैं तो ये सोने पे सुहागे की तरह है।
1: हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कोयला गैसीकरण आपके लिए अगर नई चीज है तो ये होता क्या है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोयले को उच्च तापमान और दबाव पर ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से युक्त सिनी गैस प्राप्त होती है जिसे औद्योगिक उपयोग के लिए संसाधित किया जा सकता है। ये पहल भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत प्राकृतिक गैस, उर्वरक और रसायनों के आयात पर निर्भरता को कम कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना है। इस योजना के तहत प्रोजेक्ट का चयन एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है। और इसी पर और जानकारी दी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामूहिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है। कोल गैसिफिकेशन की स्कीम, इस गैस से आगे उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से एलपीजी का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं, और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी निकाले जा सकते हैं। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है। और ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है, और उतना ही देश के लिए भविष्य का बड़ा इंश्योरेंस बनता है।
1: नरेंद्र जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में इथेनॉल ब्लेंडिंग और ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर दिया है। क्या ये ग्रीन फ्यूल्स आने वाले समय में, चाहे शॉर्ट टर्म की ही हम बात करें, कच्चे तेल की कीमतों के झटके को सहने में हमारी मदद कर सकते हैं?
3: कि हम बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, जैसे मैंने पहले कहा, और हमारी अर्थव्यवस्था जो है कुल मिलाकर के फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है। फॉसिल फ्यूल का मतलब हुआ तेल, गैस और कोयला। कोयला भी फॉसिल फ्यूल होता है। पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था 80% आज की तारीख में भी वो फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है। लेकिन क्योंकि हमारी निर्भरता तेल पे, गैस पे बहुत ज्यादा है अन्य देशों के मुकाबले अगर आप देखें तो, इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे रिसोर्सेस को ढूंढें जिससे हमारी आयात पर निर्भरता कम हो सके। हालांकि ये अलग बात है कि हमारी आयात पर निर्भरता एकदम कम होने वाली नहीं है, इसलिए क्योंकि हम बहुत तेजी से, हमारा विकास हो रहा है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से उसका विस्तार हो रहा है। इसलिए आने वाले समय में हमारे देश में तेल की जो जरूरत है वो भी बढ़ने वाली है, गैस की भी बढ़ने वाली है और कोयले की भी बढ़ने वाली है। लेकिन साथ में जो है हमने इथेनॉल जो ब्लेंडिंग करके उसमें जो लगभग 20% पेट्रोल में भी वो किया जाता है, डीजल में नहीं किया जाता, पर उससे हमने आयात में थोड़ी सी निर्भरता जो है कम करी है। ठीक उसी तरीके से जो देश होता है वो भविष्य की तरफ भी देखता है, और जिसमें हाइड्रोजन को एक ऐसी ऊर्जा माना जाना है कि आने वाले समय के अंदर जो हमारा मिशन है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस, मतलब ऊर्जा की स्वतंत्रता हमको चाहिए 2047 तक, 2047 तक, उसमें हाइड्रोजन जो है एक फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है और उसमें बड़ी भूमिका वो निभाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें जिसका अभी मैंने जिक्र किया, इसका जो ये भविष्य के बारे में ज्यादा है, भविष्य का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100 साल बाद, लेकिन अभी इनको थोड़ा समय लगने वाला है, हाइड्रोजन का को भी समय लगने वाला है। लेकिन ये है कि देश उस तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जो सबसे जरूरत चीज ये है वो है कि इस समय हमारी सरकार की कोशिश कि जो ऊर्जा की गरीबी के नीचे के लोग हैं उनको कैसे ऊर्जा उपलब्ध कराया जाए, उसके तहत एलपीजी हर एक को दी गई उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत। साथ में भी ये कोशिश है कि जो चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो या वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो या जो हमारी ऊर्जा एनर्जी की आवश्यकता है, उसके लिए हमको क्या करना है, क्योंकि युद्ध जो है कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता, और खत्म भी हो जाएगा फिर भी उसका जो असर है हमारी अर्थव्यवस्था पर, विश्व की अर्थव्यवस्था पर, वो एक लंबे समय तक रह पाएगा। तो एक तरफ तो सरकार जो है इस बात की तैयारी कर रही है, फ्यूचर के लिए तैयारी हो रही है, भविष्य की तैयारी हो रही है, लेकिन साथ में जो वर्तमान है, वर्तमान में भी पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां से जो है तेल लेके आया जा सकता है, प्राकृतिक गैस लेके आया जा सकती है, उसको लाया जा रहा है। उसके लिए दो चीजों का प्रयोग करा जा रहा है। एक तो ये कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जो हमारी गुडविल है, जो G20 में हमारा दबदबा है, और इसके अलावा विकसित देशों में भी जो हमारा अच्छे संबंध है, जैसे क्वाड के अंदर है उसको, साथ में इसके अलावा ब्रिक्स के अंदर है, आपको पता है ब्रिक्स की मीटिंग विदेश मंत्री की जा रही है, जहां भी एक विषय रही रहने वाला है, उस सबका यूज करा जा रहा है जिससे कि जो तेल

0: कि जो सप्लाई है उसमें किसी तरह की बाधा ना आए, जो इस समय सरकार का सबसे बड़ा फोकस है कि सप्लाई डिसरप्शन नहीं होना चाहिए। और भारत तो उन गिने चुने देशों में है, खासतौर से विकासशील दुनिया में या ग्लोबल साउथ में, जहां अभी तक सप्लाई का डिसरप्शन आपने नहीं देखा है, खासतौर से तेल को लेकर के। एलपीजी में थोड़ी चुनौतियां आई हैं, लेकिन उसको भी काफी हद तक एड्रेस कर दिया गया है, काफी हद तक। तो मेरा ये मानना है कि हमको दो चीजें, एक तो प्रेजेंट और एक साथ में मीडियम टू लॉन्ग टर्म, और दूसरा फ्यूचर, ये तमाम चीजें जिसमें हमने जो कोल गैसिफिकेशन की बात करी, ये जो है मीडियम टारगेट्स में ज्यादा आती हैं और लॉन्ग टर्म की तैयारी में आती है कि आज से अगर 15 साल बाद, 10 साल बाद वो हालात पैदा जो आज हैं, तो हम जो है काफी हद तक उसमें बिना किसी घबराहट के उसका जो है जो सोल्यूशन है वो हम देश के अंदर ही ढूंढ पाए। देखिए, हमको ध्यान रखना पड़ेगा जो ऊर्जा सुरक्षा है, एनर्जी सिक्योरिटी, वो आर्थिक सुरक्षा या इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बुनियाद होती है, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद होती है। अगर आप तीनों सिक्योरिटीज को देखते हैं, सबके बॉटम में या बुनियाद में वो एनर्जी सिक्योरिटी होती है। एनर्जी के बिना कुछ नहीं मूव करता, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो या समाज हो, मोहल्ला हो, शहर हो, देश हो, बिना एनर्जी के कुछ नहीं चलता। और इसलिए सरकार की पूरी कोशिश है कि दुनिया में चुनौतियां आती रहती हैं, ये तो सुनामी जैसी चुनौती है। तमाम अर्थशास्त्री इसको जो है एनर्जी कोविड के नाम से बुला रहे हैं, यूरोप में कुछ अर्थशास्त्री इसको जो है इकोनॉमिक कोविड के नाम से बुला रहे हैं, लेकिन भारत ने जिस जिम्मेदारी और मुस्तैदी से इसका जवाब दिया है, देश को तैयार किया है। और अब अगर प्रधानमंत्री की स्पीच को देखें तो प्रधानमंत्री ने आम जनता से संवाद किया है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करी है खुले प्लेटफॉर्म पर। प्रधानमंत्री की ब्रेनस्टॉर्मिंग और संवाद यह है, दुनिया में ऐसा ऐसा हो रहा है और हमको उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है इतनी जरूरत ना पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री वो देश से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, खुल के जैसे डेमोक्रेसी में होना चाहिए ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि दुनिया के हालात क्या हैं और हम जो है कैसे कैसे हमने जो है इसकी तैयारी करनी चाहिए। उनके विचार जो है वो आम आदमी से साझा कर रहे हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं।
1: जी हाँ, बिल्कुल। और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की है और आने वाले वर्षों में हमें इसमें और सफलता मिलने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ग्रीन हाइड्रोजन विल अल्टीमेटली सक्सीड वेयर देयर इज लोकल डिमांड, देयर इज लोकल प्रोडक्शन एंड देयर इज लोकल कंजम्पशन, एंड देयर आर नॉट मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड एज यूनिकली क्वालिफाइड as India is to make that happen. We set ourselves a target of producing 5 million tons of green hydrogen annually by 2030, supported by strong policy frameworks and a significant financial outlay.
1: सुभाष जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब पश्चिम एशिया का संकट है और दुनिया के कई देश प्रभावित हो रहे हैं और भारत भी इससे अलग नहीं है, ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आने वाले समय में आप और किस तरह की पहल की उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या निजी कंपनियों की तरफ से?
3: जी, ये आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया। एक्चुअली जहां तक ऊर्जा सुरक्षा की बात है और जिस तरह का ये क्राइसिस है, उसमें सबको आगे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो अपने स्तर पे इमीडिएट बेसिस पे कर सकती थी वो कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अभी क्योंकि देश को आगे बढ़ना है और उसके लिए बड़ी क्लैरिटी है कि अगले 25 साल में कहाँ जाना है और 2070 तक कहाँ जाना है, वो क्लैरिटी है। तो इसके लिए मैं जो कुछ चीजें समझता हूँ कि बहुत जरूरी है, एक तो जो एनर्जी एफिशिएंसी है, टू बी एबल टू, जो एग्जिस्टिंग एनर्जी जितनी कंज्यूम हो रही है उससे जितना ज्यादा से ज्यादा वर्क या आउटपुट ली जा सके, दैट शुड बी आइटम ऑन प्रायोरिटी। जो दूसरा इशू है वो जो डोमेस्टिक एंडोमेंट्स है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उनको किसी तरह यूज करके यदि हम अपनी जो ऊर्जा की सप्लाई है उसको बढ़ा पाए। और इसमें मिसाल जैसे आपने एथेनॉल की दी, मैं एक्चुअली उससे एक स्टेप और आगे जाऊंगा। सीबीजी एक ऐसा पोटेंशियल है जो आइडेंटिफाइड है और 15 मिलियन टन का गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सतत प्रोग्राम एनविसेज किया था। टोटल पोटेंशियल जो है वो लगभग 62 मिलियन टन का है। तो अब क्योंकि इस तरह की स्थिति में वो एक एरिया होगा जहां हम ट्रिगर करें और जो सीबीजी का पूरा पोटेंशियल है उसको यूज करें, और ये सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन होगा फॉर द रीजन के सारा कंट्री लकीली सीजीडी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो आपको सेपरेट सप्लाई चेन्स नहीं बनानी है, सप्लाई चेन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। यदि आप डोमेस्टिक सप्लाई को बढ़ा सकते हैं तो देश को ही जो किसान है और जो गांव है हमारे, क्योंकि सीबीजी लार्जली उन एरियाज में प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक साधन बनेगा। तीसरा जो है, जो देश में बाकी जितने साधन है, चाहे वो हाइड्रोजन की बात हो रही है आपकी,

0: सोलर की बात है या इवन थर्मल पावर की बात है, सब जो है वो इस टाइम ट्रिगर करने के लिए एक दीर्घकालीन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आगे कोई इस तरह का डिसरप्शन आता है. ऑफ कोर्स इस बार भी इंडिया ने उसको बड़ा बखूबी फेस किया है, पर क्योंकि आने वाले समय में 10 साल बाद लेट से यदि इकोनॉमी 2.5-3 गुना हो जाती है, तो उस स्थिति में आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम से कम दुगनी होगी, और यदि वो दुगनी होगी तो आप डोमेस्टिकली कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो होना चाहिए. और एक जो बात है, जो पिछले कुछ सालों में अच्छा भला देश ने काफी ऑयल और गैस प्रॉपर्टीज भी काफी एक्वायर की थी दुनिया में, और वो एक बहुत बड़ा कुशन की तरह काम कर सकती है, तो हमें स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ऑफ एसेट्स जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा. मतलब यदि आप कोशिश करिए कि आपका अपने रिसोर्सेज हो, पर यदि वो बाई चांस आपके वो एडिक्वेट नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आपको ग्लोबली इतनी ओनरशिप है कि जब जरूरत पड़े तो आप इंडिया को भेज सकें. तो
1: जी
0: और कोल गैसिफिकेशन तो एक बहुत ही बढ़िया कदम है जो उठाया जा रहा है, और यदि इसका ही भी पोटेंशियल और कंट्रीब्यूशन काफी रहेगा,
1: जी
0: तो मैं
1: बिल्कुल
0: सोचता हूँ ये 4-5 चीजें डेफिनेटली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में होंगी, और काम ऑलरेडी चल रहा है तो ये काफी कंट्रीब्यूट करेंगी एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ.
1: और हम बात कर रहे हैं ऊर्जा सुरक्षा की और देशवासियों की चिंताओं को लेकर लगातार अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन हो रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत की क्या स्थिति है ऊर्जा को लेकर।
2: वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते, जैसा आप जानते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति, वर्ल्ड सप्लाई डिसरप्शंस हुए हैं ऊर्जा आपूर्ति में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी प्राइस वॉलेटिलिटी देखी जा रही है. परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके. और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंट्री मेंटेन है, टाइड अप है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं, और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है.
1: नरेंद्र जी, कार्यक्रम में समय बहुत ज्यादा नहीं है, आपसे एक सवाल पर संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहेंगे कि तेल की कीमतों में जो अस्थिरता का असर हो रहा है भारतीय रुपए और करंट अकाउंट डेफिसिट पर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि तेल व्यापार के लिए रुपया पेमेंट मैकेनिज्म, जिसकी चर्चा कुछ समय से चल रही है, इसको और प्रभावी बनाने से कुछ राहत मिल सकती है?
3: नहीं, अच्छा प्रश्न है और काफी इसकी चर्चा भी है, लेकिन ये जो हमारे जो कुल मिला के संबंध है पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों से, उस पर डिपेंड करेगा हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं. अमेरिका से हमारे बड़े अच्छे संबंध है, सामरिक संबंध हैं और लॉन्ग टर्म संबंध हैं, हम क्वाड के मेंबर हैं और अमेरिका को हम चाहते हैं यहाँ ज्यादा और निवेश करे, और वो जो फ्री वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, उसका अमेरिका काफी उसमें दबदबा है. और अमेरिका जो है वो पेट्रो डॉलर को मजबूत रखना चाहता है, वो बड़ी आपत्ति करता है अगर कोई लोकल करेंसीज में तेल खरीदता है. लेकिन हमको अपने राष्ट्रीय हित देखने हैं, और पिछले दिनों को हमने रूस के साथ तमाम जो डील हुई है उसमें रुपए की बड़ी भूमिका रही है, और इस तरीके की बातचीत कुछ अन्य देशों से भी चल रही है. लेकिन कुल मिलाकर के हमको बैलेंस बना के चलना होता है राजनीति के अंदर, क्योंकि तेल के बारे में कहा जाता है तेल 90% जियोपॉलिटिक्स है, तो उसमें हमको उसको भी बैलेंस रख के चलना है. लेकिन साथ साथ मुझे लगता है आवश्यक हमारे लिए यह है कि हम एक लॉन्ग टर्म जो हमारा प्लान रहेगा उस पे और थोड़ा जोर डालें, देश के अंदर जो तेल का खनन है, उत्पादन है, उसको और इंसेंटिवाइज करें, विदेशों में जाकर के जहां भी तेल के भंडारों में हम हिस्सेदारी खरीद सकते हैं उसको थोड़ा और एग्रेसिवली खरीदें, और साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी को हम काफी जोर दे ही रहे हैं, लेकिन हमको यह भी साथ में समझना पड़ेगा कि हमारी देश का जो प्रगति है, जो हमारा विकास, उससे तो हम समझौता कर नहीं सकते, और आने वाले समय के अंदर हमें और तेल की जरूरत पड़ेगी हमारी अर्थव्यवस्था को, और गैस की भी जरूरत पड़ने वाली है, और ये सारा कुछ सौभाग्य से हमारे आसपास के देशों में उपलब्ध है, खासतौर से खाड़ी के देशों में. एक नया वेस्ट एशिया बनेगा ये जब भी युद्ध समाप्त होता है, ईरान की अर्थव्यवस्था शायद खुलेगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट से जो है वहां नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सऊदी अरब का रवैया जो बड़ा कड़ा रहा है वो थोड़ा नरम पड़ेगा, तो मुझे लगता है हमारे देश के आसपास ही नई संभावनाएं जो है उनका शीघ्र जन्म होगा, और हमको देखना पड़ेगा क्या वहां से हम पाइपलाइन बना सकते हैं या हम अपने एलएनजी टैंकर बना सकते हैं, अपने टैंकर्स बना सकते हैं, बहुत सारी इसमें चीजें हैं। तो मुझे लगता है युद्ध तो है, लेकिन युद्ध में हमको देखना है कि अवसर क्या है, और हमारे इतने अच्छे संबंध है तमाम देशों से जो तेल के

0: बड़े निर्यातक हैं, और साथ में हमारी जो भारत की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, अपने विजन में बिल्कुल क्लियर है। तो मुझे लगता है कि हमको चिंता का विषय नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि समय के साथ साथ जरा थोड़ा हमको इस दिशा में खासतौर से एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ थोड़ा और स्मार्टली और तेजी से बढ़ना पड़ेगा।
1: जब हमारे आपके परिवार पर संकट आता है तो हम अपने अभिभावकों की तरफ देखते हैं और उनके दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी समझते हैं। जब पश्चिम एशिया में संकट है तो भारत के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वो टीम इंडिया की तरह एकजुट होकर इसका सामना करें। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा। हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
1: कहते हैं संकट ही समाधान की जननी है। पश्चिम एशिया की ये चुनौतियां भारत को याद दिलाती हैं कि हमारा रास्ता आत्मनिर्भरता की ओर ही जाता है। चाहे वो हमारी सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, रेलवे का सोलर विजन हो, या फिर रेगिस्तानों के नीचे छुपा हमारा सामरिक तेल भंडार, भारत अपनी सुरक्षा की कहानी खुद लिख रहा है। पश्चिम एशिया की रेत में भले ही हलचल हो, लेकिन भारत का संकल्प अडिग है। हम न केवल इस संकट से उबरेंगे बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया को एक नई राह भी दिखाएंगे। सुभाष जी आपका, नरेंद्र जी आपका, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू,
3: धन्यवाद।
1: आप ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपये प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होंगे। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सर्किल

0: तेज धुरीला सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोरेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश के रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटाले से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया है। एक अन्य फैसले में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मिले। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 153 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Cabinet Committee on Economic Affairs CCEA has approved increase in minimum support prices MSP of 14 kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has increased the MSP of kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce.
2: किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया।
3: टुडे अ मेजर डिसीजन वाज टेकन फॉर फार्मर्स फॉर ऑल खरीफ क्रॉप। द एमएसपी हैज बीन फिक्स्ड एट कॉस्ट प्लस 50% और इवन हायर। विद दिस डिसीजन फार्मर्स विल रिसीव अ टोटल पे आउट ऑफ 2,60,000 करोड़ रुपीज। द एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट फॉर दिस ईयर विल बी 824 लाख मेट्रिक टन।
2: खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
1: Mr. Vaishnav said the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesame. He said for grade A paddy the MSP will be 2461 rupees per quintal, for jowar hybrid it will be 4023 rupees per quintal, for bajra the MSP will be 2900 rupees and for tur it will be 8450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37500 crore rupees. Prime Minister Narendra Modi has said the Union Cabinet's decision of approving an increase in MSP for kharif crops for marketing season 2026-27 will ensure that crores of food providers in the country receive fair and

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 10:10 हुए हैं। कार्यक्रम माटी के रंग के अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं कलाकार अनिमेश देव का बंगाली लोकगीत।

कार्यक्रम माटी के रंग के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कलाकार अनिमेश देव की आवाज में बंगाली लोकगीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंजन में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कार्तिक कुमार का राग दरबारी काना में सितार वादन।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंजन में अभी आप सुन रहे थे कार्तिक कुमार का राग दरबारी कानड़ा में सितार वादन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि की 11 बजने को है, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नॉन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रति वर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की

0: रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष्ण रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP, for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnaw said the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesamum. He said, for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera semi-high-speed double-line project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. Prime Minister Narendra Modi has said that the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price MSP for Kharif crops for the marketing season 2026-27 will ensure that crores of food providers in the country receive fair and profitable prices for their produce. In a social media post, Mr. Modi said that this decision will bring greater prosperity to the lives of the farmers of the country. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested 5 accused persons in connection with the alleged irregularities and paper leak related to the NEET UG 2026 examination. The 5 accused persons in the case, 3 from Jaipur, 1 from Gurugram, and 1 from Nashik, and several other suspects are currently being examined. The agency has also carried out searches today at multiple locations across the country based on emerging leads. During the searches and arrests, several incriminating materials and electronic devices, including mobile phones, have been seized. The agency is also coordinating with the Special Operations Group Rajasthan, which had conducted a preliminary inquiry into the case. Prime Minister Narendra Modi

दोस्तों, नींद चुराना अगर इश्क है तो ये गुनाह हमें हर रात मंजूर है, क्योंकि अब आंखें कम सोती हैं और तुम्हारे ख्वाब ज़्यादा देखती है। कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म इश्क से। इस गीत की फरमाइश की थी दिल्ली से मैथिली कुमारी, लड्डू कुमारी और टुक टुक ने। साथ ही दिल्ली से इस गीत की फरमाइश की है नीलम वीरेंद्र सिंह, तनिष्का, रणवीर, मनीष, गीतांजलि और प्रियाशी और बेबी वेदांशी ने।

दोस्तों, प्यार अगर खूबसूरत एहसास है तो इंतजार उसकी सबसे सच्ची परीक्षा। क्योंकि जो दिल सच्चा प्यार करता है वो मिलने से पहले भी सिर्फ उसी का रहता है। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म कयामत से कयामत तक। इस गीत की फरमाइश की थी बागवान मंजिल छोटी बलिया से न्यू नूर आयशा, इकबाल अहमद, अखलाल, आमना, आशु जूही और बेगूसराय से अदीबा अफसरी, नन्हे राजा फयाज आलम, भाई शाह आलम और वली आलम जी ने।

जी हाँ दोस्तों, मोहब्बत की कीमत दौलत से नहीं होती है, ये तो बस एहसासों से निभाई जाती है। जहाँ सच्चा प्यार हो वहाँ छोटी सी दुनिया भी जन्नत नजर आती है। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म 1 2 का 4 से। इस गीत की फरमाइश की है अस्तपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक, और गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल आज़ाद ने। साथ ही उत्तराखंड से इसकी फरमाइश की थी रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन और माहिरा नूर ने।

दोस्तों, रूठना भी वहीं होता है जहां प्यार सच्चा हो, वरना लोग तो बिना एहसास के छोड़ जाते हैं। और कभी-कभी दिल सारी शिकायतें भूलकर बस उनसे मिलने को तड़प उठता है। दिल लाख कोशिश करे खुद को समझाने की, पर मोहब्बत फिर भी उसी मोड़ पे ले आती है जहां बस एक ख्वाहिश होती है, काश एक बार फिर उनसे मुलाकात हो जाए। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये बहुत खूबसूरत गीत फिल्म अकेले हम अकेले तुमसे। इस गीत की फरमाइश की थी शास्त्री नगर भीड़ सैड से किशन सप्पाल, आशा सप्पाल, सोनिया सप्पाल और विशाल ने। साथ ही उत्तर प्रदेश से इस गीत की फरमाइश की है राजेश कुमार, प्रीति, कार्तिक, आर्यन वर्मा और शिव मंदिर हकीकत पूरा माऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू ने।

जब प्यार आसान नहीं होता, उसमें खुशी भी होती है तो इंतज़ार भी, नाराज़गी भी होती है तो किसी को खो देने का डर भी, लेकिन फिर भी दिल उसी इंसान के पास लौटना चाहता है, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ पाने का नहीं, निभाने का नाम भी होती है। उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म दिल से। इस गीत की फरमाइश की थी उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज कोरवाल, कमला रानी गीतिका कोरवाल और भानु प्रकाश ने। साथ ही संभल से छोटे अंसारी और आलम अंसारी ने।

दोस्तों, प्यार की शुरुआत अक्सर ख्वाबों से होती है, जहाँ आंखें खुली होती है लेकिन दिल किसी और ही दुनिया में घूम रहा होता है। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म सिलसिला से। इस गीत की फरमाइश की थी दिल्ली से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक ने, और साथ ही इस गीत की फरमाइश की है हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी ने।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म काला पत्थर से। इस गीत की फरमाइश की थी दिल्ली नागलोई से राजेंद्र जटोलिया, उषा कृष्णा, पूजा कोमल और आरव ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश की थी बिहार से कमल किशोर शाह, अश्वनी कुमार, टिक्कू मुस्कान ने।

0: लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म पाकीज़ा से। इस गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। मैं आपकी दोस्त प्रिया अब आपसे विदा लेती हूँ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 12 बजने को है, इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में हम फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज़ 24/7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। अब कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को किसानों की आय बढ़ाने, खेती को अधिक लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिजोरम में 189 करोड़ रुपए के मिजोरम अदरक मिशन की शुरुआत की। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहुमा भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा है कि ये मिशन कृषि, ग्रामीण विकास और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालयों की योजनाओं के साथ मिलकर शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। इसके अलावा नई सरकार ने एक और महत्वपूर्ण

0: Prime Ministers, MLAs and other public representatives. Rajasthan Chief Minister Bhajan Lal Sharma also announced to reduce his convoy size. Gujarat Governor Acharya Devrat announced that he will travel within Gujarat using trains, state transport buses and public transport. Bihar Deputy Chief Minister Vijay Kumar Chaudhary has announced that he will undertake official travel only when necessary. The two-day BRICS Foreign Ministers Summit begins in New Delhi today. Ahead of the meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar yesterday held bilateral meetings with his counterparts from several countries including Russia, South Africa, Brazil, Maldives and Chile. Meanwhile, Iran's Foreign Minister Sayed Abbas Araghchi has arrived in New Delhi to take part in BRICS Foreign Ministers meeting. Government has given 1-year extension to Director of Central Bureau of Investigation CBI Praveen Sood. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders have set a target of 193 runs for Royal Challengers Bengaluru and Raipur. In reply, RCB were 172 for 3 in 17 overs when reports last came in. Put into bat first, Kolkata Knight Riders posted 192 for 4 in the stipulated 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, समय हुआ है 12:10 और 10 सेकंड। यह समय होता है बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम, जी हाँ, सुरों का सफरनामा। आज के जो गायक हैं और संगीतकार हैं, जी हाँ, बप्पी लहरी। तो आज शुरुआत कर रहे हैं एक सुंदर खूबसूरत कार्यक्रम का, जी हाँ, सुरों का सफरनामा। आज मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। नमस्कार। वाकई दोस्तों, बहुत ही सुंदर और बेहतरीन खूबसूरत कार्यक्रम होने वाला है और ये कार्यक्रम वाकई बहुत ही शानदार है, बेहतरीन है, लाजवाब है। तो शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की सुरों का सफरनामा से। जी हाँ साथियों, संगीत बदल गया है। जी हाँ, संगीत बदल गया है वाकई। किस मायने में बदल गया है ये आपको बताएंगे हम। जी हाँ, सबसे पहले आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक सुंदर, बेहद खूबसूरत गीत से।

जी हाँ, एक नई दुनिया बसाएं। जी हाँ, पहला गीत हमने सुनवाया था, बहुत ही प्यारा, सुंदर और बेहद खूबसूरत गीत। जी हाँ, शुरुआत हमने की थी इस शानदार, बेहतरीन, क्योंकि सभी साथियों को चांद पर जो लेकर जाना है ना, कितना सुंदर, प्यारा, मोहब्बत भरा, प्यार से लबरेज, खूबसूरत गीत। या दोस्तों, सुरों की महफिल सजी है, यादों की शमा जली है, एक ऐसा फनकार जिसने संगीत को सिर्फ सुना नहीं बल्कि पहचाना, जी हाँ, या फिर पहनाया उसे चमकता हुआ सोना। जी हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आकाशवाणी के इस बेहद खास कार्यक्रम सुरों का सफरनामा में आपका मेजबान मैं, यानी कि ललित कुमार, आपका दिल से स्वागत करता है। आज की ये शाम समर्पित है उस संगीत के जादूगर को, जी हाँ, जिसने भारतीय फिल्म संगीत में डिस्को की ऐसी धुनें घोली कि पूरी दुनिया झूम उठी। वो सिर्फ संगीतकार नहीं थे, वो एक दौर थे, एक अंदाज थे, एक चमकता हुआ सितारा थे। जी हाँ दोस्तों, आज का ये खास सफर समर्पित है संगीतकार, गायक और गोल्डन मैन बप्पी लहरी को। आइए सुनवाते हैं एक और बेहतरीन खूबसूरत गीत, और फिर बहुत ही प्यारी प्यारी खूबसूरत उनके बारे में जानकारियां बताएंगे। उससे पहले एक शानदार गीत और आ रहा है।

जी हाँ दोस्तों, दिल तो दिल है वाकई। कभी हाँ कहिए कभी ना कहिए, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ, बप्पी लहरी संगीतबद्ध किया हुआ शानदार खूबसूरत गीत। जी हाँ, सभी गीत बप्पी लहरी के संगीतबद्ध किए हैं और खुद गायक भी रहे हैं बप्पी लहरी साहब। कुछ लोग किताबों में दर्ज हो जाते हैं, कुछ लोग किताबों में दर्ज हो जाते हैं, कुछ दिलों में बस जाते हैं, मगर कुछ फनकार ऐसे भी होते हैं जो धड़कनों की ताल बन जाते हैं। जी हाँ, जिनके सुरों पे थिरकती रही ये दुनिया सारी, जिनके सुरों पे थिरकती रही ये दुनिया सारी, वो नाम है बप्पी दा, संगीत की चमकती सवारी। क्या बात है। तो आइए बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। उससे पहले हम उनके बारे में बताए देते हैं, थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। बप्पी लहरी, उनका जीवन परिचय की हम बात करें तो जन्म 27 नवंबर 1952, जी हाँ 1952 को हुआ, और जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में। पिता अपरेश लहरी, ये प्रसिद्ध बंगाली गायक। माता रही उनकी, उनका नाम है बंसरी लहरी, शास्त्रीय गायिका। पत्नी चित्रानी लहरी और उनके पुत्र बप्पा लहरी और पुत्री रीमा लहरी। और बप्पी दा का असली नाम था आलोकेश लहरी। जी हाँ दोस्तों, संगीत उन्हें विरासत में मिला था। महज 3 साल की उम्र में तबला बजाना शुरू कर दिया था। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत और फिर बताएंगे और बहुत सारी जानकारियां। बस बने रहिए हमारे साथ।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर बेहद खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ, बप्पी लहरी के संगीत बद किया हुआ शानदार खूबसूरत गीत। जी हाँ दोस्तों, साथियों अगर हम बात करें संघर्ष की, तो उनकी जो शुरुआत हुई थी मुंबई में, कदम रखना आसान नहीं था। लेकिन बप्पी दा के भीतर सुरों की

आग थी जो 1973 में फिल्म नन्ना शिकारी से शुरू हुई थी, लेकिन असली पहचान मिली चलते चलते डिस्को डांसर, शराबी, डांस डांस जैसी फिल्मों से। उन्होंने भारतीय संगीत के संगीत में डिस्को बीट को नया आयाम दिया। जी हाँ दोस्तों, वाकई संघर्ष हर इंसान की जिंदगी में होता है, बस घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ डटकर उनको उनका सामना करना होता है और जो मन में ठाना है उसे परिणाम तक पहुंचाना भी है ना। तो आइए बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत गीत सुनवाते हैं आपको। बहुत ही प्यारा गीत है, बहुत ही सुंदर, लाजवाब है।

जी हाँ जी हाँ, तू भी बेकरार और मैं भी बेकरार। या दोस्तों, हम बात कर रहे थे बतौर संगीतकार चलते चलते, मेरे गीत याद रखना चलते चलते, और प्यार मांगा है तुम्ही से, कॉलेज अ गर्ल का एक सुंदर गीत है, और मुंबई से आया मेरा दोस्त दोस्त को सलाम करो। जी हाँ, बहुत ही सुंदर सुंदर गीतों को संगीत दिया है हमारे, जी हाँ, किन की बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं बप्पी लहरी साहब की। थोड़ा रेशम लगता है तो ये भी एक बहुत ही सुंदर गीत है। तो फिलहाल हम सुनवा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा कॉलेज गर्ल से सुंदर खूबसूरत गीत आ रहा है आपके पास, तो हो जाइए तैयार इस सुंदर बेहतरीन गीत के लिए।

जी हाँ साथियों, बहुत ही मार्मिक और बेहद खूबसूरत गीत। ऐसे तमाम गीत हैं जो कॉलर्स गर्ल के बने हुए हैं वाकई, जिसमें एक बहुत ही प्यारा गीत है, प्यार मांगा है तुम्ही से ना इकरार करो। वाकई बहुत ही सुंदर है, बम्बई से आया मेरा दोस्त। थोड़ा रेशम लगता है, थोड़ा। जी हाँ, फिल्म ज्योति से। वाकई बहुत ही प्यारा गीत। साथियों, 70 का दशक वो दौर था जब हिंदी संगीत रोमांस और मेलोडी से सजा हुआ था, और ऐसे में एक युवा संगीतकार आया जिसने धुनों में नई ताजगी भर दी। वाकई बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत संगीत से सजाया है, और दिल को छू लेने वाला एक और नगमा आ रहा है। बहुत ही प्यारा खूबसूरत नगमा है, और ये गीत अपने आप में बहुत ही सुंदर है।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर। सुन सुन सुन मेरी सोनी, वाकई बहुत ही प्यारा खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं और भी खूबसूरत जानकारियों की ओर। और क्या कहें, 1980 आपकी जगह अगर लिख रहे थे, लेकिन इसके पीछे सिर्फ स्टाइल प्रेरणा भी थी, और वो अमेरिका अमेरिकी गायक एल्विस प्रेस्ली से भी बेहद प्रभावित रहे। और उन्होंने कहा था, अगर मैं सफल हुआ तो मैं भी सोना पहनूंगा। और फिर दुनिया ने देखा संगीत का वो चमकता सितारा जो सोने से लदा रहता था, लेकिन दिल से बेहद सरल इंसान था। 1980 के दशक में डिस्को का स्वर्णिम दौर रहा। 80 के दशक आते आते बप्पी दास सिर्फ संगीतकार नहीं रहे, वो युवाओं की धड़कन बन चुके थे। सुपरहिट गीत बहुत ही सुंदर, जैसे कि आई एम ए डिस्को डांसर। जी हाँ, डिस्को डांसर फिल्म 1982 प्रदर्शित फिल्म रही। झीमी झीमी आजा आजा, रात बाकी बात बाकी, नमक हलाल, दे दे प्यार दे, शराबी और यार बिना चैन कहाँ रे, पगे घुंघरू बांध मीरा नाची थी, नमक हलाल से। और वाकई बहुत इतने सुंदर बेहतरीन गीतों में जो सजाया था संगीत से अपने, वाकई बहुत ही कमाल, बहुत ही धमाल। इंतहा हो गई इंतजार की, वाकई बहुत ही सुंदर सुंदर गीत, लाजवाब गीत रहे हैं। और वाकई

कहना पड़ेगा कि हाँ, बपीदा की बात ही कुछ अलग है ना। दोनों में बिजली, आवाज में खुमारी थी, हर बीट में जैसे जवानी की सवारी थी। जब बप्पीदा का संगीत बजता था, हर महफिल खुद बखुद डिस्को बन जाती थी। बतौर गायक बप्पी लहरी लोकप्रिय गीत जैसे कि याद आ रहा है, बंबई से आया मेरा दोस्त, तम्मा तम्मा लोगे, ओ लाला, बंकास, तूने मारी एंट्री, तो वहां के इतने सुंदर सुंदर गीतों को सजाया है और इतने सारे गीतों को संगीत दिया है जिसकी कोई हद नहीं है। उनकी आवाज में एक अलग सी मस्ती थी जो सीधे दिल और दोनों को हिला देती थी। और यदि हम बात करें उनकी, ये तो जानकारियां बहुत सारी हैं और गीत भी बेशुमार हैं। फिल्म डिस्को डांसर गीत जिमी जिमी आजा जैसे सिर्फ भारत में नहीं बल्कि रूस, चीन और कई देशों में बेहद लोकप्रिय हुआ। रूस में तो लोग बप्पी दा को डिस्को किंग ऑफ इंडिया कहते थे, है ना। तो कुछ गीत सुनवा रहे हैं और ज्यादा तो नहीं क्योंकि समय बहुत कम होता है, इजाजत नहीं देता है इतने सारे जानकारी के लिए, लेकिन फिर भी थोड़े से समय में कोशिश करते हैं हम कि बस ज्यादा से ज्यादा जानकारियां आपको बताई जाएं, है ना। फिलहाल हम सुनवाते हैं एक और खूबसूरत गीत।

जी हाँ, हम हैं आज के अंगारे। वाकई बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ सॉन्ग। साथियों, अवार्ड्स अवार्ड्स की बात करें तो न जाने कितने ही अवार्ड्स उन्होंने अपने नाम करवाए हैं। प्रमुख पुरस्कार जो मिला था उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और मिर्ची म्यूजिक अवार्ड भी मिला, और कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिला है उन्हें। उन्होंने लगभग 500 से अधिक फिल्मों में संगीत दिया और हजारों गीत रिकॉर्ड किए। 1990 और आगे का दौर जो लोकप्रिय गीतों का था, तम्मा तम्मा लोगे, धक धक करने लगा, सात समंदर पार और गुटर गुटर ऊ लाला, इस प्रकार के कुछ गीत थे। और वक्त बदलता गया, संगीत बदलता गया, लेकिन बप्पी दा का जादू कभी कम नहीं हुआ। नई पीढ़ी भी उनके सुरों पर उतनी ही झूमी जितनी पुरानी पीढ़ी, है ना साथियों। कुछ अनसुनी सी, कुछ भावुक कर देने वाली खूबसूरत बातें भी हैं। कुछ आवाजें कभी बूढ़े नहीं होती हैं, कुछ धुनें कभी पुरानी नहीं पड़ती हैं, और कुछ कलाकार कभी इस दुनिया से नहीं जाते। साथियों, उनका निधन 15 फरवरी 2022 मुंबई में हुआ था। उनके जाने से संगीत जगत

में एक बड़ा खालीपन आ गया। लेकिन उनके गीत आज भी हर पार्टी, हर महफिल और हर दिल में जिंदा है। और विशेष ट्रिब्यूट की बात करें, सेगमेंट की बात करें, तो सदाबहार गीतों की सूची की हम बात करें तो बहुत सारे बेशुमार गाने हैं। वर्ष के अनुसार यदि हम बताएं तो 1976 जो फिल्म आई थी चलते चलते, शानदार गीत, और 1982 का सुंदर खूबसूरत गीत डिस्को डांसर, नमक हलाल 1984, शराबी 1985, एडवेंचर ऑफ टार्जन 1987, डांस डांस 1989, कमांडो 1990, थानेदार 1994 और दलाल 2011, द डर्टी पिक्चर। जी हाँ, और क्या कहें, बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत के साथ हम छोड़े जा रहे हैं। और आज के कार्यक्रम, जी हाँ, सुरों का सफरनामा में आज मैं था आपके साथ, आपका दोस्त ललित कुमार। तो ललित कुमार को दीजिए अनुमति, छोड़े जा रहे हैं खूबसूरत गीत के साथ, जिसने सुरों को चमक दी, जिसने धड़कनों को थिरकन दी। दो फनकार भले ही दूर चला गया, वो फनकार भले ही दूर चला गया, मगर अपनी धुनों में पूरी दुनिया को जिंदगी दे गया। कुछ लोग जाते हैं तो यादें छोड़ जाते हैं, कुछ कलाकार जाते हैं तो दौर छोड़ जाते हैं। बप्पी दा भी एक ऐसा ही नाम है जो संगीत का सुनहरा और सुनहरा दौर छोड़ गए। कार्यक्रम का आज के सुरों का सफरनामा ने में हमें याद किया है कि महान संगीतकार को, जिसने भारतीय संगीत को नई पहचान दी और नई धड़कने दी, नई चमक दी। बप्पी लहरी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि संगीत की वो चमक है जो कभी फीकी नहीं पड़ती है। तो आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है, छोड़े जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर गीत के साथ। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। इस कार्यक्रम में मैं था आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। साथियों, एक बजने को है, कुछ ही पलों में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को किसानों की आय बढ़ाने, खेती को अधिक लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। इसके अलावा नई सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच जारी है। CBI ने कल इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव CB जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। 2 दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मालदीव और चिली के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वे ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved increase in minimum support prices for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnav said the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesamum. He said for grade A paddy, the MSP will be 2461 rupees per quintal, for Jowar hybrid it will be 4023 rupees per quintal, for Bajra the MSP will be 2900 rupees and for Tur it will be 8450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs CCEA has approved Ahmedabad, Sarkhej, Dholera semi-high-speed double-line project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. Prime Minister Narendra Modi has said that the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price for Kharif crops for the marketing season 2026-27 will ensure that crores of food providers in the country receive fair and profitable prices for their produce. In a social media post, Mr. Modi said that this decision will bring greater prosperity to the lives of the farmers of the country. The Central Bureau of Investigation has arrested five accused persons in connection with the alleged irregularities and paper leak related to the NEET UG 2026 examination. The five accused persons in the case, three from Jaipur, one from Gurugram and one from Nasik, and several other suspects are currently being examined. The agency has also carried out searches yesterday at multiple locations across the country based on emerging leads. During the searches and arrests, several incriminating materials and electronic devices, including mobile phones, have been seized. PM Modi's appeal to reduce the consumption of fuel has made a profound influence, resulting in curtailing the use of petrol and diesel. Setting an example, the PM himself significantly reduced his convoy size, prompting several BJP chief ministers and other leaders to adopt similar measures. In keeping with the PM's appeal, UP Chief Minister Yogi Adityanath has directed an immediate 50% reduction in the fleet of vehicles. Madhya Pradesh CM Mohan Yadav has also announced that he will use a minimum number of vehicles for his convoy and asked his ministerial colleagues to do the same. Delhi CM Rekha Gupta has announced limits on official vehicles used by ministers, MLAs and other public representatives. Rajasthan Chief Minister Bhajan Lal Sharma also announced to reduce his convoy size. Gujarat Governor Acharya Devrat announced that he will travel within Gujarat using trains, state transport buses and public transport. Bihar Deputy CM Vijay Kumar Chaudhary has announced that he will undertake official travel only when necessary. The two-day BRICS Foreign Ministers' Summit begins in New

0: Delhi today, ahead of the meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar yesterday held bilateral meetings with his counterparts from several countries, including Russia, South Africa, Brazil, Maldives, and Chile. Meanwhile, Iran's Foreign Minister Syed Abbas Araghchi has also arrived in New Delhi to take part in BRICS Foreign Ministers' meeting. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting, which will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today. They will also call on PM Modi. Government has given 1 year extension to Director of Central Bureau of Investigation CBI Praveen Sood. According to an official order issued by the Department of Personnel and Training DOPT, the Appointments Committee of the Cabinet yesterday gave its nod for the extension to Mr. Sood as Director of the Investigation Agency beyond 24th of this month. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, समय हुआ है 1:10 और 10 सेकेंड। ये समय होता है बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का। जी हाँ, गीत सुनहरे, गोल्डन एरा, ओल्ड सॉन्ग्स, हिंदी सॉन्ग्स, गोल्डन एरा यानी गीत सुनहरे, हिंदी फिल्म, गीत, संगीत, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन कार्यक्रम होता है। और ये कार्यक्रम वाकई गोल्डन एरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तरीके से देखा जाए सोने जैसा ये खूबसूरत कार्यक्रम होता है। एक से एक सुंदर बेहतरीन खूबसूरत रचनाएं होती हैं, जो रेयर सॉन्ग्स होते हैं। आज भी न जाने कितने हजार लोग, लिसनर्स या श्रोता साथी सुनते हैं, और रात को ही नहीं 24 घंटे कहीं ना कहीं कोई ना कोई साथी कार्यक्रम सुनता ही है वाकई। क्योंकि पुराने जितने भी साथी रहे हैं इस जीवन में, आज भी जो बाकी रह गए हैं, तो वाकई उनका मन बिना गीत सुने रहता ही नहीं है, है ना? क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है उन गीतों में। एक से एक बेहतरीन गीतकार, संगीतकार, अदाकार, अदाकारा, न जाने कितने ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी फनकार हैं, एक से एक बेहतरीन खूबसूरत रचनाओं का निर्माण करते आए हैं। तो आज भी वो गीत वाकई बहुत ही सुनहरापन देता है, अपनापन देता है। ऐसा लगता है कि वो गीत आपका नहीं, हमारा है, है ना? तो आज मैं हूँ आपके साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम में, आपका दोस्त ललित कुमार। तो आइए सुनवाते हैं बहुत ही सुंदर एक खूबसूरत गीत से शुरुआत कर रहे हैं हम। स्वागत है सभी साथियों का इस बेहतरीन कार्यक्रम में। नमस्कार।

जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। जी हाँ, फिल्म बैजू बावरा से मोहम्मद रफ़ी साहब की खूबसूरत आवाज़, मार्मिक लाजवाब गीत। बैजू बावरा फिल्म 1952 प्रदर्शित फिल्म रही और गीतकार रहे शकील बदायूं ने और संगीत था नौशाद का। तो बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर।

जी हाँ साथियों, अभी सुन रहे थे बहुत ही प्यारा गीत ठंडी हवा के झोंके, भाई बहन फिल्म से शमशाद बेगम की आवाज़ में सुंदर रचना। भाई बहन फिल्म 1950 प्रदर्शित फिल्म रही और संगीत से सजाया था इस शानदार गीत को श्याम सुंदर ने। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर।

0: जी हाँ श्रोता साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर गीत। साथियों, इन्हीं गीतों के साथ आज का गीत सुनहरे कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए अनुमति। 2 बजने को हैं, अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। 2 दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मालदीव और चिली के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वे ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच जारी है। सीबीआई ने कल इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने केंद्र सरकार से मेडिकल कार्यक्रमों में नीट आधारित प्रवेश प्रक्रिया समाप्त करने और राज्यों को 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर दाखिला देने की अनुमति देने की मांग की है। उन्होंने इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का भी हवाला दिया। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। इसके अलावा नई सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आलू, प्याज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, समय हुआ है 2:10 और 5 सेकंड। साथियों, ये समय होता है बहुत ही सुंदर, बेहद खूबसूरत, जी हाँ, गीत बहार, म्यूजिक ऑफ नॉन स्टॉप, जी हाँ, बिना रुके, बिना किसी हडल के सुंदर खूबसूरत कार्यक्रम गीत बहार। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम की पहली सुंदर खूबसूरत रचना।

0: बस और नहीं।
1: यार यार करना है तो फिर रुसवाइयों का गम नहीं, सारी महफिल जान ले के हम किसी से कम नहीं।

लड़की ना अपना नाम बताती है और ना पता। लेकिन मैं जनता के सामने और सब अफसरों के सामने भगवान को साक्षी बनाकर ये ऐलान करता हूं कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा। ये मुबारकबाद उधर क्यों दे रहे हैं?

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। साथियों, कार्यक्रम चल रहा है गीत बहार। गीत बहार कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति आ रही है और सुनते हैं ये शानदार बेहतरीन गीत आज के कार्यक्रम की अंतिम रचना।

0: इसी गीत के साथ गीत बहार कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए अनुमति। 3 बजने को हैं, अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद

0: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। 2 दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मालदीव और चिली के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग़ची कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। वे ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच जारी है। सीबीआई ने कल इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने केंद्र सरकार से मेडिकल पाठ्यक्रमों में नीट आधारित प्रवेश प्रक्रिया समाप्त करने और राज्यों को 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर दाखिला देने की अनुमति देने की मांग की है। उन्होंने इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का भी हवाला दिया। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद आज 12वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम घोषित करेगी। परिणाम सुबह 11 बजे घोषित किए जाएंगे। विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से नतीजे देख सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 20वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Ashish Abraham. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved increase in minimum support prices for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices for the growers for their produce. Mr. Vaishnav said the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesamum. He said for grade A paddy, the MSP will be 2461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2900 rupees, and for Tur, it will be 8450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad-Sarkhej-Dholera semi-high-speed double line project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. PM Modi has said that the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price for Kharif crops for the marketing season 2026-27 will ensure that crores of food providers in the country receive fair and profitable prices for their produce. In a social media post, Mr. Modi said that this decision will bring greater prosperity to the lives of the farmers of the country. The two-day BRICS Foreign Ministers Summit begins in New Delhi today. Ahead of the meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar yesterday held bilateral meetings with his counterparts from several countries, including Russia, South Africa, Brazil, Maldives, and Chile. Meanwhile, Iran's Foreign Minister Sayed Abbas Araghchi has also arrived in New Delhi to take part in BRICS Foreign Ministers' meeting. BRICS Foreign Ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting, which will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today. They will also call on PM Modi. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal yesterday held a meeting with Maldives' Foreign Minister Irutisham Adam in New Delhi. In a social media post, Mr. Goyal said during the meeting, both leaders reaffirmed the strong and special partnership between India and Maldives as the two nations mark 60 years of diplomatic ties. He added that their discussions focused on expediting negotiations for the India-Maldives Free Trade Agreement, advancing the bilateral investment treaty, promoting trade settlements in local currencies, and deepening cooperation across tourism, digital payments, and business-to-business linkages. The Central Bureau of Investigation has arrested five accused persons in connection with the alleged irregularities and paper leak related to the NEET UG 2026 examination. The five accused persons in the case, three from Jaipur, one from Gurugram and one from Nasik, and several other suspects are currently being examined. The agency has also carried out searches yesterday at multiple locations across the country based on emerging leads. During the searches and arrests, several incriminating materials and electronic devices, including mobile phones, have been seized. The Enforcement Directorate yesterday conducted searches at various locations in Punjab, Uttar Pradesh and Delhi NCR against Patent Services Private Limited in an alleged cyber fraud case. According to the ED officials, these searches were conducted under the Prevention of Money Laundering Act and pertains to alleged cyber fraud cases. The officials said that substantial cash, valuables, electronic devices and other incriminating evidences have also been seized during the raids. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 3:10 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गजल। इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं हरिहरन की आवाज में ये गजल, रात खामोश थी।

अभी आप सुन रहे थे हरिहरन की आवाज में गजलें, और लीजिए अब सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में गजल। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं आपको देखकर, ये गजल आपके लिए।

0: की आवाज में इस गजल के साथ ही आज का गजलों का ये कार्यक्रम होता है यही संपन्न आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 4 बजे हैं।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 4:20 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कर्नाटक संगीत पर आधारित कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं वायलिन वादन, कलाकार हैं M. चंद्रशेखरन। आपने प्रस्तुत किया है रागम शुभा पंतवरली जो रूपकम ताल में निबद्ध है। आपके साथ घटम पर संगत किया है सुकन्या रामगोपाल ने और संगीत दिया है मथुस्वामी दीक्षितर ने। तो लीजिए प्रस्तुत है M. चंद्रशेखरन का वायलिन पर राग शुभ पंतवरली।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे वालन वादन। कलाकार थे एम चंद्रशेखरन। आपने प्रस्तुत किया रागम शुभ पंतु वरली, जो रूपकम ताल में निबद्ध था। वंदे मातरम।

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम में 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर आज बृहस्पतिवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 24वीं तिथि तदनुसार 14 मई 2026 सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। आज का योग होगा गोमुखासन। स्वररंजनी का कार्यक्रम होगा 5:30। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे हर्षवर्धन का बांसुरी वादन। आज आप प्रस्तुत करेंगे राग ललित। 5:10 का समय रहेगा वंदना का। 5:40 पर सुनेगा चिंतन चैतन्य महाप्रभु के जीवन से प्रसंग। 6:45 पर रामचरित मानस से पाठ के अंतर्गत आज आप सुनेंगे बालकण का भाग 55।

7:10 पर संगीति का ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। आज आप सुनेंगे भजन, कलाकार होंगे सत्येंद्र नाथ। गीतो भरी गुड मॉर्निंग, इस कार्यक्रम का आनंद आप ले सकेंगे सुबह 7:30 बजे। 8:45 पर सुनेगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे संतूर वादन, कलाकार होंगे पंडित अभय रुस्तम सोपोरी। 9:15 पर सुनेगा उद्योग पत्रिका कार्यक्रम और 9:30 बजे मिट्टी दी महक पंजाबी कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे। आज प्रस्तुत करेंगी हरजीत कौर। 10:10 का समय रहेगा आपकी पसंद फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सुनेगा।

0: 11:10 पर स्वरांजलि ये कार्यक्रम आज आप सुन सकेंगे। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गिटार वादन, कलाकार होंगे सलील भट्ट और तबले पर रहेंगे अभिषेक मिश्रा। 12:10 पर समय रहेगा महिला कार्यक्रम घर आंगन का। 1:10 पर सुनेगा एक ही फिल्म से, आज की फिल्म रहेगी बेताब। और 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार और आज के कलाकार होंगे नसीर हुसैन। 7 थी आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह के 5 बजने वाले हैं, लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज ढोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धुलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। 2-दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मालदीव और चिली के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम

से और एक व्यक्ति को नाशिक से गिरफ्तार किया गया है। असम सरकार इस महीने की 26 तारीख को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया को ये जानकारी दी। श्री शर्मा ने कहा कि असम विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे। उन्होंने बताया कि सत्र के अंतिम दिन यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले पड़ाव में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करेंगे, जिसके लिए वे कल अबुधाबी पहुंचेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री अगले चरण में नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री की ये यात्रा कल से इस महीने की 20 तारीख तक जारी रहेगी। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान के साथ जारी युद्ध के दौरान संयुक्त अरब अमीरात की गुप्त यात्रा की और वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात की। इसकी पुष्टि आज उनके कार्यालय ने की। प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार नेतन्याहू ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बातचीत की। बयान में कहा गया है कि इस बैठक से इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात के संबंधों में ऐतिहासिक प्रगति हुई है। हालांकि इस प्रगति से जुड़े किसी विशेष विवरण का खुलासा नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन घटनाओं का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट खोकर मुकाबला जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंदों पर नाबाद 105 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग सिंग टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क की अमाली शूल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियनशिप किदांबी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो किन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका मुकाबला चीनी ताइपे के सूली यांग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड इंक्रीज इन मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस फॉर 14 खरीफ क्रॉप्स फॉर मार्केटिंग सीजन 2026-27। Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has increased the MSP of kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce.
1: किसानों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया।
2: अ मेजर डिसीजन वॉज टेकन फॉर फार्मर्स फॉर ऑल खरीफ क्रॉप। द एमएसपी हैज बीन फिक्स्ड एट कॉस्ट प्लस 50% और इवन हायर। विद दिस डिसीजन फार्मर्स विल रिसीव अ टोटल पे आउट ऑफ 2,60,000 crore रुपीज। द एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट फॉर दिस ईयर विल बी 824 lakh मेट्रिक टन।
1: खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 lakh मेट्रिक टन।
0: Mr. Vaishnav said the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesame. He said for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal, for Jowar hybrid it will be 4,023 rupees per quintal, for Bajra the MSP will be 2,900 rupees and for Tur it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also

कर बैठें, यानी आसन पर आप सीधे बैठें और अपने पैरों को सीधे ले जाएं अपने सामने, एड़ी और पंजों को आपस में मिलाकर बैठें, हाथ कमर से सटे हुए और हथेलियां भूमि पर टिकी हुई, नजरें एकदम सामने। अब अपने बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें, दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। इस स्थिति में दोनों झंगाएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी, जो त्रिकोण आकार में नजर आएंगी। आप समझ रहे हैं ना, सबसे पहले अपने बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें। अब दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। इस स्थिति में दोनों झंगाएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी और दिखने में ये त्रिकोणाकार नजर आती हैं। फिर श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दाहिने कंधे को ऊपर खींचते हुए हाथ को पीछे पीठ की ओर ले जाएं। इसके बाद बाएं हाथ को पेट के पास से पीठ के पीछे लेकर दाहिने हाथ के पंजे को पकड़ें, गर्दन व कमर सीधी रखें। फिर श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दाहिने कंधे को ऊपर खींचते हुए अब एक ओर से लगभग एक मिनट तक करने के पश्चात दूसरी ओर इसी प्रकार करें, यानी वापस अपने हाथों को नीचे ले जाएं, वापस दंधासन में जाएं और अब बाएं पैर की जगह दाएं पैर को मोड़कर एड़ी को बाएं नितंब के ऊपर रखें, बाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। फिर श्वास भरते हुए बाएं हाथ को उठाकर बाएं कंधे को ऊपर खींचते हुए हाथ को पीछे पीठ की ओर ले जाएं। आपकी कोहनी आपके बाएं कान के साथ मिल रही होगी। अब दाएं हाथ को पेट के पास से पीठ के पीछे से लेकर बाहिने हाथ के पंजे को पकड़ें और इस अवस्था में भी लगभग एक मिनट श्वास लें। कुछ देर बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों के लॉक को खोल दें और पुनः दंड आसन की स्थिति में आ जाएं। इस तरह आपका एक चक्र पूरा हुआ। हाथों के पंजों को पीछे पकड़े रहने की सुविधा अनुसार 30 सेकंड से एक मिनट की स्थिति तक रह सकते हैं। इस आसन के चक्र को 2 या 3 बार दोहरा भी सकते हैं। गोमुख आसन करते हुए कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए, जैसे किसी भी अन्य आसन को करते समय। यदि आपके हाथ, पैर और रीढ़ की हड्डी में कोई

0: गंभीर रोग हो तो गोमुख आसन न करें। इसी तरह जबरदस्ती पीठ के पीछे हाथों के पंजों को पकड़ने का प्रयास न करें। जब आप इस आसन को करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि ये प्रक्रिया इतनी आसानी से न हो पाए। जब धीरे धीरे आपका लचीलापन बढ़ता चला जाए और शरीर को कष्ट ना हो, तब कोशिश करें कि पीठ के पीछे हाथों के पंजों को पकड़ा जाए। चलिए अब इस आसन के लाभ से आपको अवगत करवाया जाए। गोमुख आसन करने से हाथ और पैरों की मांसपेशियां चुस्त और मजबूत बनती हैं। योग करें, हर रोज करें और अपने चेहरे पर योग करते समय मुस्कान को बनाए रखें, क्योंकि ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आपके जीवन को सुखमय बना देगी, रोग से दूर कर देगी। कल सुबह इसी समय इसी चैनल पर आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5:20 होने वाले हैं, कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी दिल्ली का यही इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5:20 होने वाले हैं और लीजिए 5:20 हो गए। अब सुनिए देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम भी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5:30 बजे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं बांसुरी वादन। कलाकार हैं हर्षवर्धन। आपने प्रस्तुत किया है राग ललित। आपके साथ तबले पर संगत किया है उस्ताद अख्तर हसन ने। तो लीजिए सुनिए बांसुरी वादन, कलाकार हर्षवर्धन।